0: इंग्लैंड का पादरी जोसेफ करुणा के आध्यात्मिक शक्ति में अटूट विश्वास रखता था। दीन हीन और बेसहारा लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। एक बार की बात है, एक दिन एक बहुत ही कुख्यात अपराधी पुलिस की निगाहों से बचता हुआ पादरी के घर पहुंच गया। पादरी ने उसे शरण दी, भोजन कराया और रात को आराम करने की भी स्वीकृति दी। अपराधी ने देखा कि पादरी की मेज पर चांदी के दो दीपदान रखे हुए हैं। पादरी सो गया तो उसने दीपदान उठाकर जेब में रखे और वहां से भाग निकला। वो कुछ ही दूर जा पाया था कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने पुलिस को बता दिया कि वो दीपदान उसने पादरी के घर से चुराए हैं। पुलिस उसे पादरी के पास लेकर आई। पादरी को दीपदानों की चोरी का पता लग गया था। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, इसे छोड़ दीजिए, ये दीपदान तो मैंने अपनी इच्छा से इसको दिए थे। पादरी के शब्द सुनकर चोर पानी पानी हो गया। उसने उसी समय प्रभु में अपना दिल लगाने का निश्चय किया और भविष्य में अपराध न करने का संकल्प लिया। अब वो पादरी जोसेफ के शिष्य के रूप में दीन हीनों की सेवा का कार्य करने लगा।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जिंदगी जीने के तीन नियम। जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि हम दुनिया भर की उम्मीदों के हिसाब से जीते रहते हैं। कई बार हमारे कंधों पर इन उम्मीदों का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। हम ताउम्र सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग नाराज ही छूट जाते हैं। अब बताइए, क्या जरूरत है सबको खुश करने की? जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो सफलता मिलने पर हम स्वयं ही हमारे लिए ही तालियां बजाने लग जाते हैं, बताइए। नियम नंबर दो, सफलता कोई जादुई चाबी नहीं है भैया, जो हमारे सामने किसी चांदी की थाल पर रखकर परोस करके दे दी जाएगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, उसमें समय लगेगा और पसीना बहाना पड़ेगा। हमारी हर तरह की कोशिशों का जोड़ ही हमारी सफलता है। हर दिन को कोशिशों के साथ ही हम खुद को बदलते हुए देख सकते हैं। समझदार व्यक्ति कहते हैं, सफलता उन छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ है जो हम रोज करते ही रहते हैं। नियम नंबर तीन, हार का डर हमें जीवन में कुछ बड़ा करने से रोकता रहता है। गौर कीजिए, इसी डर के कारण हम चुनौतियों से भागते हैं, बहाने ढूंढते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें मजबूत तो होना पड़ेगा। जब हम पूरी तरह से अपना दिल और दिमाग किसी काम के पीछे लगा दें, तब हमें कोई रोक नहीं सकता। सोचिए ना। फिर मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन दोस्तों हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है, हमें बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर उसको देखने की जरूरत है। आइए मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे ही हंसना सिखाने वाले भाई से जो मोटिवेशन के जिंदा मिसाल हैं। इसराइल पर हमास के हमले और तेल अबीब की जवाबी कार्रवाइयों ने अहमद की योजनाओं को भी खाक कर दिया। 5 दिन वो और उनके साथी एक शिविर में खुद को जिंदा रखने के लिए कैद रहे, मगर अहमद ऐसी स्थितियों में पहले भी गुजर चुके थे। सो पहुंच गए नजदीकी स्कूल में। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। शायर निदा फाजली से गाजा के अहमद अलग रजी की शायद ही कभी मुलाकात हुई होगी, लेकिन लगता है उन्होंने इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लिया है। बम के धमाकों से दहलती हुई गाजा पट्टी में वो बच्चों में खुशी बांट रहे हैं, उन्हें जीने के गुर सिखा रहे हैं, डर से पार पाने की ताकत दे रहे हैं और दिमागी तौर पर उन्हें मजबूत बना रहे हैं। और ये सब वो कर रहे हैं नृत्य के अपने हुनर और नर्सिंग की तालीम की मदद से। जी हां, वो एक शानदार डांसर हैं। संभवतः इसी कारण द गार्जियन उनमें द इंस्पायरिंग पीपल बनने की संभावनाएं देख रहा है। अहमद के लिए वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, गाजा के ही कई शिविरों में उनका बचपन बीता था। अपने भाई से उन्होंने ब्रेक डांस सीखा जब वो सिर्फ 15 साल के थे। उनके भाई सऊदी अरब में इस डांस से दिल लगा बैठे थे और वापस लौटने पर उन्होंने अहमद को भी ब्रेक डांस सिखाया। अहमद ने भी खुशी खुशी इसे सर माथे लिया। कमरे में, गलियों में, जहां कहीं भी उन्हें जगह मिलती वो नाचने लगते। इस जुनून ने उनके कई नए दोस्त बना दिए जो पराधीन गाजा में आजादी महसूस करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। फिर क्या था, 2004 में कैंप्स ब्रेकेज की नींव रख दी गई। इसमें करीब 10 डांसर्स थे। इस ग्रुप का मकसद साफ था, खुद को अभिव्यक्त करना, सांस्कृतिक रूढ़िवादिता का विरोध करने और उन तमाम बंधनों को तोड़ने के लिए नाचना जिनसे वो खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे। अहमद को ब्रेक डांस से इतना प्यार हो गया कि नर्सिंग से स्नातक करने के बाद उन्होंने आगे पढ़ने की नहीं सोची, हालांकि यही पढ़ाई बाद में उनकी हमराह बनेगी, ऐसा भी उन्होंने कहां सोचा होगा। कोई भी संकीर्ण समाज ऐसे किसी शुरुआत को आसानी से स्वीकार नहीं करता। अहमद ने तो खूब ताने सुने, पर वो जानते थे कि डांस से भी मंजिल पाई जा सकती है। वो गुर्बत में जी रहे लोगों का गम बांटना चाहते थे, खुली जेल बन चुके गाजा को जीने का सलीका सिखाना चाहते थे। इसमें साल 2009 उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उनकी टीम को सेव द चिल्ड्रन के साथ एक प्रोजेक्ट करने का मौका मिला जो ऑपरेशन कास्ट लीड के पीड़ित बच्चों को मनोवैज्ञानिक मदद पहुंचाने के लिए शुरू किया जाना था। संयुक्त राष्ट्र का मानना था कि साल 2008-2009 में इसराइल द्वारा गाजा में किए गए इस सैन्य ऑपरेशन में 333 बच्चों सहित 1383 फिलिस्तीनी मारे गए थे। अहमद समझ गए कि धमाकों से दहले बचपन को संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। उनका समूह नृत्य के माध्यम से फिलिस्तीनी समाज में मौजूद भेदभाव को मिटाने, उनमें एकता बढ़ाने, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए जागरूकता फैलाने में जुट गया। गाजा पट्टी पर आयद इजरायली बंदिशों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाने लगा। कहा जाता है कि इन्हीं सबसे चिढ़कर उनके डांस सेंटर को भी बम से उड़ा दिया गया। पर तब तक अहमद इतने प्रशंसक कमा चुके थे कि उनकी एक आवाज पर $10,000 की रकम जुटा ली गई और साल 2012 में एक नया डांस सेंटर बनकर खड़ा हो गया। गाजा में मुश्किलें बढ़ने के बाद अहमद 2015 में जर्मनी चले गए, पर उनका दिल मातृभूमि में ही अटका रहा। इसी कारण कई बार वो वापस लौट आते और नई प्रतिभाओं को नृत्य सिखाते। अक्टूबर 2023 में भी इसी मकसद से वो गाजा आए थे। वहां युवा नर्तकों का एक शो था, मगर इसराइल पर हमास के हमले और तेल अबीब की जवाबी कार्रवाई ने उनकी योजनाओं को खाक कर दिया। फर्ज कीजिए आप कहीं जाते हैं और आपको पता चलता है कि अनिश्चितकालीन जंग में घिर जाने के कारण अब वहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। ध्वंस भी इस कदर कि कौन सी मिसाइल कहां धमाका कर जाए कोई नहीं जानता, तब आप क्या करेंगे? अहमद के सामने भी यही सवाल था।
पांच दिन वो और उनके साथी एक शिविर में खुद को जिंदा रखने के लिए कैद रहे, मगर ज्यादा दिनों तक बैठे रहना भी अहमद को मंजूर नहीं था। वो इस तरह के हालात से पहले भी गुजर चुके थे, तो वो पहुंच गए संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे एक नजदीकी स्कूल में। वहां बच्चों के लिए कार्यशालाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी मिल गई। शुरुआत में बच्चे झिझके जरूर, लेकिन जल्द ही अहमद और उनके साथियों के फ्लिप और ट्विस्ट पर भी वो नाचने लगे। अब तो अहमद इन बच्चों के भाई हैं, हालांकि उन्हें अपने शुरुआती नाम शार्क यानी कि उस्ताद ही पसंद है। आज अहमद हर जगह जाते हैं जहां गाजा नागरिक शरण लिए हुए हैं और बच्चों के लिए डांस करते हैं। वो और उनके दोस्त पूरी कोशिश करते हैं कि यहां के मासूमों में मासूमियत बची रहे। यहां तक कि नजदीक गिरे मिसाइल से अपने एक छात्र की मौत के बाद भी अहमद के कदम रुके नहीं हैं। आखिर उन्हें डर क्यों नहीं लगता? एक साक्षात्कार में अहमद ने बताया कि मैंने भी बचपन में ये सब देखा है। बम धमाके से कोई बच्चा कितना भयभीत हो जाता है, ये मैं जानता हूं। मैं नहीं चाहता कि हमारी नई पीढ़ी ये सब झेले। अब तो हर धमाके के बाद मैं खुद को कहीं अधिक मजबूत महसूस करता हूं। तो देखा दोस्तों आपने, गाजा जैसी मुसीबत में भरी हुई जगह में भी अहमद जैसा इंसान सिर्फ डांस करके पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और प्रेरणा का संदेश फैला रहा है। क्या दोस्तों हम भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं? दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें। दोस्तों ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।

0: डर विश्वास के विपरीत है। जब हम डरते हैं तो हम भगवान को ये संदेश देते हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, डरने की आवश्यकता नहीं।
1: कन्नौज राज की एक विधवा ब्राह्मणी बहुत ही गरीबी के बावजूद अपने 5 पुत्रों को गुरुकुल में अच्छी शिक्षा दिला रही थी। वो रोज चरखे पर सूत कातकर अपना और पुत्रों का जीवन यापन करती थी। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया उसने। कन्नौज के एक धार्मिक सेठ ने ब्राह्मणी के गरीबी में दिन गुजारने की बात सुनी तो वो उसके पास गए। बड़ी ही विनम्रता से उन्होंने कहा, क्या मैं आपकी कुछ आर्थिक मदद करके अपने को धन्य कर सकता हूं? ब्राह्मणी ने कहा, सेठ जी, मैं गरीब बिल्कुल नहीं हूं। मेरे पास तो 5 अमूल्य रत्न हैं। आपकी सहानुभूति के प्रति मैं कृतज्ञ हूं। सेठ जी ने कहा, मुझे अपने अमूल्य रत्न तो दिखाइए। कुछ ही देर बाद उसके 5 बेटे गुरु जी के आश्रम से वापस लौटे। आते ही उन्होंने मां के चरणों को स्पर्श किया। उसके बाद सामने बैठे हुए सेठ जी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ब्राह्मणी ने संस्कृत में कहा, पश्यमय पंच रत्नानी। और सेठ उन 5 रत्नों को देखकर कह उठे, वास्तव में माताजी, आपके इन अनूठे मातृभक्त संस्कारी 5 रत्नों के होते हुए आपको दरिद्र समझना मेरी भारी भूल थी। जिसकी संतान आज्ञाकारी, संस्कारी और योग्य हो, उससे बड़ा धनवान कौन होगा?
0: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: एक बार कुछ शिक्षक आचार्य महाप्रज्ञ के सत्संग में पहुंचे। महाविद्यालय के एक प्राचार्य ने कहा, आचार्य जी, अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा का भी अवमूल्यन होते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब स्कूल कॉलेज तो बिजनेस बनते जा रहे हैं, आपकी नजर में इस पतन के क्या कारण हो सकते हैं? आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, ज्ञान का तो सार है आचार। दूध में मक्खन ना निकले तो दूध को सारोहीन मानना पड़ेगा। अगर दूध से मक्खन ना निकले तो दूध बेकार है। नैतिकता पर ध्यान नहीं देने के कारण ही आज शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट दिखाई दे रही है। जब से शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना और नौकरी करने के लिए सीमित हो गया है, तब से यही गड़बड़ी शुरू हो गई। गुरुदेव आचार्य तुलसी ने भी कहा है, शिक्षा केंद्रों से ऐसे छात्र निकलने चाहिए जिनका आदर्श जीवन हो और वो जिस क्षेत्र में जाएं वहां नैतिकता का आदर्श स्थापित करें। लेकिन आज तो डिग्री पाने के लिए और फिर उसके बाद धन कमाने की होड़ चल पड़ी है। कोरे बौद्धिक विकास से न तो राष्ट्र का भला होगा न ही समाज का। बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी जरूरी है। जब तक नैतिक मूल्य सदाचार की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसे उद्देश्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप कुछ भी कर लें।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर।

बिना पाठ्यक्रम वाले जीवन की गणित। कभी आपने नोटिस किया है, जिंदगी हमें सब कुछ सिखाती है, बस किसी टेक्स्ट बुक के थ्रू नहीं। आज मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्चा मैथ्स की क्लास में टीचर से पूछता है, सर बीज गणित में बीज कहाँ होता है? टीचर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जरा हाथ खोलो। और जब बच्चा अपने लाल हाथों वाली हथेली आगे करता है तो उसे समझ आता है, बीज दिया जा चुका था, दिखता नहीं था पर था। बस वही पल जिंदगी का पहला बड़ा लेसन बन जाता है। हम सब जिंदगी में अक्सर यही गलती करते हैं। हम कहते हैं, रिजल्ट कहाँ है, ग्रोथ कहाँ है, प्रोग्रेस कहाँ है। हम ये भूल जाते हैं कि बीज हमेशा जिंदगी के नीचे होता है, वह अंधेरा होता है, इंतजार होता है और सबसे बड़ी बात सब्र होता है। ये संवाद ये कहना चाहता है कि हर चीज को ज्यादा सोचना जरूरी नहीं होता। हर बात का जवाब ढूंढने से पहले कभी कभी चिंतन छोड़ देना भी जरूरी है। जिंदगी की गणित कुछ ऐसी ही है, ये फॉर्मूला से नहीं एक्सपीरियंस से समझ आती है। सोचिए, हवा दिखती नहीं पर चलती तो हमेशा है, इज्जत दिखती नहीं पर जब चली जाए तो वो घर के रिश्ते भी हिला जाती है, विश्वास दिखता नहीं पर बिना उसके कोई रिश्ता जिंदा नहीं रहता, और भगवान वो भी नहीं दिखते पर उन पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ये संवाद भी यही कहता है, जैसे एग्जाम्स में कभी कभी बिना असल समझ के लंबे आंसर्स लिखकर नंबर आ जाते हैं ना, वैसे ही जिंदगी में भी हम सिर्फ दिखावा करके आगे बढ़ सकते हैं। पर फर्क इतना सा होता है, एग्जाम के मार्क्स जिंदगी नहीं बदलते पर जिंदगी के बीज बदलते हैं। अगर बीज असली हो, मेहनत का, ईमानदारी का, पेशेंस का, तो फल भी असली होता है, चाहे थोड़ा लेट ही आए पर जब आता है तो गहरा होता है, टिकाऊ होता है। इस संवाद का सबसे खूबसूरत मैसेज यही है, जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा विद्यमान होता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में कहीं अटके हुए महसूस कर रहे हैं, अगर लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो याद रखिए, शायद आपका बीज अभी जमीन के नीचे है। जिंदगी की गणित ना रटी जा सकती है ना शॉर्टकट से सीखी जा सकती है, इसे सिर्फ जिया जा सकता है। और कभी लगे कि कुछ दिख नहीं रहा तो बस इतना याद रखिए, कुछ चीजें सिर्फ महसूस होती हैं और वही चीजें जिंदगी चलाती हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पिंटू, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? सिंटू, सिंटू ने जवाब दिया, यार एक दुकान खोली थी उसने, लेकिन अब वो जेल में है। पिंटू, ओ पर ऐसा क्यों हो गया? सिंटू, भाई ने दुकान हथौड़े से खोली थी, उसे पुलिस ले गई और जेल में डाल दिया।

दोस्तों, आज जिस कहानी पर हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अपने आप में ही एक मेटाफर। एक दरवाजे के बाद फिर दूसरा दरवाजा। ये कहानी है लेखिका अर्पणा की, जिनकी कहानियों में गहरापन है, रहस्य है और सबसे बढ़कर एक ऐसी संजीदगी है जो दिल को छू लेती है। इस कहानी का केंद्र है एक औरत, उसका घर, उसकी तन्हाई और उसका डर। कहानी की शुरुआत होती है एक आम सरकारी मकान से। आंगन में एक तुलसी का पौधा है जो बस पौधा नहीं बल्कि यादों का प्रतीक है। नरेटर बताती है कि वो उस तुलसी की पूजा नहीं करती पर चाय में उसका इस्तेमाल जरूर करती है। ये छोटी सी बात ही कहानी का टोन सेट कर देती है, परंपरा और व्यवहार के बीच का अंतर। उसका रिश्ता आरएस हांडे से भी तुलसी की जैसा ही है, ना पूरी तरह पवित्र ना पूरी तरह सामान्य, एक अजीब सी जटिलता। घर के सामने एक बुढ़ा रहता है अकेला। नरेटर अक्सर उसे देखती है। एक दिन वो सोचती है, क्या मैं भी बुढ़ी होके ऐसी ही अकेली रह जाऊंगी? क्या मेरी कहानी भी इसी तरह खत्म होगी? यहाँ कहानी तन्हाई का साइकोलॉजिकल लेयर खोलती है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक शाम नरेटर को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, एक साया, एक डर। वो दौड़ती है, साया भी दौड़ता है, उसकी हार्टबीट तेज हो जाती है और अब वो पकड़ी जाती है तो पता चलता है कि वो साया असल में उसका अपना ही डर था, या शायद उसी की परछाई। ये पल सिंबॉलिक है। कहानी ये दिखाती है कि हम अक्सर अपने ही अंधेरों से भाग रहे होते हैं, अपने ही सवालों से, अपनी ही असुरक्षा से। और फिर आता है सबसे पावरफुल इमेज, दरवाजे। नरेटर एक दरवाजा खोलती है, उसके अंदर एक और दरवाजा, फिर उसके बाद एक और फिर एक और। जैसे जिंदगी में हर प्रॉब्लम के बाद एक नया चैलेंज, हर सच के बाद एक और नया सच, और हर डर के बाद एक और गहरा डर। दरवाजों की एक लंबी कतार। इस कहानी का सार ये है कि जिंदगी लीनियर नहीं होती, एक रूम नहीं, एक कॉरिडोर में नहीं होती, जहां हर दरवाजा खोलने की हिम्मत चाहिए। हर दरवाजे के बाद जो मिलता है वो हमें थोड़ा और मैच्योर कर देता है, थोड़ा और तोड़ता है, थोड़ा और बनाता है। इसमें राजनीतिक संकेत भी है, सामाजिक तंगीत भी है, और सबसे गहरा एक औरत का अस्तित्व संघर्ष है। आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम सच में एक दरवाजे पर रुक सकते हैं, या जिंदगी का नियम ही है एक दरवाजे के बाद फिर दूसरा दरवाजा। और शायद हिम्मत का मतलब यही है, दरवाजे खोलते रहना।

0: कर्फिदा
1: जान को
0: मार ले,
1: जान को
0: रोक ले,
1: बांध दिया
0: मोड़ दे,
1: तूफान को
0: हिम्मत कभी न तोड़ेंगे,
1: दुश्मन को न छोड़ेंगे,
0: घुटने कभी न टेकेंगे,
1: मुड़ के न हम देखेंगे।
2: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
3: चीनू उदास बैठा था, तभी मीनू आया और पूछा, क्या हुआ चीनू, तू उदास क्यों बैठा है? चीनू बोला, क्या बताऊं यार, किसी ने कहा था कि पेड़ से हमें शीतल छाया मिलती है, लेकिन यहाँ पेड़ के नीचे पिछले 5 दिन से बैठा हूँ, ना तो शीतल आई ना ही छाया।

शरीर पर चिन्ह भी होते हैं पहचान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परंपरा के बारे में जो सिर्फ शरीर पर बना हुआ डिजाइन नहीं बल्कि पहचान, आस्था और इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। गोदना यानी ट्रेडिशनल ट्राइबल टैटूइंग। इस चर्चा में बताया गया है कि देश के कई आदिवासी समुदायों ने शरीर पर बनाए गए चिन्ह सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि उनके गहरे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए होते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों के गोंद, बैगा, भील, कोरकू, मुरिया, कोल जैसे कई जनजाति समुदाय में गोंदना एक प्राचीन परंपरा है। इन समुदायों के लिए गोंदना उनकी पहचान है, एक जीवन भर का साथी। कुछ जगह देवी देवताओं का चिन्ह, पेड़ पौधों के आकार, प्राणियों के प्राकृतिक सूरज चांद तारे या पवित्र निशान शरीर पर गुदवाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चिन्हों से शक्ति मिलती है, रक्षा होती है और आत्मा को शांति मिलती है। इस आर्टिकल में एक लोक कथा का भी जिक्र है जिसमें कहा गया है कि भगवान के भोज में जब एक जनजाति के लोगों को पहचान के लिए अलग किया गया तब से गोंदना उनकी पहचान बन गया। यानी ये परंपरा केवल सौंदर्य नहीं बल्कि अस्तित्व का प्रश्न थी। आदिवासी समुदायों में लड़कियों को एक निश्चित उम्र के बाद गोंदना गुंदवाना आवश्यक माना जाता था। ये शादी, जवानी और सामाजिक स्वीकृति का जुड़ाव है। कई संस्थानों पर यह भी विश्वास किया गया कि मरने के बाद सिर्फ गोंदना ही साथ जाता है, सोना चांदी कपड़े ये सब यहीं रह जाते हैं। गोंदना करने की ये प्रक्रिया इंटरेस्टिंग है। सुइयों को बांधकर रंग भरा जाता है जो काजल, तेल या प्राकृतिक रंगों से तैयार होता है। दर्द होता है लेकिन उसे सहना परंपरा का हिस्सा है। कुछ स्थानों पर गोंदने के दौरान गीत भी गाए जाते हैं ताकि दर्द कम महसूस हो। महिलाओं के लिए गोंदना एक जीवित आभूषण जैसा माना जाता है, ऐसा गहना जो कभी नहीं उतारा जाता। आज के समय में जब मॉडर्न टैटू फैशन का हिस्सा बन चुका है, ये संवाद हमें ये याद दिलाता है कि हमारे देश में टैटू सिर्फ फैशन नहीं था, ये इतिहास, धर्म, परंपरा और पहचान का प्रतीक था। ये शरीर पर सिर्फ बना एक चिन्ह नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं किस समुदाय से हूँ और मेरी जड़ें कहाँ हैं? आखिर में ये संवाद एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम अपनी परंपराओं को समझ पा रहे हैं या उन्हें सिर्फ फैशन तक सीमित करते हैं? क्योंकि कभी कभी पहचान कपड़ों से नहीं, शरीर पर बने चिन्हों से होती है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पिंटू बोला, यार मैंने आज बहुत काम कर लिया। उसके दोस्त संजू ने पूछा, कैसा काम भाई? तो पिंटू बोला, वही जो स्कूल में टीचर मना करती है। संजू पूछा, मतलब? पिंटू बोला, अरे सवाल पूछना।
2: संजना,
0: आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां।

दोस्तों, दुनिया में गेम्स की कमी नहीं है, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो सुनते ही हम हैरान रह जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक अनोखे खेल की, रबर बूट थ्रोइंग। नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई मजाक हो, लेकिन ये सच में एक सीरियस स्पोर्ट है। ये खेल फिनलैंड से शुरू हुआ 1992 में। शुरुआत में लोग इसे मजाक या मनोरंजन के रूप में खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट बन गया और आज ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेला जाता है। इस गेम का बेसिक आइडिया सिंपल है, रबर के बूट को जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकना। लेकिन दूर फेंकना ही काफी नहीं है, इसमें टेक्निक, बैलेंस और पावर ये सही कॉम्बिनेशन में जरूरी है। बिल्कुल जैसे हैमर थ्रो या डिस्कस थ्रो होता है, बॉडी में कोऑर्डिनेशन का रोल होता है, वैसे ही रबर बूट थ्रोइंग में खिलाड़ी अपने शरीर को घुमाकर मोमेंटम क्रिएट करके बूट को फेंकता है। देखने में सिंपल है, लेकिन असल में काफी चैलेंजिंग है। इसमें पुरुष और महिलाएं अलग अलग कैटेगरीज में हिस्सा लेती हैं। हर पार्टिसिपेंट को निर्धारित वेट और साइज का बूट दिया जाता है। कंपटीशन में सबसे दूर फेंकने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। इस खेल की इंटरनेशनल पहचान भी है, इंटरनेशनल बूट थ्रोइंग एसोसिएशन के थ्रू। इमेजिन, फिनलैंड के अलावा कई और देशों में भी ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं। आज सिर्फ ये एक लोकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है। लेकिन इस आर्टिकल की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये गेम सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं, बल्कि फिनलैंड की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। ये दिखाता है कि स्पोर्ट्स सिर्फ सीरियस और ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स तक सीमित नहीं होते, कभी कभी क्रिएटिविटी और मजाक से भी एक नई परंपरा बन जाती है। सोचिए, एक सिंपल सा रबर बूट जो आमतौर पर बारिश या खेत में काम आता है, वही एक इंटरनेशनल स्पोर्ट बनकर सेंटर बन जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज में पोटेंशियल होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी अजीब से गेम का नाम सुने, हो सकता है वो सिर्फ गेम ना हो, बल्कि किसी देश की सोच, क्रिएटिविटी और कल्चर का हिस्सा हो। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी रबर बूट को तोड़ना भी एक गेम ही होता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

नकारात्मकता। दोस्तों याद रखें कि जिंदगी हमेशा उस तरह नहीं चलती जिस तरह से हम चाहते हैं। ऐसे में चीजों को लेकर शिकायत करने के बजाय हमेशा चीजों के प्रति पॉजिटिव रवैया ही रखें। सफल लोगों को जब भी कभी जिंदगी में नेगेटिविटी घेरती है तब वो उससे अपनी पॉजिटिव सोच के जरिए बाहर निकल आते हैं। आपको भी चाहिए कि जिंदगी में हमेशा शिकायत करने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढें, उनसे निपटें और बस आगे बढ़ें। निगेटिविटी से लड़कर ही आप सफल हो सकते हैं। बने रहिए आरजे समीर के साथ। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगें, तो दोस्तों समझ लेना जीना आ गया है।

0: सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है।
1: मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।

जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक

0: झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे?
1: है समय प्रतिकूल माना, पर समय अनुकूल भी है। शाख पर एक फूल भी है, घन तिमिर में एक दिए की टिमटिमाहट भी बहुत है, एक सूने द्वार पर बेजान आहट भी बहुत है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोनू ने पूछा, किस बात से परेशान हो? मोनू ने कहा, यार घर वालों से बहुत परेशान हूँ। सोनू ने कहा, अब घर वालों ने क्या कर दिया? मोनू ने कहा, जिस दिन सोचता हूँ कि कुछ नया करूंगा, उसी दिन गेहूं पिसवाने भेज देते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

दुख लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है जो पहले पानी की भाषा में आदमी की आंखों से आता है और फिर हाथों की धरोहर बन जाता है।

जो कुछ पुराना है मोहक तो लगता है, टूटने का दर्द मगर सहना ही पड़ता है। बहुत कुछ टूटता है तब नया बनता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, नहीं, नई ड्रेस पहनकर तुम्हारी बारात में जा रहा हूँ।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ऑपरेशन के बाद मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या अब मैं बिल्कुल रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, अरे बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भीम 90.8 FM के साथ।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: मंगल पांडे।
2: सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सन 57 की जे कहानी, कहानी जे है बड़ी पुरानी। मंगल पांडे वीर बड़ा था, अंग्रेजों से खूब लड़ा था, देशभक्त था वह बलिदानी। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सन 57 की जे कहानी।
3: दादी जी।
4: अरे आशीष, दीपिका आओ आओ, कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
3: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
4: हाँ पूछो।
3: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
4: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
3: अच्छा।
4: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
3: अच्छा।
4: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था, देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
5: अच्छा।
4: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
3: मंगल पांडे।
4: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
5: अच्छा।
4: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही।

0: दादी जी लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
4: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
5: नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं।
4: भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े,
5: बिल्कुल
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
4: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो, मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
6: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
7: मंगल पांडे
8: जिंदाबाद,
7: मंगल पांडे
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली डाल दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
9: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
6: अरेस्ट करो,
4: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
0: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहाँ से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग दी।

0: छो ठीक होना मांगता है, तुरंत अस्पताल भेजो।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भई, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भई, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भईल, जननी के भेंट परान भईल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भईल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए और उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली मार दी।

स्वाधीनता का बिगुल बजाया और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। क्रांति के पुजारी की चिता की राख से निकली चिंगारी आग का शोला बनकर निकली और चारों ओर फैल गई। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: बहादुर कशिका।
2: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
3: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
2: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
3: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
2: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
3: अच्छा माँ।
4: माँ, माँ।
3: लो, देवेंद्र भी आ गया।
4: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
2: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
3: ठीक है माँ।
4: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठ कर खाऊंगा।
3: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
5: ये बातचीत दिल्ली के किंग्सवे कैंप में रहने वाले भाटिया परिवार के बीच की है। पिताजी की किताबों की दुकान है, माँ घर में ही रहती हैं। पुत्री कशिका 8वीं कक्षा में और पुत्र देवेंद्र 6ठी कक्षा में पढ़ता है। 12 अप्रैल 1997 को इस घर में एक ऐसी घटना घटी जिससे कशिका भाटिया को हम हमेशा याद करेंगे। आइए सुनते हैं।
4: ये देखो दीदी, ये मारा।
3: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
4: अरे ये मारा।
3: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
4: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
3: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
4: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
2: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
3: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
6: हमें अंदर आने दो।
3: अरे क्यों?
7: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
3: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
6: लड़की हट।
3: माँ,
6: ये चाकू देख रही है ना?
7: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
3: अरे
7: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
3: क्या हुआ?
2: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
6: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
3: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
6: ये चाकू देख रही है ना?
3: छोड़ दो।
2: मुझे मत मारो,
3: कुछ मत करो।
2: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
6: जल्दी।
2: याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
7: बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
2: अरे मेरे बाप को छोड़ो,
3: मेरी माँ को छोड़ो।
6: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
7: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
2: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
3: देवेंद्र।
4: हाँ दीदी।
3: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
4: हाँ।
3: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है? हेलो।
6: हाँ बेटा बोलो।
3: पापा। पापा।
6: हाँ बोलो।
3: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुस आए हैं।
6: कौन घुसा है?
3: माँ को बहुत मार रहे हैं।
6: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
3: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
4: अच्छा।
6: घर में चोर घुसाए हैं क्या?
2: मदद करो।
5: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशू यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
8: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
2: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
6: ऐसे बच्चे होने चाहिए,
8: देखो ना सबकी जान
2: बहादुर है मेरी बच्ची।
5: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।

0: डर था कि प्यास उसे रुलाएगा, आंखों में आंसू लाएगा, आलू कचालू को ये डर था।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, झाबुआ की आवाज।
2: हड़प्पा संस्कृति, ये एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक सूत्रों और संदर्भों के आधार पर नाटक प्रारूप में निर्मित की गई है।
3: तो आनंद लीजिए इस हड़प्पा संस्कृति का।
2: जी हाँ,

आज से कोई 4000 साल पहले हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ बड़े-बड़े नगर बसे हुए थे। इन्हीं में से एक प्रमुख नगर था मोइनजोदड़ो। मोइनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला।

जाहिर है कि जिस समय ये नगर फल फूल रहा था तब इसका नाम मोहनजोदड़ो नहीं रहा होगा, कुछ और ही रहा होगा। पर यहाँ की चौड़ी सड़कें, विशाल अन्न भंडार और सरोवर ऐसे ही रहे होंगे। यहाँ के रहने वालों का व्यापार दूर विदेशों तक फैला था। वे शांति प्रिय और कलात्मक रुचि के लोग थे। उनकी लिपि अभी तक सर्वमान्य ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन उनके अनेक नगरों की विस्तृत खुदाई की गई है, जिससे वहाँ के जनजीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। उसी आधार पर प्रस्तुत है एक काल्पनिक कथा का।

0: क्या यही प्रसिद्ध व्यापारी शिमुक की दुकान है?
1: जी हाँ, यही है और मैं ही हूँ शिमुक।
0: जी
1: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: जी मैं लोथल नगर का एक व्यापारी हूँ, उदंग। रुई बेचने यहाँ आया था। मैंने सुना था आपके पास धातु की बनी एक से एक सुंदर वस्तुएं हैं, बस देखने के लोभ से चलाया।
1: आज्ञा कीजिए, क्या दिखाऊं? धातु के हथियार, औजार या फिर मूर्तियां, आभूषण?
0: कोई सुंदर सी मूर्ति दिखाइए।
1: ये देखिए।
0: हाँ,
1: कांसे की बनी हुई नर्तकी, कमर पर हाथ रखे ऐसे खड़ी है मानो नाचते नाचते पल भर के लिए रुक गई हो।
0: हाँ, अच्छी तो है मगर।
1: अच्छा, इसे छोड़िए। ये हार देखिए, अभी दो दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है। सोने की पत्तियों के बीच कीमती पत्थर के कितने सुंदर फूल गढ़े हैं कारीगर ने।
0: वाकई बहुत सुंदर है।
1: तो ठीक है, इसे ले जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से दिलमन तक ऐसा सुंदर हार किसी और व्यापारी के पास नहीं होगा।
0: वो तो ठीक है, पर ये तो काफी महंगा होगा। दरअसल मैंने अपनी रुई बेचकर उसके बदले आपके नगर से अनाज खरीद लिया है। अब मेरे पास इस हार को खरीदने लायक रकम नहीं है।
1: तो क्या हुआ, आप तो इधर आते रहते होंगे।
0: जी हाँ।
1: तो फिर आप ये हार ले जाइए, इसकी कीमत अगली बार दे दीजिएगा।
0: मगर।
1: अब इसमें अगर मगर की क्या बात है, आपके पास आपकी मोहर तो होगी ही।
0: जी हाँ, वो तो मैं हमेशा अपने कमरबंद में रखता हूँ।
1: तो भी ठीक है, अपने इस सौदे की बाबत मिट्टी की पाटी पर लिखवा कर अपनी अपनी मोहर लगा देते हैं। जब आप अगली बार यहाँ आए तो रकम चुका दीजिएगा।
0: ठीक है, मुझे मंजूर है।
1: छुपन, अरे ओ छुपन।
2: आया माले।
3: जी माले।
1: देखो छुपन, ये लोथल नगर के बड़े व्यापारी हैं उदंग, इन्होंने ये सोने का हार खरीदा है, पर इसकी कीमत ये अगली बार देंगे। अब तुम झटपट मिट्टी की पाटी तैयार कर, उस पर इस सौदे की बाबत लिखो और उस पर ये मेरी मोहर और ये इनकी मोहर लगा कर ले आ।
3: अच्छा वाले।
1: आइए उदंग
0: जी,
1: आप जब तक यहाँ आराम से बैठिए।
0: क्या पार्टी तैयार करने में देर लगेगी?
1: हाँ, कुछ देर तो लगेगी। क्या आप जल्दी में हैं?
0: नहीं, कोई विशेष जल्दी तो नहीं है। मेरा जहाज अन्न भंडार के पास रुका हुआ है, अनाज की लदाई चल रही है। मैं इस बीच नगर घूमने निकला था, सोचा था सरोवर तक जाऊंगा, देश विदेश के समाचार मिल जाएंगे। पर सामने आपकी दुकान देखकर रुक गया। हमारे लोथल तक भी आपकी दुकान की सुंदर वस्तुओं की बड़ी ख्याति है।
1: अच्छा, तो सरोवर देखने के लिए जा रहे हैं?
0: देखा तो पहले भी है, पर हर बार देखना अच्छा लगता है ना।
1: हाँ भाई, हमारे नगर की धड़कन है ये सरोवर। युवक युवतियों के मिलने जुलने की जगह। आज पूरे चंद्रमा की रात है, विशेष पर्व है। आज तो वहाँ न जाने कितने विवाह तय होंगे, कितने व्यापारिक सौदे तय होंगे। मेरी पत्नी और बेटी भी वहीं गई हुई हैं।
0: जी
1: चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
0: हाँ चलिए।

0: माँ आज पानी बड़ा ठंडा था माँ।
1: हाँ, जाकर कपड़े बदल लो बोधा,
0: जाती
1: नहीं तो ठंड लग जाएगी।
0: जाती हूँ माँ, कोई कोठरी भी तो खाली हो। माँ माँ वो देखो पिताजी आ रहे हैं।
2: अरे उनके साथ वो सुंदर युवक कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा।
1: हेलो, कोठरी खाली हो गई, अब तुम पहले कपड़े बदलाओ, सुंदर युवक को बाद में देख लेना।
0: माँ जाती हूँ।
3: इधर से आइए जी।

0: जी आई आई
1: जी,
0: इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी है और ये है उदंग, लोथल के एक बड़े व्यापारी।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: बोधा नहीं दिखाई दे रही, क्या अब तक नहा रही है?
3: नहीं, कपड़े बदलने गई है, आ रही होगी।
0: ओ, और सुनाओ यहाँ के क्या समाचार है, कौन कौन आया है?
3: मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी एक सहेली का बेटा बहुत अच्छा कारीगर है, ऊपरले शहर के कई बड़े बड़े मकान और हवेलियाँ उसकी निगरानी में बने हैं।
0: हाँ हाँ, याद आया,
3: वो भी यहाँ है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, आप स्वयं बात कर लीजिए।
0: हाँ हाँ ठीक है, बुला ला।
4: आप क्या कोई हवेली बनवा रहे हैं?
0: हाँ, इरादा तो है, अभी तक हम लोग व्यापारियों और कारीगरों की निचली बस्ती में रहते आए हैं, अब मैंने ऊपरले शहर के एक पुराने धनी व्यापारी की हवेली खरीद ली है और उसे अपनी इच्छा अनुसार फिर से बनवाना चाहता हूँ।
3: जी आओ बेटा।
0: जी,
3: ये मेरे पति हैं, व्यापारी शिमुख।
2: नमस्कार।
0: प्रसन्न रहो। अरे भाई, तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, इतनी छोटी सी उम्र में ही तुमने कारीगर के रूप में बड़ी ख्याति अर्जित कर ली है।
2: जी, सब मातृ देवी की कृपा है।
0: अच्छा देखो, स्थान तो तुम्हारा देखा भला ही है।
2: जी।
0: उसमें आंगन का कुआं बिल्कुल टूट फूट गया है, उसे पक्का करवाना है।
2: जी।
0: उसके अलावा मवेशियों के लिए मुझे एक और प्रवेश द्वार चाहिए, जिससे मुख्य द्वार पर गंदगी न हो।
2: जी।
0: मवेशियों के रहने की जगह भी पक्का फर्श बिछवाना है, ऊपर की मंजिल पर कम से कम 2 नहान घर बनवाने हैं, जिनके फर्श और नालियां पक्की ईंटों के बने हुए हों।
5: और पिताजी, मेरे कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए जिनसे मुख्य सड़क दिखती हो।
0: लो भाई, हमारी लाडली बेटी की फरमाइश का भी ध्यान रखना, बंद कमरे में इसका दम घुटता है।
2: जी, मैं समझ गया। काम कब से शुरू करना है?
0: जब से तुम चाहो, कल मेरी दुकान पर आकर आवश्यक सामान लिखवा देना, 2-4 दिन में ही सब मंगा दूंगा, बस फिर तुम काम भी शुरू कर देना।
2: जी बहुत अच्छा, मैं कल सवेरे दुकान पर आ जाऊंगा। अच्छा, नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: नमस्कार। पिताजी, आपने अपने मेहमान को मेरा परिचय नहीं करवाया।
0: अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। भाई उदंग, ये मेरी बेटी है बोधा, और बोधा ये लोथल नगर के व्यापारी हैं उदंग।
4: नमस्कार।
3: नमस्कार। लोथल में ही तो वो जहाजों की गोदी बनाई गई है ना? सुना है समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसका पानी गोदी में भर जाता है और बड़े बड़े जहाज भी अंदर चले जाते हैं।
4: हाँ, ये तो ठीक ही सुना है आपने।
3: पर एक बात बताइए, जब ज्वार के बाद भाटा आता है तब तो पानी घट जाता है, तो वो जहाज कीचड़ में धस नहीं जाते?
4: नहीं, गोदी में पानी को रोके रखने की व्यवस्था है, ज्वार का पानी अंदर आने के बाद उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाता है।
3: ओह।
4: तभी भाटे के समय पानी कम हो जाने पर भी जहाज काफी पानी में सुरक्षित खड़े रहते हैं।
3: तो ये गोदी बनवाने का ख्याल आप लोगों को कैसे आया?
4: दरअसल हमारे शहर का व्यापार के क्षेत्र में इतना नाम तो था नहीं कि दूर देश के व्यापारी वहां तक आते। हमारे यहाँ सिंधु जैसी चौड़ी और गहरी नदी भी नहीं है कि उसमें बड़े जहाज चल सकते, लेकिन हमारे यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है।
3: अच्छा।
4: हमारे कारीगर मिट्टी के बर्तन भी बहुत अच्छे बना लेते हैं, फिर उत्तर पूर्व में खेतड़ी से अच्छा तांबा भी निकलता है, इसलिए लोथल के लोगों ने मिलजुल कर ये गोदी बनवाई जिससे हम भी व्यापार में प्रगति कर सके।
3: और क्या क्या है आपके लोथल में?
0: मेरी बेटी को दूर शहरों के बारे में जानने की बड़ी लालसा रहती है।
4: ये तो बड़ी अच्छी बात है।
3: जरा सुनिए।
0: क्या बात है?
3: आपके मित्र ने बोधा के लिए जिस लड़के की बात कही थी वो भी आज यहाँ आया हुआ है, उससे मिलेंगे? नहीं।
0: हाँ हाँ, लेकिन उदंग
3: वो तो बोधा से बात कर रहे हैं, चलिए इतने हम लोग उसे देख आते हैं।
0: अच्छा बोधा।
3: जी पिताजी।
0: मेरे मेहमान का ध्यान रखना, मैं और तुम्हारी माँ अभी आते हैं। हाँ
3: ठीक है पिताजी, आइए हम उधर चलकर बैठते हैं।
4: हाँ चलिए।
3: अच्छा लोथल में तो
6: बहुत।
4: सुथरा रखते हैं।
5: अच्छा, तो आपका लोथल भी साफ सुथरा शहर है?
4: हाँ, आपके शहर जैसा भव्य तो नहीं है, लेकिन चौड़ी सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं, और नालियों के बीच बीच में कूड़ा जमा करने के लिए गहरे गड्ढे भी हैं।
5: अच्छा,
4: इस मामले में दिलमन बिल्कुल उल्टा है।
5: क्या आप दिलमन भी गए हैं?
4: हाँ, व्यापार के सिलसिले में गया था। वहाँ के लोग सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखते।
5: काश मैं भी दूर दूर देशों की यात्रा कर सकती, व्यापार के तौर तरीके सीख सकती, लेकिन माँ कहती है ये सब तेरे काम नहीं है।
4: क्यों? अगर आपकी व्यापार में रुचि है तो इसमें बुराई क्या है? आपके पिता तो स्वयं एक बड़े व्यापारी हैं, आपको सब सिखा सकते हैं।
5: लेकिन वो तो बस ऐसी कोशिश में है कि कोई उपयुक्त वर तलाश करके मेरा विवाह कर दे।
4: ओह, हो सकता है विवाह के बाद आपको यात्रा करने और व्यापार सीखने का अवसर मिल जाए।
5: क्या मालूम।
0: बोधा, अरे बोधा, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें सरोवर के निकट ढूंढ रहे थे।
4: वो हम लोग बात करते करते इधर निकल आए।
0: अच्छा अच्छा, आप मात्री देवी के दर्शन करना चाहती हो तो चले।
4: आपकी बेटी कह रही थी कि उनकी व्यापार में बड़ी रुचि है, फिर आप।
0: अरे छोड़िए भी, व्यापार करना भी कोई लड़कियों का काम है।
4: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने दूर देशों की यात्रा की है, कई देशों में स्त्रियां इस तरह के काम करती हैं।
0: क्यों आप इस चिलफिरी लड़की का दिमाग खराब कर रहे हैं?
5: पिताजी,
0: ये सब करेगी तो फिर इसका विवाह कैसे होगा?
4: आप ऐसा वर तलाश कीजिए जो इन्हें ये सब करने की स्वतंत्रता दे।
0: फिर तो हो चुका विवाह। अरे ऐसा वर कहाँ मिलेगा?
4: अब ये इतना कठिन भी नहीं है। देखिए, मुझे ही लीजिए। मैं बहुत दिनों से ऐसी पत्नी के तलाश में हूँ जो अपने गहनों कपड़ों के अलावा भी कुछ सोचती समझती हो।
0: यानी आप विवाहित नहीं है?
4: नहीं।
0: तो फिर वो हार आपने किसके लिए लिया है?
4: वो अपनी भावी पत्नी के लिए।
0: अच्छा अच्छा
4: जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपकी बेटी से।
0: आप ये निर्णय कुछ जल्दी में नहीं ले रहे हैं?
4: जी नहीं, जल्दी नहीं करूंगा तो शायद देर हो जाएगी।
0: क्यों बेटी, तुम्हारा क्या विचार है?
5: पिताजी।
0: अरे बोधा की माँ, इधर सुनो तो।
3: क्या बात है?
0: उदंक लोथल के बड़े व्यापारी हैं और अविवाहित हैं।
3: हाँ हाँ, ये सब आप मुझे बता चुके हैं।
0: ये अपनी बोधा से विवाह करना चाहते हैं।
3: क्या सच? क्यों बोधा?
0: लगता है बोधा को अपना मन पसंद साथी मिल गया है।
3: मातृ देवी की कृपा है। चलिए हम सब चलकर उनके दर्शन करें। आओ बोधा।
5: चलो माँ।
3: आओ बेटा, आइए।

कल्पित कथा में दो स्थानों का उल्लेख किया गया है, लोथल और दिलमन। ये दोनों स्थान कल्पित नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा और भी बहुत से नगर प्रकाश में आए हैं, जिनमें रूपड़, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, भगतराव आदि प्रमुख हैं। गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई से ये पता चलता है कि यहाँ गोदी थी, जहाँ समुद्री जहाज आकर रुकते थे। यहाँ एक ऐसे जलमार्ग का प्रबंध किया गया था जहाँ ज्वार के समय समुद्र का पानी भर जाता था। उसके बाद फाटक बंद करके उस पानी को वहीं रोक लिया जाता था, जिससे बड़े जहाज भी इस गोदी में लंगर डाले खड़े रह सके। इस तरह लोथल व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। जिन दिनों भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का विस्तार हो रहा था, उन्हीं दिनों मेसोपोटामिया में सुमेर सभ्यता पनप रही थी। खुदाई में ऐसी व्यापारिक मोहरें मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से हमारे व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में एक राजा था जिसकी राजधानी अक्काद थी। वहां दिलमन नामक शहर से जहाज आया जाया करते थे। दिलमन को आज का बाहरेन माना जाता है।

जो प्याज नीकी आलू कच्चालू की मदद बहुत प्याज से आलू कच्चालू

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: ये विज्ञान गीत।

0: तभी तपाक से बोली पहेली।
1: हाँ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तो है मुझे पता, बाकी के नाते मुझे आप ही दो हमें बता। माँ बोलती, इससे पहले बूझो ने पहेली पर तंज कसा
2: और हंसते हुए बोला, भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है वसा।
1: दोनों की तनातनी देख माँ ने प्यार से दोनों को समझाया,
2: चलो सभी साथ में समझते हैं जो तुम दोनों ने अभी नहीं बतलाया।
3: विटामिन और खनिज लवण।

प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर बैठे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कब बारिश हो, और बारिश होने के बाद वो किसान साथी हमारे अगली फसल की तैयारी करेंगे। लेकिन साथियों, हमारे किसान साथियों को बता देना चाहते हैं, इससे पहले कुछ हमें अपनी जानकारी जुटाना चाहिए कि हमें कौन बीज अगली फसल में हमें बोना है। साथ साथ में हमें मेड़बंदान पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है। ऐसे में समतलीकरण अपनी जमीन को कर लेना चाहिए, अपनी खेती को कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक पानी उस खेत में नहीं रुकेगा तब तक नमी नहीं बनेगी और साथ साथ में पैदावार भी आपकी कम होगी। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जिस पथरीला चूंकि इलाका है, यहाँ पर पानी कितने सारे देते हैं तब पानी रुकता ही नहीं उसमें, तो कैसे अपने जो ढलान वाले खेत हैं, उबड़ खाबड़ वाले खेत हैं, उसको किस तरीके से उपजाऊ हम बना सकते हैं, समतलीकरण कर सकते हैं, चारों ओर मेड़बंदान कर सकते हैं, ये अभी खाली समय में हमारे किसान साथी काम कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो विशेष तौर पर उनको ध्यान देने वाली हैं। और यदि आपको लगता है कि हमें अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी जो झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं या फिर KBK बना हुआ है, वहां पर जाकर वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि हम कौन से बीज की तैयारी अभी से कर लें, उपचार के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम खेती को एक आधुनिक पद्धति से अपनी खेती को करना चाहिए, कैसे वैज्ञानिक ढंग से हमें खेती करना चाहिए जिससे हमारी लागत कम लगे और उत्पादन हमारा अच्छा हो। तो हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों बताते रहते हैं और हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे फसल जो रहती है उस पर जो हम जो उत्पादन करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के जो फसल हम उत्पादन करके हम जो बेचते हैं, उसमें किस तरीके से GI टैग लगाया जाता है, इस पर विस्तार से आज जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। कौन सा कानून है, कैसे लगता है और इससे हमारे किसान साथियों को किस तरीके से लाभ हो सकता है, सारी जानकारी इस चर्चा में हम आप सुनेंगे। तो देर नहीं करते हैं, आपको सीधा इस चर्चा में ले चलते हैं और उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से GI टैगिंग हमारे भारत में की जाती है, कौन कौन से फसलों पर GI टैगिंग की जाती है और कैसे इसके GI टैगिंग का हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं। तो आइए इस चर्चा को सुनते हैं। बने रहिए आपके RJ मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनों रेडियो आपनी बातें।
2: GI टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक में वहाँ की स्थानीय खूबियाँ मौजूद होती हैं। दरअसल GI टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं। भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। GI टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्थान ना करे। देश में इसके लिए बाकायदा कानून है। ये कानून आश्वासन धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं। और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशेषता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। GI टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ GI टैग का सफर करीब करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं, जिन्हें GI टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहा चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जरदालू, मगही पान और शाही लीची को GI टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को GI टैग मिला हुआ है। GI टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है, जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।
3: तो अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी GI टैगिंग यानी कि भौगोलिक पहचान के बारे में, थोड़ा बहुत तो जान लिया। तो फिर आइए इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर बजाज से यहाँ पर। GI टैगिंग की जब हम बात करते हैं, भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, तो ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में आप सबसे पहले जानकारी दें।
4: बहुत अच्छा सवाल पूछा आदिति आपने कि सबसे पहले GI यानी भौगोलिक पहचान की बात करते हैं। और शुरू में आपने कहा ही था कि असम की चाय और बनारस की साड़ियां, ये सब चीजें इतनी मशहूर होती हैं, जब भी कोई जाता है तो वो सोचता है कि इसको मैं जरूर खरीदूंगा, या अगर खाने पीने की चीज है तो इसका जरूर खाकर या उसका टेस्ट करके पता करूंगा कि ऐसा खास क्या है उसमें, और वाकई खास होता है। तो GI एक प्रोडक्ट, ये जो एक टैगिंग है, ये उरुग्वे राउंड के बाद जब ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था तब आर्टिकल 22 और 24 के तहत, तब ये कहा गया कि भाई हर भौगोलिक क्षेत्र की एक विशेष पहचान है, उस उत्पाद से जुड़ी हुई उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसकी एक खास विशेषता जुड़ी हुई है, तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी हमें उस पहचान को जो है वो बनाए रखना है कि हाँ ये जो उत्पाद है ये इस क्षेत्र का है और विशेष है, इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो ये एक WTO के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हुआ। अब उदाहरण जैसे आपने दिए, हमारे यहाँ अभी 415 के करीब GI टैग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारा मलियाबादी आम है, केसर आम है, बैंगनपल्ली आम है, अल्फेंजो आम है, चाय है, और इस तरह शाही लीची है बिहार की, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 415 के लगभग आज की डेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 140 जो है वो कृषि उत्पाद है।
3: जी, तो 140 कृषि उत्पाद हम कह सकते हैं कि इनकी GI टैगिंग हो चुकी है। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, ये GI टैगिंग करता कौन है, इसके बारे में भी तो हमारे किसानों को पता होना चाहिए।
5: ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की ब्रांच है
3: जी,
5: और वहां पर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अंडर द एक्ट, अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स या बॉडी जो रिकग्नाइज्ड बाय लॉ है वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि हम एप्लीकेशन लेके चले गए और रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर कर देगा, उसके लिए अंडर द एक्ट काफी रिगरस रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी बॉडी GI रजिस्ट्री के सामने जाएगी वो एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, वो नॉन ट्रेडिंग न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए, यानी कि एक एसोसिएशन है जिसके कुछ मेंबर्स रिकग्नाइज करते हैं उसको और कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म सर्टिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया, एट्रीब्यूटेबल टू दैट रीजन है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो लुक अलाइक होते हैं लेकिन वो उस रीजन से आते नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन बॉडी जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जरूरी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अब जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो हम पब्लिक राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे हम कोई ट्रेडमार्क या प्राइवेट राइट्स की बात करते हैं, वो प्राइवेट ट्रेडर्स की होती हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो कम्युनिटी को दिए जाते हैं
6: जी।
5: और ये जो बॉडीज जो होती हैं ये कस्टोडियंस होती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है और अंडर द एक्ट एक टेक्निकल कमिटी है, उसका प्रोविजन है जो उसको एनालाइज करती है, जो उसको देखती है कि ये जो जीआई प्रोडक्ट है वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है या नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर एप्लीकेशन एडवर्टाइज होती है, 4 महीने का टाइम दिया जाता है, कोई भी एग्रीड पर्सन वहां पर अपोज कर सकता है और उसके बाद फिर अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होती है तो वो रजिस्टर हो जाता है, वो जीआई रजिस्टर हो जाता है। अगर नहीं होगा तो ऑपोजिशन जो है वो चलती है। तो इस तरह से ये जीआई प्रोसेस कंप्लीट होता है
6: जी। तो पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है, इन बातों को जरूर ध्यान में यहाँ पर रखने की जरूरत हो जाती है। तो अब मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, धान हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की बहुत प्रमुख फसल है और उसकी बासमती की हम बात करें तो पहचान है, हमारे देश से बहुत ही अच्छे स्तर पर निर्यात भी होता है। तो ऐसे में बासमती के लिहाज से जीआई टैगिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अगर हमारे किसान और इसकी ओर बढ़ना चाहे तो?
7: देखिए अदिति, धान जैसा आपने भी कहा और पूरे विश्व में ये जानकारी है कि धान भारत के लिए विशेष तौर पर बासमती धान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है
6: जी।
7: इसके लिए हमारे किसान जो हैं वो विशेष तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं
6: जी।
7: लेकिन चूंकि धान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो उसकी उपज से लेकर और उसके निर्यात तक
6: जी,
7: उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होते हैं। अब धान के लिए भारत सरकार ने विशेष प्रयास किए, अपीडा को इसका अधिकार दिया कि वो बासमती को जीआई टैगिंग करें और इसी परिणाम स्वरूप 2016 में हमें बासमती चावल का जीआई टैग, जो जैसा अभी राजेंद्र जी ने बताया, चेन्नई जो रजिस्ट्रार है रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका अधिकार अपीडा को मिला
6: जी।
7: उसके बाद से अब तक पूरे जोर शोर से अपीडा इस प्रयास में कार्यरत है, इस प्रयासरत है कि हम कैसे ये जीआई टैगिंग को हम भारत से निकलकर बाहर जहां जहां हमारा हम करीब करीब 170 देशों में बासमती एक्सपोर्ट करते हैं
6: बिल्कुल,
7: और उन सभी देशों में जाएं और अपने इस जीआई टैग को वहां भी रजिस्टर करें
6: जी,
7: जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा उस बात का फायदा मिले, उसका लाभ मिले, क्योंकि जितना हम निर्यात करेंगे उतना ही हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा
6: बिल्कुल। तो जीआई टैगिंग के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का बदलाव आपने एक्सपोर्ट में देखा है, निर्यात में किस तरह का बदलाव आया है जब से जीआई टैगिंग हुई है?
7: देखिए, जीआई टैगिंग से एक बहुत बड़ा लाभ जो उस उत्पाद का जो मालिक है उसको मिलता है
6: जी।
7: जीआई टैग का, जैसे कि अभी बजाज साहब ने भी बताया, जीआई टैग अपने आप में एक विशेष उत्पाद है, तभी उसको जीआई टैग मिलेगा। और जब उत्पाद विशेष है तो स्वाभाविक है उसका मूल्य भी विशेष मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कारण है कि बासमती के उत्पाद से हम बहुत लाभ, पूरा देश और हमारे देश के पूरे किसान इस बात का लाभ उठाते हैं और पूरे संसार में हम लोगों को बासमती खिलाते हैं, इसके लिए श्रेय हमारे किसानों को जाता है
6: बिल्कुल। इसका पूरा श्रेय जो है हमारे किसानों को जाता है और हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भी रहा है और हमारे किसानों का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सहयोग है। बढ़ना चाहेंगे आगे, डॉक्टर बजाज आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे। आपने बताया कि 140 के करीब कृषि उत्पाद है जिनको जीआई टैगिंग मिल चुकी है, लेकिन अगर हमारे किसान या फिर कहें कि और संगठन वगैरह अलग अलग उपज की जीआई टैगिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कहां आवेदन करना होगा, क्या प्रक्रिया रहती है उसकी?
4: बहुत से ऐसे उत्पाद हैं, जैसे अभी कहा कि केवल 140 ऐसे उत्पाद हैं जो कि अभी जीआई रजिस्टर हुए हैं
6: जी।
4: और हमारे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जो उत्पाद हैं जो कि विशेषता रखते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं भारत की अतुल्य, भारत की अमूल्य निधि ये कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र विशेष की प्रतिष्ठा लिए हुए हैं, तो उनको रजिस्टर कराने के लिए जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे बासमती चावल है वो हर उस किसान का हकदार है जो बासमती उगाता है, तो इसीलिए जो उत्पाद है उसको एक कोई एजेंसी जो है, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या गैर सरकारी संस्था हो, जो कि सच में हकदार

0: है उसका कस्टोडियन बनने की, उसको लेकर वो रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं और उसका फिर पूरा एक प्रोसेस है रजिस्टर कराने के लिए, जैसा भी राजेंद्र जी ने बताया था
1: जी।
0: कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और उसके बाद कस्टोडियन बनना भी आसान नहीं है। मैं अगर एक उसका जीआई का कस्टोडियन बन गया तो उसकी पहरेदारी भी करनी है मेरे को, जैसे हम बासमती की पहरेदारी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं दुनिया में कोई जो है वो बासमती ना कहलाए, हम कहते हैं जैसे ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन होता है ना कि मेरे ट्रेडमार्क को कोई दूसरा ना इस्तेमाल कर ले, इसी तरह जब एक जीआई रजिस्टर हो जाता है तो उसका एक पहरेदारी भी करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है। भाई दूसरे को तुम नाजायज, हम उसका बगैर हमारी मर्जी के हम उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि ये एक विशेष अधिकार है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जिसका वो उत्पाद है उसको हम प्रीमियम मिलता है, दूसरे उत्पाद में उसको पता होता है कि ये जो भी खरीद रहा है उसको मालूम है कि ये एक विशेष चीज है जो मैं खरीद रहा हूं और इससे मुझे जो है एक एक अच्छा जो है वो और कहीं नहीं मिलता दुनिया के कोने में, एक यहीं पर ये चीज मिलती है और उसका एक प्रीमियम भी उनको दिया जाता है। तो इसीलिए इसका जो है वो रजिस्टर संस्था कर सकती है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी हो, और फिर उसका कस्टोडियन भी बनना पड़ता है।
1: बिल्कुल, तो आपने कहा कि एक संस्था यहाँ पर जीआई टैगिंग के लिए आवेदन आगे बढ़ा सकती है, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या फायदा लाता है ये जीआई टैगिंग, किस तरह से फायदेमंद साबित होता है? राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, हमारे किसानों के लिए जीआई टैगिंग कितना फायदेमंद है?
2: मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल।
2: दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी का प्रोटेक्शन 1986 से फॉर्मल ढंग से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट है ये 2003 में आया, 15 सितंबर 2003 में। उससे पहले भी इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन रही और दार्जिलिंग टी जो है एक सर्टिफिकेशन मार्क है। तो 2018 में वर्ल्ड बैंक और एफएओ ने एक स्टडी स्पॉन्सर की थी जिसमें 6 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वर्ल्ड वाइड से सिलेक्ट किए गए थे, उसमें दार्जिलिंग टी भी थी। और उस स्टडी का फोकस था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन से क्या फायदा होता है। तो उसमें दार्जिलिंग टी के बारे में ये बताया गया कि जब से दार्जिलिंग टी की प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई है तो उसका बेनिफिट जो वहां पे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि दार्जिलिंग टी सिर्फ 87 टी गार्डन्स में ही प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि सारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करता है, सिर्फ 87 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे दार्जिलिंग टी होती है और वहां पर मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स वो विमेन है। तो उनका एम्पावरमेंट जब जीआई प्रोटेक्शन से होता है तो उनके लिए स्कूल्स, हर टी गार्डन ओनर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो गार्डन में देता है। तो उस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि दार्जिलिंग टी की वैल्यू टुडे इन कंपैरिजन टू जो ऑर्डिनरी टी है वो इतनी ज्यादा है जीआई प्रोटेक्शन की वजह से। और दार्जिलिंग टी वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड है, उसको जो है यूरोपियन कमीशन ने भी जीआई टैग दिया था और वो जीआई टैग मिलने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ दार्जिलिंग टी बढ़ गए हैं। और जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उसका जो बेनिफिट जो है ग्रास रूट्स पर जो वर्कर्स हैं जो वहां पे काम करते हैं उन पे होता है, ऐसा ही बासमती राइस पे भी होगा। इनफैक्ट बासमती राइस का प्रोटेक्शन भी जो है उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है और अब जो है बासमती राइस जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है, जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया, और उसका प्रोटेक्शन भी उसी लेवल पे चल रहा है जो दार्जिलिंग टीका है।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर फायदे तो अनेक हैं अगर हम जीआई टैगिंग करते हैं। रुक करना चाहेंगे अब डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि अब यहाँ पर कवायदे चल रहे हैं, कोशिशें चल रहे हैं कि अलग अलग देशों में भी जीआई टैगिंग हो सके हमारे बासमती चावल की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जीआई टैगिंग किस तरह से काम करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: देखिए अदिति, जैसा कि हमारे घरेलू सिस्टम में एक जीआई रजिस्ट्रार है, उसको हर किसी कोई भी प्रोडक्ट को रजिस्टर करने का एक तरीका है
1: जी।
3: इसी तरीके से अगर हम विदेशों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां भी लगभग वैसे ही तरीके सामने आते हैं हमारे। और अगर हम वहां अपने जीआई टैग प्रोडक्ट को अगर वहां नहीं कराते हैं रजिस्टर, तो हो सकता है वहां कोई हमारे हमारे चीज के नाम को का दुरुपयोग करके वहां वो बेचता रहे। इसलिए यदि हमें अपने जीआई प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको संभाल कर रखना है, तो ये जरूरी है कि हम अपने उस उत्पाद को जहां भी हमारा मार्केट है, हमारा जो मुख्य मार्केट है, उस मार्केट के उन देशों में जाएं और अपने उस उत्पाद को वहां भी रजिस्टर करें। इसी कड़ी में अपीडा ने एक बड़ी पहल की बासमती के लिए, क्योंकि बासमती हमारे लिए बहुत बड़ा उत्पाद है
1: जी।
3: अगर मैं दो दशक की बात करूं, 2002-03 के लगभग बासमती का जो एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 7 मिलियन के करीब था, आज वो बढ़कर करीब 45-46 मिलियन टन हो गया। तो इस बड़े उत्पाद को, जिसका कि पूरा का पूरा लाभ और श्रेय हमारे किसानों को जाता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम विदेशों में जो हमारे ग्राहक जो देश है, उन सभी देशों में प्रयासरत हैं कि हम बासमती को जैसा हमने भारत में रजिस्टर कराया एक जीआई प्रोडक्ट, उसी तरीके से हम विदेशों में भी जाएं और अपने इस बासमती को एक जीआई टैग के तहत वहां भी रजिस्टर कराएं। और इस कड़ी में हम करीब करीब 20 के करीब देशों में हम हमारी एप्लीकेशन जो है, हमारे प्रार्थना पत्र वहां चले हुए हैं, और इस कड़ी में करीब करीब 8 देशों में हम ऑलरेडी या तो जीआई ले चुके हैं या बासमती का हमारा एक लोगो है, या तो हमने लोगो को रजिस्टर कराया है। तो ये रजिस्टर कराने से क्या होगा कि हमारा उस देश में भी हमारा बासमती प्रोटेक्ट रहेगा, कोई और उसकी नकल नहीं कर सकता, उस नाम को मिसयूज नहीं कर सकता, और हमारे जो किसान है, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ जो बासमती है वो धड़ल्ले से वहां बिकेगा और उसका पूरा लाभ उनको मिलेगा।
1: हमारे किसानों ने जो कड़ी मेहनत से बासमती यहाँ पर तैयार किया है, उसकी पहचान बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, कोई भी उसका दुरुपयोग, उसके नाम का दुरुपयोग यहाँ पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बजाज, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जब किसी भी कृषि उत्पाद को यहाँ पर जीआई टैगिंग मिलती है, तो ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र के किसान हैं या फिर उसी क्षेत्र के हम किसानों की बात करें, तो उन्हें किस तरह से फायदा मिलता है इसका?
0: सभी को फायदा मिलता है
1: जी।
0: जब जीआई टैगिंग हो जाता है तो जैसे ये कहा कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है
1: जी।
0: अब बासमती जीआई टैग हुआ तो जहां जहां बासमती उगाया जाता है वो उसका सबको लाभ मिल रहा है, ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का लाभ रह गया। जो अपने उस क्षेत्र को जो कि आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, उस आइडेंटिफाइड क्षेत्र से अगर वो अपना उत्पाद लेकर आता है तो वो उसका वही उत्पाद है और उसको वो उसका जो प्रीमियम है वो क्लेम कर सकते हैं। खाली बासमती की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह बहुत से, जैसा मैंने कहा अभी दार्जिलिंग चाय की बात करी, आम है, हमारे अंगूर हैं, शाही लीची है, और भी बहुत से ऐसे उत्पाद और प्रोसेस फूड हैं जैसे रसगुल्ला है, बहुत से ऐसे खास जो उत्पाद हैं हर क्षेत्र के जुड़े हुए, तो उनके जो उत्पाद हैं जो जो उन उत्पादों को उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सदियों से उसका उत्पादन कर रहे हैं, उनको लाभ मिलता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बेचने में आसानी है, क्योंकि खरीददार को पता है कि ये विशेष है, मैं जाता हूं वहां जाएंगे। आप छोटी सी बात समझिए, आप भी कहीं जाते हैं, बोले फला के फला खाने की चीज बड़ी मशहूर है, तो आप चाहे थोड़ी दूर ही क्यों ना जाना चाहे, वहां जाते हैं और वहां जाके एक जरूर खाते हैं और बार बार जाते हैं। इसी तरह ये या जाते हैं जब कभी आप किसी राज्य में जा रहे हैं, किसी जगह पे जाते हैं, तो बोलते हैं कि वहां की एक खास चीज है, जैसे मैंने कहा बनारस की साड़ियां बहुत मशहूर हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं जरूर वहां खरीदूं और उसका जो है वो मुझे भी लाभ मिले।
1: बिल्कुल, तो कश्मीर तो जा रहे हैं तो शॉल लेना बहुत जरूरी है,
0: केसर खरीदेंगे वहां का,
1: तो ये दक्षिण में जा रहे हैं तो यहाँ का सिल्क बहुत मशहूर है। बिल्कुल,
0: तो बेचना आसान है, और दूसरा ये कि उसका फिर उसको प्रीमियम भी मिलता है, क्योंकि खरीददार को भी मालूम है कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो एक विशेष चीज है, ये आम चीज नहीं है जो मैं खरीद रहा हूँ, ये मुझे सिर्फ इसी क्षेत्र से, इसी व्यक्ति विशेष से, इसी जो है वो एरिया से मिलती है, तो इसलिए एक उसको भी एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ एक यूनिक प्रोडक्ट को मैं खरीद रहा हूँ।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर बजाज आप कह रहे हैं कि एक प्रीमियम मिलता है कस्टोडियन को, तो ये प्रीमियम कौन देता है और इससे फायदा क्या होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: खरीदार देता है ना प्रीमियम, वो खरीदार जो है वो जाता है, उसको एक तो उसको पता है कि धान जब उदाहरण जब आपने दिया बासमती का ही, तो बासमती के जो खरीदार है वो जो रेट देगा और दूसरे जो धान है उसमें फर्क तो रहता ही है
1: जी।
0: तो बासमती का सबसे महंगा चावल, बहुत सी वजह है, उनमें से एक वजह तो ये भी है कि वो जीआई टैग है और दुनिया भर में बासमती को हम ठीक दाम पर बेचते हैं, लोग इसको जो है एक्सपोर्ट में हमें प्राइसेस भी अच्छे मिलते हैं जिसका ऑफकोर्स किसानों को लाभ भी मिलता है, तो उसी वजह से क्योंकि ये जीआई टैग है। और भी बहुत सी बातें हैं उसकी विशेषता है, लेकिन विशेषता ये भी है क्योंकि ये जीआई टैग है, एक खास भौगोलिक पहचान है इसकी।
1: बिल्कुल, जीआई टैगिंग मिल गई है तो विश्व भर में उसकी पहचान हो गई है, विश्व की नहीं अपने देश की बात कर ले तो पहचान हो गई है। जब भी कभी वहां उस क्षेत्र में जाते हैं तो हम उसका स्वाद या फिर उस चीज को लेना जरूर पसंद करते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि हम कोई भी उत्पाद यहां पर तैयार कर रहे हैं तो उसकी जीआई टैगिंग जरूर करवा लें। फायदे अनेक हैं, हर एक को इससे फायदा मिल सकता है। और किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है जीआई टैगिंग और इसकी जो प्रक्रिया है उसमें क्या किसी तरह की कोई समस्या भी आती है, इस पर भी हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: कृषि उत्पादों की भौगोलिक पहचान के बारे में। जी हाँ, जीआई टैगिंग पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। क्या होती है ये, किस तरह की इसकी प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में तो हमने जान लिया और इससे फायदे क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी विशेषज्ञों ने हमें विस्तार से बताया है। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया में जाते हैं तो कुछ समस्याएं तो जरूर आती होंगी, जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र कुमार जी से कि जब हम जीआई टैगिंग पर जाते हैं तो कुछ समस्या तो आती होंगी। हमारी एजेंसियों को या संगठनों की बात करें तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जब ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के सामने जाती है तो एक समस्या होती है कि जब एग्जामिनेशन होता है उसका, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब उसको एनालाइज करते हैं तो उनका मेन फोकस होता है कि जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं ये साइंटिफिकली एक्यूरेट हैं या नहीं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक है या नहीं। क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ऐसा होता है जैसे कोई इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पे जो है पास ऑफ किए गए, वो ऑथेंटिक सोर्स बहुत जरूरी है। और उसके बाद जरूरी होता है कि इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स की जो बॉडी रजिस्ट्रेशन के लिए जारी है उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने का, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं उस प्रोडक्ट को उस रीजन के साथ। और जब तक वो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म उसका उसके पीछे नहीं होगा तो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कश्मीरी कारपेट्स
0: जी।
1: अब कश्मीरी कारपेट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए जो बॉडी जिसने रजिस्टर कराया है कश्मीरी कारपेट एज ए जीआई, उन्होंने क्यूआर कोडिंग की है। जब आप कारपेट लेने जाते हैं तो उसमें क्यूआर कोडिंग है और कोई भी स्मार्टफोन से किसी भी डिवाइस से उस क्यूआर कोड से ये मालूम कर सकता है कि ये कहाँ किस रीजन से है, किस वीवर ने इसको वीव किया है। तो इसलिए जब कभी भी मार्केट में कश्मीरी कारपेट बिकता है तो उसके ऊपर जो क्यूआर कोड लगाता है उससे कस्टमर जो है वो मालूम कर सकता है कि ये जेन्युइन कश्मीरी कारपेट है। तो ये जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रार ऑफ जीआई एग्जामिन करता है। और उसके बाद एक और मुद्दा आता है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द बॉडी की जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, कि कभी कभी जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उस पूरे प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। बहुत एग्जांपल्स आते हैं, हैदराबाद बिरयानी का एग्जांपल बड़ा फेमस है जिसमें वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो जो बॉडी थी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी और उन्होंने जो है वो अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाए तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का होना, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म का होना, ट्रेसिबिलिटी का होना और फिर जो है जो ओवरऑल सुपरविजन है उसके बाद फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। और जैसे मैंने पहले समझाया उसके बाद कोई भी अपोज भी कर सकता है एप्लीकेशन, और ये अपोजिशन कहीं से भी आ सकती है, हिंदुस्तान से ही नहीं फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
0: और तो जैसे आपने कहा कि उसके विरोध में भी यहाँ पर सवाल उठाए जा सकते हैं, अपोजिशन हो सकता है, तो ऐसे में फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, उसका जस्टिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है?
1: उसका जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के सामने जो कि क्वेजाई जुडिशियल बॉडी है, जैसे कोर्ट्स होते हैं तो उसमें वो एविडेंस

0: एग्जामिन होता है जिसे दूसरी बॉडी ये कहती है जो अपोज करती है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज ये नहीं है
1: जी,
0: ये होनी चाहिए या इसका एरिया इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप की ऑपोजिशन आती हैं और उसको भी जो है थ्रू प्रॉपर जुडिशियल माइंड एग्जामिन किया जाता है कि ये सच है या नहीं। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट डॉक्टर बजाज ने बताया, उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 24.9, वो ये कहता है कि अगर कोई जीआई डोमेस्टिकली प्रोटेक्टेड नहीं है तो किसी कंट्री के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर उसकी जो स्क्रूटनी होती है, उसका एग्जामिनेशन होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे बासमती का एग्जाम्पल दिया, दार्जिलिंग टी का एग्जाम्पल दिया, ये डोमेस्टिकली रजिस्टर्ड है
1: जी।
0: और इसीलिए जो है बाहर की कंट्रीज, बाहर के कोर्ट्स उसको रिकग्नाइज करते हैं कि हमने हिंदुस्तान में उसको प्रोटेक्ट किया।
1: बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ यहाँ पर समझाया है राजेंद्र जी ने। हम उम्मीद करते हैं कि अब भी अगर आप जीआई टैगिंग के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन से हम कह सकते हैं दस्तावेजों की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है जिससे आप जीआई टैगिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हम डॉक्टर शर्मा के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, जब हम किसी कृषि उत्पाद की जीआई टैगिंग की बात करते हैं तो उससे हमारे किसानों को ही फायदा नहीं होता बल्कि फसलों को भी उससे काफी फायदा होता है। फसल संरक्षण की हम बात करें तो उससे भी काफी मजबूती मिलती है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि फसल संरक्षण किस तरह से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं तो।
2: देखिए अदिति, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग कोई भी उत्पाद का जीआई टैग ले लेते हैं, लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि उस जीआई टैग को हम कैसे संभाल कर रखें
1: जी,
2: और कैसे उस उत्पाद के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि यदि हम उस टैग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा टैग लेने का कोई विशेष लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने बासमती का जीआई टैग लिया, हम पूरे विश्व में बासमती चावल जो है लोगों को खिलाते हैं और लोग पसंद करते हैं। उसमें विशेष अरोमा है, उसकी एक अपनी लेंथ है, उसकी एक ब्रेड्थ है, उसमें जो बायोकेमिकल जो बासमती के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुदरती रूप में जैसे जैसे जिन जिन इलाकों में बासमती होता है उनमें वो होगा ही होगा। तो हमें ये भी पक्का सुनिश्चित करना है कि वो सारी जो क्वालिटी, वो जो मानक जिनको हम कहते हैं या स्टैंडर्ड हम कहें, वो स्टैंडर्ड बासमती उत्पाद जो हमारा निकले, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ बासमती, वो सारे के सारे मानक उसमें पूरे हों। यदि वो मानक पूरे नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए कल को हमने कोई बासमती के नाम पर हमने चावल भेज दिया यूके में और वहां लोगों ने देखा, या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बड़े समझदार हैं, कंज्यूमर को अगर कल को पता लगेगा नहीं ये तो बासमती जैसा नहीं है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब वो कोई भी उत्पाद, वो बासमती हो या कोई अन्य जीआई टैग उत्पाद हो, जब वो उसका उत्पादन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करें
1: जी।
2: यदि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, उसके एक्सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं आती है और किसानों के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है, माला माल है।
1: बिल्कुल, तो मानक के अनुरूप यहाँ पर उत्पादन करना बहुत जरूरी है। ऐसे में ही उपभोक्ता जो है ज्यादा से ज्यादा उस हम कह सकते हैं उत्पाद का खरीदेंगे या फिर सेवन भी करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे, जीआई टैगिंग हो गई है लेकिन उन मानकों के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इस अवस्था में क्या होगा?
3: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा दी थी, क्योंकि जीआई टैग लेना ही खाली काफी नहीं है। अब उसके बाद जैसे बासमती तो चलो उदाहरण हम बार बार दे रहे हैं, दार्जिलिंग चाय का भी उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत वॉल्यूम में उसकी उपलब्धता है
1: जी।
3: ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी हमारे पास है तो सही, जीआई टैग भी ले लिया हमने, लेकिन उतना जो है उसकी वॉल्यूम में उपलब्धता नहीं है और उपलब्धता अब उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक, जो भी उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अब एकजुट हों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इसका जो है एक भौगोलिक पहचान हो गई है उत्पाद की, तो उसके साथ जुड़े किसान या किसान जो उनके साथ हैं जो प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, क्योंकि खाली फसलों का ही या उन्हीं का ही जीआई टैग नहीं होता, जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनका भी जीआई टैग होता है, तो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक क्लस्टर अप्रोच में चलें जिससे कि वो मिलकर एक वॉल्यूम दे सके, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा थोड़े थोड़ी चीज से उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई ऐसे उत्पाद हैं जो महीने में साल में एक महीना होते हैं और उसको बेच दिया और 12 महीने उसको खत्म हो गया, उसको कोई लाभ नहीं है। तो सबको मिलकर क्लस्टर अप्रोच लेके चलना है और एक FPO बनाकर FPCs बनाकर उसको कोशिश करनी है कि हम लोग वॉल्यूम दें, जिससे कि वॉल्यूम होने से क्या फायदा होगा, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, दूसरा हम वॉल्यूम होने से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए, उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपने घरेलू बाजार में भी हम बेच पाएंगे। उससे जब कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा हमारा बिक्री होगी, तो उसका लाभ जो है वो नीचे तक जाएगा। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं, कॉस्टिंग को ध्यान रखें और अपनी जो एक विशेष पहचान है उसको बनाए रखें। उसके अलावा जो हमारी जो जीआई टैग को अगर इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है उसको भी बचाने की पूरी कोशिश करें। ये एक तरह का ट्रेडमार्क है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज है जिसको मैं या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
1: बिल्कुल, तो इस बात का भी जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बताया कि ऑथेंटिसिटी यहाँ पर हो जाती है जब हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उपभोक्ताओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये सच में कश्मीर का शॉल है, क्या ये सच में लखनऊ का आम है। ऐसे में क्या कह सकते हैं आप हमारे उपभोक्ताओं को कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी यहाँ पर प्रूव हो?
0: जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कश्मीरी कारपेट्स में QR कोडिंग एक वन ऑफ दी मींस चूज किया गया है, जिससे कंज्यूमर अपने आप ही ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं।
1: जी,
0: ये प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे दार्जिलिंग टी है या बासमती राइस है या अल्फोंसो मैंगोज है, उसमें ऑथेंटिसिटी का प्रूफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे एरोमेटिक राइसेस हैं, एरोमेटिक राइसेस एक जैसे ही लगते हैं, और ये समस्या जो है हमारे सामने आई थी 1998 में, एक US की कंपनी राइसटेक, उसने पेटेंट लिया और उस पेटेंट में ये कहा गया कि बासमती राइस जो है कोई नेचर का गिफ्ट नहीं है, इसको कहीं भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक राइस अपने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसे बासमती राइस की होती है, एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन, और उन्होंने कहा कि ये राइस जो है हम US में ही ग्रो करेंगे। तो उस पेटेंट से हिंदुस्तान काफी रैटल्ड हो गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें APIDA और CSIR का बहुत रोल था, उन्होंने वो एप्लीकेशन फाइल की, रेवोकेशन की USPTO के सामने, और ये प्रूफ किया कि ये जो प्रोडक्ट है बासमती राइस, ये यहीं प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो नेचर ने दी है और उसको जो है कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इस एफर्ट की वजह से वो पेटेंट जो है रिवोक हो गया, वहां की अथॉरिटी ने, वहां के कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोटेक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन करें कि हम एनफोर्स भी कर सकें। टर्मरिक पाउडर का एग्जांपल आता है, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, US कंपनी ने उसको पेटेंट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है रिवोक किया। तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ी हमें, हमें ये प्रूव करना पड़ा कि जो टर्मरिक पाउडर है हमारा, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, और उसको कोई भी जो है उस पर पेटेंट नहीं ले सकता।
1: तो बिल्कुल, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी प्रूफ यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर जीआई टैगिंग जो करवाते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि मानकों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। अब हम निर्यात की यहाँ पर फिर से एक बार बात कर रहे थे, डॉक्टर बजाज आपके पास आना चाहेंगे। हम APIDA की बात करते हैं, तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष संस्थान माना जाता है। जीआई टैगिंग होने के बाद निर्यात में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे हमारे किसान, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ओर बढ़ सके, इसके लिए हम जानना चाहेंगे।
3: अब एपिडा पूरा निरंतर प्रयासरत है कि जो भी जो जीआई टैग है, जो भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, उनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके और निर्यात बढ़ भी रहा है। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, हम लगभग 3,00,000 करोड़ से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रहा है और लगभग हर साल ये निर्यात जो है वृद्धि की ओर ही जा रहा है। पिछले साल तो हमने करीब 29% की वृद्धि दी इसमें।
1: बिल्कुल, बहुत ही बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं, सकारात्मक बदलाव यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, बताएं क्या कह रहे थे आप।
3: तो भौगोलिक पहचान के जो उत्पाद हैं उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो भौगोलिक पहचान के हमारे उत्पाद हैं, जैसा मैंने कहा अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है ये हमारी, तो इसका लाभ जो है वो जो उसके हकदार हैं उन तक मिलना चाहिए और जो उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि वो भी इसका उपयोग कर सकें। तो एक विशेष अभियान चलाया हम लोगों ने, हम बायर सेलर मीट कर रहे हैं, क्रेता विक्रेता सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहां से जो है उत्पादों को ले जाकर उनका विशेष जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, जिससे कि लोगों को बताएं कि ये जो विशेष जो उत्पाद है ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक विशेष क्षेत्र का ही उत्पाद है, हर जगह से नहीं मिल सकता है। तो एक अच्छी एक जो है वो खरीदार को भी अच्छा लगता है उसको खरीदने में और उसका लाभ भी उसको मिलता है। विशेष अभियान चल रहा है, बहुत प्रमोशन हो रहा है, बैकवर्ड लिंकेज जैसे मैंने कहा उस तरफ हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका वॉल्यूम मिले, उत्पादन हो, और बहुत जरूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बनी रहे, इस तरफ भी ध्यान रखते हैं। और बहुत जरूरी है कि अगर जीआई ले लिया तो उसका प्रोटेक्शन भी रखना है, ये ना हो कि मैं तो जीआई लेके बैठ गया और दूसरा कोई जो है उसी उत्पाद को जो है उसी नाम से बेच रहा है, ये भी नहीं होने देना, इसको भी हम लोग प्रयास रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, बिल्कुल इस ओर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि डॉक्टर बजाज ने बताया है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है हमारे देश को, हमारे देश की एक अलग पहचान बन रही है विश्व स्तर पर। तो ऐसे में हम सभी को इस ओर भी खास ध्यान रखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। हम भी फिलहाल बढ़ते हैं आगे और यहां पर मैं डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो जीआई टैगिंग बहुत सारे उत्पादों की हुई है, लेकिन खास तौर पर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ज्यादा ऐसे उत्पाद देखने को मिलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
2: देखिए, ये निश्चित रूप से आदित्य आपकी बात सही है और हमारे उत्तर भारत के जो किसान हैं उनको भी ये जरूरत है कि वो भी जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, वहाँ छोटे छोटे कई ऐसी उत्पाद हैं जिनको आगे लाके उनको जीआई टैगिंग करा के उनके उत्पादन को बढ़ा के और उनको एक बड़ा बाजार दिया जा सकता है। और उसके लिए ये जरूरी है कि वहाँ जो छोटे समूह हैं, हमारे जो किसान समूह जिनको आजकल पूरे भारत सरकार और पूरी राज्य सरकार भी जिनको पूरा महत्व देते हैं और उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचने का एक प्रयास है, तो ये किसान समूह एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकते हैं, जो हमारे किसानों को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर लाके और जो हमारी इस तरह की जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है उनको, जैसे कि बजाज साहब ने कहा कि इसमें जल्दी से अपना ये प्रयास करें किसान लोग, अगर कोई उत्पाद उनके आसपास के एरिया में, उनके जिले में, उनके तहसील में, या कोई जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ 10-12 गांव ही हो जहां पे वो विशेष रूप से वो कोई उत्पाद होता है, वो उत्पाद फल का हो सकता है, वो उत्पाद किसी सब्जी का हो सकता है, वो उत्पाद किसी अन्न का हो सकता है। जैसे अगर आप आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं, एक भालिया गेहूं है, अब वो भावनगर जिले के थोड़े से कुछ एरिया में भालिया गेहूं के नाम से उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा, हाँ बाद में अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है, उसका निर्यात करना है, तो वाकई में हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता को ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन जीआई करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आसपास हमारे किसान भाई खास तौर पर और जो हमारे किसान समूह है वो ये सुनिश्चित करें अपने आसपास के एरिया में यदि कोई विशेष उत्पाद है तो उसको जीआई के लिए आगे लेकर आए ताकि कालांतर में आने वाले समय में वो उसका पूरा लाभ उठा सके।
1: बिल्कुल, तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि भावनगर का एक भालिया गेहूं है, अगर हमारे किसान उस छोटे से क्षेत्र में ही उस दायरे में ही ना रहकर विश्व स्तर पर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो जीआई

0: 90.8 FM આપણું રેડિયો આપણી વાતે બિલ બિલ
1: GI टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलवा सकती है। इसके लिए अब हम सभी को आगे बढ़ना होगा। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं, आइए उनसे और जान लेते हैं। ऐसे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर बजाज से। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि GI टैगिंग जो है प्रसंस्कृत उत्पादों की भी की जा सकती है। अभी तक किसान अलग अलग उपज की यहाँ पर GI टैगिंग कर रहे थे, लेकिन अगर प्रसंस्कृत उपज यहाँ पर लेकर आते हैं, उत्पाद लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया कोई अलग है या फिर वही प्रक्रिया रहेगी?
2: वही प्रक्रिया
1: जी।
2: जैसे मिठाइयां हैं, कई हमारी विशेष मिठाइयां हैं, उनका GI टैग है। बहुत सी ऐसी मिठाइयां जिनका तो GI टैग हुआ ही नहीं है, और बहुत सी जरूरत है, क्योंकि ऐसी विशेष जगह चीजें हैं जिनका हम लोग अब जानते हैं। हम रोजमर्रा में बात करते हैं कि उस जगह की ये चीज बड़ी मशहूर है, वहां जाके हम लोग जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सी मिठाइयां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, अलग से प्रतिष्ठा है, उनको जो है वो GI टैग की आवश्यकता है। और जब GI टैग हो जाता है तो सबसे पहली तो एक मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि अब ये उत्पाद मेरे ही क्षेत्र का, हमारे ही क्षेत्र का है, और उसको जो है जो भी आएगा हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्पाद है, इसी क्षेत्र विशेष से मिलता है। तो जो भी उपभोक्ता आ रहा है वो उस चीज को खरीदने में उसे भी सेटिस्फेक्शन होगी और हमें बेचने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है वो हम लोग उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं कि ये उत्पाद इस जगह का है, विशेष GI उत्पाद है।
1: जब एक अलग पहचान मिल जाएगी तो उसके दाम भी काफी अच्छे मिलेंगे, तो इससे फायदा ही फायदा हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। उपभोक्ताओं के साथ अगर किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान भी है?
3: बिल्कुल, हमारी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों हैं
1: जी।
3: उसमें जो GI ओनर होता है, जो कस्टोडियन होता है, उसको राइट दिया गया है कि वो कोर्ट में जाके एक इंफ्रिंजमेंट एक्शन फाइल करे, और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इंफ्रिंजमेंट के भी काफी फॉर्म्स होती हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि GI प्रोडक्ट नहीं है वो मार्केट में पास ऑफ कर रहा है एज ए GI प्रोडक्ट। तो वो जैसे बनारसी साड़ी का एग्जांपल है, बनारसी साड़ी जैसे मेड इन चाइना हिंदुस्तान में बिक रही है, लेकिन बनारसी वो जो है बनारसी साड़ी के GI का इंफ्रिंजमेंट होगा, और उसमें जो है सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्रिमिनल रेमेडी भी जो है अंडर द एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस मानी गई है। उसमें जो है पुलिस जो है विदाउट एनी एनेबलिंग पावर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट भी कर सकती है, इसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो हमारा GI एक्ट काफी स्ट्रांग है और काफी मॉडर्न है, और उसमें जो प्रोविजंस हैं अगर GI ओनर उनको एनफोर्स करे तो हमारे कोर्ट्स जो हैं काफी फोर्थ राइट है। इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगा, स्कॉच विस्की एसोसिएशन हिंदुस्तान में 1980 से इंफ्रिंजमेंट एक्शन फाइल कर रही है, और उन्होंने जो है एक तरह से बॉडी ऑफ केस लॉ बनाई है। अगर हम GI लॉ के बारे में हिंदुस्तान में देखते हैं तो SWA स्कॉच विस्की एसोसिएशन ने जो कंट्रीब्यूट किया है केस लॉ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आज तक बहुत यूजफुल रहा है
1: जी। बिल्कुल, तो काफी यहाँ पर देखिए कानूनी प्रावधान भी हैं, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा धोखाधड़ी भी हो रही है तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सहयोग के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। बिल्कुल, GI टैगिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है हमारे संगठनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, एक क्षेत्र की एक नई पहचान बनाने के लिए। तो अंतिम सवाल मैं तीनों से ही एक बार लेना चाहूंगी, उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, किसानों की आय को दोगुना करने में ये GI टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगी?
4: देखिए दीदी, ये बहुत ही अच्छे बात आपने उठाई, क्योंकि भारत सरकार विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार इस बात को

0: इंगित करते हैं कि हमें किसानों की आय को बढ़ाना है
1: जी,
0: उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी उत्पाद वो करें वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो
1: जी,
0: और अगर वो GI टैग है तो निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी होगी
1: जी।
0: लेकिन किसी भी GI उत्पाद का जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके मन में, उनके दिमाग में उस GI उत्पाद के बारे में सही बात बैठना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: और इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा जो ट्रेसिबिलिटी सिस्टम है
1: जी,
0: वो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। किसी भी उत्पाद का अगर हम हमारे कंज्यूमर तक
1: जी,
0: उसको ट्रेसिबिलिटी से बता पाए कि देखिए ये उत्पाद है, ये यहाँ से चला, यहाँ पैदा हुआ
1: जी,
0: और उसके बाद यहाँ गया और उसका यहाँ प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पैकिंग हुई और यहाँ जाके वो कंज्यूमर के तक पहुंचा, अगर हम ये निश्चिंतता अगर हम अपने कंज्यूमर को दे पाए तो निश्चित रूप से
1: वो खरीदेगा ही और लाभ हमारे
0: और लाभ
1: सीधा हमारे किसानों को मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे भी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, किसानों की आय को दोगुना करने में GI टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगा।
2: मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन है अगर हम इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे
1: जी,
2: उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना की जाए
1: जी,
2: क्योंकि GI प्रोडक्ट्स जो हैं हिंदुस्तान की इमेज है वर्ल्ड में, अगर हम क्वांटिटी के पीछे भागेंगे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बदनाम हमारे देश का ही होता है। इसलिए दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो है GI प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई नहीं होती क्योंकि उनका रीजन लिमिटेड होता है,
1: पर क्वालिटी यहाँ पर बहुत क्वालिटी मायने रखती है।
2: गुणवत्ता
1: अगर अच्छी है आपके उत्पाद की तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अच्छा दाम मिलेगा ही मिलेगा, और GI टैगिंग हो गई है तो ये सोने पे सुहागा साबित हो जाता है। डॉक्टर बजाज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका।
3: सबसे पहले आपको उदाहरण दे दें, जैसे एक बलिया गेहूं की बात की गई जो घरेलू बाजार में बिकता है, प्रीमियम पे बिकता है, हमने एक्सपोर्ट किया और वो भी प्रीमियम पे किया, क्यों? क्योंकि वो GI टैग था, और जब प्रीमियम में बिका तो उसका लाभ जो है नीचे तक भी गया, सबको मिला, जो उसके उत्पादन कर रहे थे उनको भी उसका लाभ मिला। तो एक इसी तरह उदाहरण है, GI टैग होने पर उसका बेचना आसान है, हमें प्रीमियम मिलता है और एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं जो एक चीज उगा रहा हूँ ये विशेष है, ये दुनिया के और किसी कोने में ऐसी चीज उगती नहीं है या बनती नहीं है, ये हम ही हैं इसके निर्माता या इसको उगाते हैं, तो एक संतुष्टि भी मिलती है। आने वाली जनरेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारी जनरेशन ने हमें दी है और हम आगे आपको जनरेशन को देने जा रहे हैं। प्रीमियम मिलता है, आय में वृद्धि तो अवश्य होती है, इसीलिए इसका हम बड़ा प्रमोशन करने की बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो GI टैगिंग देखिए कुल मिलाकर काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, आय में वृद्धि, एक विशेष पहचान, और अगर हम क्वालिटी पर ध्यान देते हैं तो और भी ज्यादा हमारे लिए सोने पे सुहागा साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए GI टैगिंग की ओर आप अपने कदम जरूर बढ़ा सकते हैं, हमारी सरकार की ओर से भी यहां पर आपको पूर्ण सहयोग देने के लिए सभी तैयार बैठे हैं।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
5: आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।
6: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूरी परिचर्चा, कितनी बड़ी परिचर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से, खेतीबाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से हमने सुनी है और जाने हैं कि किस तरीके से GI टैगिंग की जाती है और किस तरीके फसलों में GI टैगिंग की जाती है, कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें GI टैगिंग, और किस तरीके से कानून क्या कहता है, सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रस्तुत की है। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और इसका लाभ जरूर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से हम GI टैगिंग से लाभ ले सकते हैं, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ये सारी बातें हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं वो छोटी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचे जो उनके लिए बेहद ज़रूरी है। तो यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी साथ साथ में KBK में जाकर वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का, आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। जिंदगी के रंग गीतों के संग के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ हैं, वो एक लेखक हैं। उनका नाम है नवीन चौधरी साहब। बाकी की बातचीत हम नवीन जी से ही करेंगे। नवीन जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में।
1: बहुत धन्यवाद, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके शो में आकर।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। सबसे पहला एक मासूम सा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि आप कहाँ रहते हैं, उस जगह के बारे में कुछ रोचक बताइए।
1: मैं आजकल, ये कठिन सवाल हो गया है मेरे लिए, और ये सवाल वाकई मेरे लिए कठिन है क्योंकि मैं यायावरी जीवन जी रहा हूँ। तो मेरे जितने मित्र मुझसे पूछते हैं वो पूछते हैं आज आप कहाँ हैं।
0: क्या बात।
1: अगर मैं ब्रॉडर, हाँ अगर मैं ब्रॉडर देखूँ तो मेरा महीने में लगभग 4 ठिकाने होते हैं
0: जी,
1: जिसमें एक ठिकाना नोएडा है, जिस जो उत्तर दिल्ली के एकदम बगल में है, उत्तर प्रदेश की एक ऐसा शहर है जो इंडस्ट्रियल शहर है। लेकिन साथ ही साथ इस शहर के बारे में एक बड़ी मजेदार बात यह है कि कहा जाता है यहाँ जो भी मुख्यमंत्री आता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। हालांकि यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जो है उन्होंने इस धारणा को तोड़ा है, लेकिन इससे पहले तक ऐसा रहा कि जो जो मुख्यमंत्री नोएडा आया वो यहाँ से दोबारा उसके बाद जाने के बाद जीत नहीं पाया अगले चुनाव में।
0: क्या बात।
1: दूसरा जो मेरा ठिकाना है वो जयपुर है, और जयपुर सब जानते हैं गुलाबी शहर है, एक रॉयल सिटी है। मधुबनी मेरा बर्थ प्लेस है, तो मैं अक्सर मधुबनी भी 2-3 महीने में एक बार रहता हूँ। और मधुबनी अपनी पेंटिंग के लिए बड़ा फेमस है, प्लस साथ ही उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो जो राजा जनक थे, ये हमारा क्षेत्र मिथिला है, हालांकि वो स्टेट बिहार है लेकिन क्षेत्र मिथिला कहलाता है। और जो राजा जनक थे, राजा जनक का वो क्षेत्र हुआ करता था। तो सीता मधुबनी के पास ही एक सीतामढ़ी नाम की का जगह है, वहां पर वो मिली थी। और राजा जनक का जो महल है वो नेपाल में पड़ता है, जनकपुर में, तो वो हमारे गांव से 80 किलोमीटर है। तो वो क्षेत्र भी अपने आप में बड़ा हिस्टोरिकली जो है रिच है, कल्चर के हिसाब से बड़ा रिच है। तो मैं जहां भी रहा हूँ वहां कुछ अच्छी अच्छी चीजें हुई है।
0: बेहतरीन, बहुत बहुत खूब अनिल जी, बहुत बहुत खूब नवीन जी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जाहिर सी बात है किसी एक लेखक के विचार जानकर तो वैसे भी करीब करीब पूरी जानकारी हासिल हो जाती है। वो एक अकबर बीरबल की किस्सा सुना था मैंने कि अकबर ने बीरबल से कहा कि साहब लोग जाके पता लगा के आओ, ये चरवाहा बकरियां लेके जा रहा है। तो बीरबल ने आके बताया, साहब 20 काली हैं, 20 सफ़ेद हैं, उसमें से 10 मादा हैं और 30 फीमेल्स हैं, और वो इस गाँव से आ रहा है, उस गाँव पर जा रहा है और आपके राज्य से गुजर रहा है, तो उसने चालान नहीं दिया है, तो सर उसके ऊपर लगान ठोक दिया है मैंने। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही बार में पूरी जानकारी। बहुत खूबसूरत नवीन जी। मैंने कहा ना, लेखकों से बात करने का मजा ही यही और है, क्योंकि उनको अल्फाज से और शब्दों से और यू नो वाक्यों से खेलना आता है। क्या बात है, बेहतरीन। तो नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्तों के लिए कोई प्यारा सा गीत सुनवाइए।
1: बात चूंकि रहने की हुई थी तो, और चूंकि यायावरी जीवन जी रहा हूं आजकल मैं, तो एक नदिया के पार फिल्म का गाना है, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ये गाना मुझे बड़ा पसंद है। तो ये अगर आप सुनाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा।
0: बहुत खूब नवीन जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका इस बहुत प्यारे से गीत के लिए। दोस्तों आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत नवीन जी की फरमाइश पर।

0: बहुत ही प्यारा गीत। नवीन जी आगे बढ़ें और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बचपन में, छुटपने में आप क्या बनना चाहते थे?
1: बचपन में फिल्मों का बड़ा असर था, तो मुझे हमेशा लगा कि पुलिस वाला बनना या फौजी बनना जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और पुलिस बनेंगे तो बंदूक होगी, जिसको भी अब देखेंगे वहां गुंडा देखेंगे, गोली मार देंगे। तो ये बचपन में था, और थोड़ा बड़े होकर लगा डॉक्टर बनते हैं। फिर 11वीं तक आते थे समझ में आया कि यार बायोलॉजी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो डॉक्टर। और फिर एक दिन समझ में आया कि नहीं, मैं मैनेजमेंट साइड में शायद ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर मैंने अपनी दिशा बदल ली। लेकिन शुरुआत जो है मेरी वो पुलिस वाला बनने की इच्छा से हुई थी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैं तो ये सवाल पूछने का दरअसल उद्देश्य नवीन जी ये रहता है कि हमारे बचपन में, हमारे दिल में हम किसी को एक आइडियल बनाते हैं, उसको अपना आदर्श बनाते हैं, उसको देखते हैं। जैसे आपने कहा कि आप क्या, हम सभी फिल्मों से बहुत प्रभावित रहते हैं, फिल्में हमारी जिंदगी का आईना होती हैं, और हम उसमें से किसी एक किरदार को चुनते हैं कि हम ऐसा बनना चाहते हैं। जैसे कि आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का विचार बनाया। मेरा मानना लेकिन यह है कि डेस्टिनी, भविष्य या हमारी जो किस्मत है, हमें कुछ बनाती है जिसमें हम बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। मैं मानूंगा कि आप आज की डेट में पुलिस में ही हैं, बस फर्क इतना है कि आपके हाथ में कलम है,
1: कलम
0: है। आप कलम के पुलिस हैं।
1: नजर मेरी भी समाज पे है, और मैं उसको कलम के माध्यम से दिखा रहा हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो अगला कौन सा गीत सुनवा रहे हैं नवीन जी?
1: पुलिस वाले की बात है तो अमिताभ बच्चन का एक गाना था, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं कौन।
0: वाह,
1: डॉन फिल्म का।
0: जी हाँ जी हाँ, मैं हूं डॉन। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन चॉइस। बड़ा ही एप्रोप्रिएटली मौके पे चौके वाली बात करी नवीन जी आपने, शानदार। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बहुत प्यारा। नवीन जी, अगला सवाल, अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में बताइए।
1: बचपन हम सबका ही बहुत मजेदार रहा है। हम सब ने कुछ ना कुछ तो किया, लेकिन एक घटना मुझे याद है
0: जी।
1: मेरी उम्र उस समय होगी 4-4.5 साल और मुझे मीठे का बहुत शौक था
0: जी।
1: तो मीठे में मतलब कोई मेहमान घर आए और टॉफी चॉकलेट लेके ना आए तो बड़ा बुरा लगता था कि यार कैसे मेहमान है, क्यों आए हैं घर पे। और जब बहुत मीठा खाता था तो कुछ ना मिले तो चीनी ही खा लो। अच्छा, मेरी बहन जो है वो 1.5 साल की थी और उसको मूंगफली बड़ा पसंद आता था तो मूंगफली को दबाए तो कट की आवाज आती तो वो मूंगफली को कटकट कहा करती थी।
0: अच्छा।
1: एक दिन हुआ ये कि पापा राशन लेके आए और राशन सारा रखा गया, तभी कोई मेहमान आ गए तो पापा मम्मी वहां व्यस्त। मैंने देखा कि यार यहाँ पर जो है वो चीनी रखी हुई खूब सारी, तो थोड़ा सा वो ऊपर था तो मैंने मेरी बहन को बुलाया और वो आई, एक छोटा सा डब्बा उसने रखा, डब्बा पकड़ा, वो इतनी समझदार उसमें थी, डब्बा पकड़ा, मैं डब्बे पे चढ़ के चीनी नीचे उतार ली मैंने वहां से और उसके बाद मैं चीनी खा रहा हूं, मैंने उसको मूंगफली दे दी, वो अपना मूंगफली धीरे धीरे चबा रही है और मैं 1.5 किलो चीनी खा गया।
0: ओह माय गॉड।
1: उसके बाद जो मेरा पेट खराब हुआ, मैं 3 दिन अस्पताल में रहा और संभवतः 8-9 साल तक उसके बाद मैंने मीठा नहीं खाया। फिर मेरी बुआ ने धीरे धीरे जो है वो मुझे दूध में थोड़ी सी चीनी डाल के देना शुरू किया तो दोबारा मेरा मीठा खाना जो है वो 12-13 साल की उम्र में आने के बाद शुरू हुआ, वरना चीनी का ऐसा वो असर हो गया था कि जो चीज मुझे बहुत पसंद थी वो 8-9 साल छूट गई थी पूरी तरह से।
0: ओ माय गॉड। बहुत ही प्यारी सी याद आपने बताई नवीन जी। जाहिर सी बात है इसमें उस छोटे से बच्चे का कोई दोष भी नहीं था, क्योंकि दरअसल उसे मीठा पसंद था और उसे जाहिर सी बात है भोलेपन में उसे ये भी पता नहीं था कि किस तरीके का मीठा और कितना मीठा किसी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो सकता है। तो बहुत क्यूट, बहुत ही प्यारी। तो अगला कौन सा गीत सुनवाएंगे आप हमारे दोस्तों को?
1: इस ये कहानी जो है मेरी बचपन की, मेरी बहन के बिना तो हो नहीं सकती पूरी।
0: जी।
1: तो इस कहानी के हिसाब से जो गाना मुझे लगता है अभी बेस्ट हो सकता है वो फूलों का तारों का सपना कहना है। ये देवानंद ने नहीं गाया था, मतलब देवानंद पर फिल्माया गया था और इसके लाइन थे, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000ों में मेरी बहना है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। आइए दोस्तों सुनते हैं इस प्यार से गीत को।

0: बहुत प्यारा गीत। नवीन जी आगे बढ़ते हैं। आपका सबसे पसंदीदा खाना यानी कि भोजन में कौन सी डिश है जो आपकी सबसे पसंदीदा है? अब चीनी को छोड़ दीजिएगा।
1: नहीं, अब तो उम्र भी ऐसी आने लगी है कि डॉक्टर कहते हैं चीनी छोड़ दो।
0: छोड़ ही दो तो अच्छा है।
1: तो चीनी मजबूरी में भी अब छोड़नी पड़ रही है। और खाना मतलब मैं सभी तरह खाना पसंद है, लेकिन अगर हमेशा कहा जाए कि कभी भी डाउट है तो मैं दाल चावल और आलू का चोखा,
0: वाह,
1: ये मेरा सबसे पसंदीदा है। अरहर की दाल हो, उसमें थोड़ा सा छौंक लग जाए, चावल तो अपना साधारण चावल है, और आलू का जो चोखा है वो हर राज्य में अलग अलग तरीके से बनता है, लेकिन मुझे जो पसंद है आलू के चोखे के अंदर अगर कच्चा सरसों का तेल थोड़ा सा डाल दिया जाए,
0: वो बिहार वाला,
1: प्याज का बिहार वाला, और हरी मिर्च उसके अंदर डाल दी जाए, उसके बाद जो उसका वो खुशबू के साथ जो उसका टेस्ट बनता है वो आनंद आ जाता है। मतलब मैं कई बार ऐसा कर सकता हूँ कि दाल की भी जरूरत नहीं है, आलू का चोखा और चावल ही मैं खा सकता हूँ अगर इस तरह से बना हुआ हो।
0: वाह, मुंह में पानी आ गया साहब, क्या बात है क्या बात है। जाहिर सी बात है, ये आलू का चोखा और उसमें अगर थोड़ा सा कच्चा बैंगन भी हो तो लिट्टी के साथ इसका मजा ही कुछ और हो जाता है फिर। बहुत खूब बहुत खूब। तो अगला कौन सा गीत सुनवा रहे हैं नवीन जी?
1: खाने पे एक, और चूंकि मीठे की भी बात हो रही थी, एक लता मंगेशकर जी का गाया हुआ गाना है हम आपके हैं कौन में, चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियां पहले जैसे मेरे शौक है कहां।
0: अरे वाह, क्या बात है क्या बात है, बेहतरीन। आइए दोस्तों, प्यारा सा गीत है ये, नवीन जी की फरमाइश पर, नवीन जी के हुक्म पर सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया। हाँ नवीन जी, अगला सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है देखिए, लेकिन आप लेखक हैं, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत प्यारा सा जवाब ही आएगा। ऐसा कौन सा गीत है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से सूट करता है, आपके चरित्र को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, ऐसा कौन सा गीत है?
1: इस गीत गीत कई सारे इसमें हो सकते हैं। जैसे हम बचपन की बात कर रहे थे ना कि बचपन में हम क्या बनना चाहते थे, तो जब वो टीनेज आया था ना, तो टीनेज में एक सैफ अली खान का गाना था कि जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले बोले तो उसमें आता था मजा कि ये गाना है। और ये गाने जो है चेंज होते रहे, कभी मैं हूं डॉन भी हुआ, और लेकिन जब करियर बनना शुरू हुआ, करियर में हम आगे बढ़ने शुरू हुए, शुरुआती दौर में बहुत से युवाओं को भी कंफ्यूजन होता है हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैं एक प्रोफेसर की फैमिली से आता था, तो शिक्षा जगत में हो, सरकारी नौकरी में हो, ये है, और वहां से एमबीए करने का निर्णय लेना, क्योंकि हमारे पूरे सर्कल में कोई ऐसा नहीं था जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हो, तो वो उस दिशा में जाना, घर से विरोध करके कि मैं यही करूंगा, उसको करना, और फिर उसके बाद करियर में आपके चैलेंजेस आते हैं, हम सबके चैलेंजेस आते हैं। तो एक चीज जो मैंने देखी कि आप कभी भी अगर रुकेंगे तो फिर आप रुक जाएंगे। अगर आपके कोई ऑब्स्टिकल आया है और उस ऑब्स्टिकल को अगर आपने ब्रेक करके अगर आप आगे नहीं बढ़े हैं तो आप रुक ही जाएंगे। तो एक विनोद खन्ना पे फिल्माया हुआ गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, तो ये मेरा जो है पसंदीदा गाना है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है मैं इस गाने को सुनता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा अब तक का जो करियर रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे राइटिंग का हो, उसके ऊपर ये गाना ज्यादा फिट बैठता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, जैसी कि मुझे उम्मीद थी, बिल्कुल ठीक उसी तरह आपने इस प्यारे से गीत को बताया जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके पूरे व्यक्तित्व को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है। मुझे पूरा विश्वास है इस डिस्क्रिप्शन के बाद अब जब हमारे सुनने वाले, हमारे ऑडियंस इस गीत को सुनेंगे तो आपकी पिक्चर बहुत ही प्यारे ढंग से बना पाएंगे अपने जहन में। आइए दोस्तों सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा गीत।

0: बहुत बढ़िया नवीन जी, आगे बढ़ें तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अपने किसी सबसे अच्छे मित्र दोस्त के गुणों के बारे में हमें बताइए।
1: देखिए, दोस्त और गुण दोनों साथ में नहीं आते। कहा जाता है कि जब गुण मिलते हैं तो शादी होती है और अवगुण मिलते हैं तो दोस्ती होती है।
0: क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन, क्या कहा है साहब।
1: तो दोस्तों के अवगुण बहुत रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मैं कहूंगा जयंत मेरा स्कूल का दोस्त है। 11वीं में वो मेरा दोस्त बना, मतलब बचपन से, फर्स्ट से नहीं था, 11वीं में वो मेरा दोस्त बना। और जयंत के साथ कई कमियां जहां रही, वहीं उसकी सबसे जो बड़ी खूबसूरती थी, जिसको मैं आज तक उसको मैंने अपने उसमें लिया है कि वो जब आपके साथ है तो वो आपके साथ है।
0: क्या बात,
1: वो अपने दोस्त के लिए उसको छोड़ के नहीं जाएगा, उसके लिए चाहे उसका कुछ भी हो जाए वो पीठ नहीं मोड़ेगा, चाहे उससे बाकी वो काम हो सके ना हो सके वो आपके साथ खड़ा रहेगा। और ये चीज मेरे अंदर उसके साथ आई, मुझे जब भी ऐसा मौका लगा कि किसी से मेरी आत्मीयता बढ़ी हो तो मैं अगर कुछ नहीं भी कर सकता उसके लिए तो मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। कई बार दोस्त का सिर्फ साथ खड़े रहना जो है वो आपकी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये जो है उसकी ऐसी क्वालिटी थी जिसको मैंने अपने अंदर आत्मसात कर लिया।
0: नवीन भाई, आप बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं, सौभाग्यशाली हैं कि जयंत जैसे मित्र आपके साथ हैं। और जयंत भाई, आप भी उतने ही सौभाग्यशाली हैं जिनके पास नवीन चौधरी साहब जैसे मित्र हो। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और इस बात को मैं बहुत गहराई से याद रखूंगा, मैंने इस बारे में कभी गौर किया नहीं कि गुण मिलते हैं तो शादी हो जाती है और अवगुण मिलते हैं तो दोस्ती। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, मजा आ गया साहब सुन के इस बात को। तो दोस्ती पर ही कोई प्यारा सा गीत सुनवा दीजिए हमारे सुनने वालों को।
1: जय वीरू का था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। आइए दोस्तों, दोस्ती के ऊपर एक लेजेंड गीत जो हमारे भारतीय संगीत में शायद सबसे ऊपर गिना जा सकता है, इसी गीत को सुनते हैं नवीन जी के हुक्म पर।

0: आगे बढ़ते हैं नवीन जी, क्या आपका कोई निक नेम है, कोई छदम नाम है, क्या वो है क्या, और उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, उसका मतलब क्या है?
1: नहीं, मेरे घर से तो मेरा नाम नवीन ही रखा गया, नवीन ही बुलाया गया, लेकिन दोस्तों ने नाम दिए और दो नाम मेरे साथ चिपके रहे। पहला नाम जो है वो स्कूल में चिपका और वो नाम था पंडित।
0: जी
1: तो पंडित मुझे कहा गया क्योंकि संस्कृत में मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा आते थे और हर यूनिट टेस्ट में मार्क्स आए, फाइनल सेमीफाइनल मेरे ही मार्क्स सबसे हाईएस्ट होते थे, तो संस्कृत की वजह से मुझे पंडित कहा जाने लगा। तो स्कूल के दोस्त मुझे आज भी पंडित बुलाते हैं। दूसरा जो नाम मुझे मिला वो मुझे मिला MBA में आकर, और वो नाम था चाचा। चाचा कहने के पीछे कहानी ये हुई कि जब हम लोगों का MBA शुरू हुआ तो उसमें सीनियर्स रैगिंग लेते हैं, हालांकि मेरे सीनियर कहते थे कि हम रैगिंग नहीं ले रहे, ये PDP है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उन्होंने उसकी परिभाषा डिफाइन की, कहते कि देखो रैगिंग में क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज वाले मारपीट करते हैं, बदमाशी भी कर लेते हैं, यहाँ हम में से कोई हाथ नहीं लगाता, हम सिर्फ प्रेशर डालते हैं और तुम्हें उस प्रेशर से सर्वाइव करना है। तो उसको वो PDP कहा करते थे। तो मेरा विरोध था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में छात्र नेता था, तो मैं जब आया MBA करने तो मेरा वो विरोध था। तो पहले दिन हमें आदेश मिला कि हम लोगों को बाल जो है कटवाने हैं जीरो मशीन से। मैंने कहा यार उस तरह चलवा लो। तो हम चार पांच लोगों ने उस तरह चलवा लिया, क्योंकि उस तरह चलवाने से ये था कि उसके बाद कॉलेज का सडनली ध्यान जाता है उसके ऊपर। और वो हुआ, उसी दिन हॉस्टल वार्डन का ध्यान उसके ऊपर चला गया। तो खैर बाद में PDP फिर भी हमारी हुई दो तीन दिन रुकने के बाद। लेकिन उस एक घटना की वजह से उन्होंने कहा कि यार चौधरी सरनेम था, तो उन्होंने कहा कि चाचा चौधरी है यार, इसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। ये किसी ने उससे मैं नहीं सोचा था कि हम क्या करेंगे, और उसने पहले दिन ये सोचा कि ये सीनियर्स को छकाते हैं हम लोग। तो वहां से वो चाचा चौधरी वाला एक नाम आया।
0: क्या बात है, बेहतरीन, मजा आ गया साहब सुन के, चाचा चौधरी की कहानी और पंडित जी की कहानी, वाह क्या बात है। दोस्तों आपने सुना, नवीन जी को पंडित जी भी कहा जाता है और चाचा चौधरी भी। तो पंडित जी कोई गीत सुनवा दीजिए हमारे दोस्तों को।
1: इस गीत के साथ एक किस्सा और जुड़ा हुआ है। तो MBA में क्या हुआ कि अब वही युवा उम्र, तो सबको एक प्यार सबको हो जाता था, लड़की नहीं मिलती थी।
0: आहा
1: तो यही दौर था, तो चाचा के लिए चाची की खोज हुई। और जो चाची थी, चूंकि हमें रैगिंग के अंदर, रैगिंग नहीं, सीनियर पूरा मान जाएंगे, PDP में हमें कहा गया जब तक एक महीने PDP होगी हम बैच की लड़कियों से बात नहीं करेंगे। तो जो हमें पसंद आती थी हम उसको सिर्फ दूर से देखा करते थे। और उसको दूर से देखने पे मुझे एक गाना याद आता है जो किशोर कुमार ने गाया है, और सामने किशोर कुमार नहीं दिखते, सुनील दत्त दिखते हैं, और गाना था मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
0: क्या बात,
1: तो मेरे सामने वाली बेंच पे बैठा करती थी।
0: ओहो
1: जी, तो ये गीत हम सकते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। पड़ोसन फिल्म का किशोर कुमार, सुनील दत्त, सायरा बानो और महमूद के ऊपर फिल्म आया।

0: बेहतरीन। तो नवीन जी, अगर आपको भारत के अलावा किसी और देश में रहने को मिले तो कहां रहेंगे आप, कहां रहना पसंद करेंगे?
1: मैं ये बताने से पहले एक छोटा सा किस्सा समीर जी सुनाना चाहूंगा।
0: जी जरूर।
1: नौकरी के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ा। मेरी जो आखिरी नौकरी थी वो ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्री प्रेस के साथ थी, तो ऑक्सफोर्ड में बहुत रेगुलर जाता था
0: जी।
1: तो लंदन जाना, फिर वहां से ऑक्सफोर्ड जाना, तो वहां पर एक कल्चर है। पहली बार क्या हुआ, जब मैं पहली बार लंदन पहुंचा तो मैं दो दिन पहले पहुंच गया, मैं लंदन घूमना चाहता था। मैं रोड क्रॉस करने को था कि गाड़ी आती दिखी, मैं रुक गया, लेकिन गाड़ी रुक गई
0: जी।
1: तब तक देखा पीछे से गाड़ी और रुक गई, तीन गाड़ियां रुक गई, सब गाड़ियां रुकी हुई थी। मैंने देखा आसपास में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन सब रुकी हुई थी, तो मैं क्रॉस कर गया
0: जी।
1: मेरे क्रॉस करने के बाद वो गाड़ियां मूव की, तो मुझे समझ में आया अच्छा एक पेडेस्ट्रियन को पहले वो निकलने देते हैं, इसलिए गाड़ियां रुकी हुई थी। उसके बाद मैंने ऑक्सफोर्ड में नोटिस किया कि वहां पर लोग जो है करीब गाड़ियों के बीच में 2 फीट का गैप छोड़ के खड़े होते हैं, ताकि कोई इमरजेंसी के सिचुएशन हो तो गाड़ी उसमें से निकल सके और वो लोग गाड़ियां आगे पीछे कर सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा कल्चर मुझे लगा। तो मैं जब वापस आया इंडिया तो मुझे लगा कि हम अपने देश को गाड़ी देते हैं, लेकिन सिचुएशन को सुधारेगा कौन, हम ही सुधारेंगे
0: जी।
1: तो फिर मैंने जो है यही करना शुरू किया कि अपना ऑफिस में सुबह 8 बजे ऑफिस चला जाया करता था, ताकि कम ट्रैफिक हो, तो आधे घंटे में ऑफिस पहुंचता था। मैंने गाड़ी में ऐसे ही गैप दे देके खड़ा होना शुरू किया रेड लाइट पे
0: जी।
1: पर हुआ ये कि मैंने गाड़ी पे गैप दिया, जो गैप दिया उसके बीच में एक बाइक वाला और एक ई रिक्शा घुस गया। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, एक कार घुस गई, और somehow जितनी मेरी तमीज थी उसने मेरा जो सुबह का टाइम 8 से 8:30 बजे का होता था वो 50-55 मिनट मुझे लगने लगे ऑफिस पहुंचने में
0: जी। जी,
1: 7 दिन के बाद मुझे लगा कि भैया ऐसी तैसी ऑक्सफोर्ड की अपन रहती है और हम जो है गाड़ी ऐसे ही चलाएंगे। तब मैं फिर वही बंपर टू बंपर जो दिल्ली नोएडा का ट्रैफिक होता है उसी तरह से गाड़ी चलाने लगा। सारी दुनिया घूमने के बाद मुझे एक बात समझ में आई है कि सबसे प्यारा देश तो मेरा अपना ही है, चाहे इसकी खूबियां हैं चाहे इसकी कमियां हैं, सारी चीजों के बीच मेरे अपने लोग यहीं पर हैं। यहाँ का क्लाइमेट हो, यहाँ के लोग हो, हमें कुछ चीजों पे गुस्सा आता है, लेकिन बहुत सारी चीजों में प्यार जो होता है वो भी यहीं पर। तो मैं अपने देश को छोड़कर और कहीं नहीं रहना चाहूंगा, मेरा पसंदीदा देश भारत ही रहेगा
0: जी। बहुत खूब, बहुत खूब नवीन जी। तो अगला गीत कौन सा सुनवा रहे हैं आप हमारे दोस्तों को इस बात पे?
1: मनोज कुमार जी पर फिल्माया हुआ एक गाना

0: हाँ भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं।
1: जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, क्या बात है। ये गीत तो नवीन जी ऐसा है कि जब सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत खूब। आइए दोस्तों सुनते हैं इस प्यारे से गीत को महेंद्र कपूर साहब की आवाज में, मनोज कुमार के ऊपर फिल्माया गया।

0: नवीन जी आगे बढ़ते हैं और ये सवाल इस प्रोग्राम का मैं मानता हूं सबसे कठिन सवाल है, लेकिन फिर वही आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल होगा। अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: ये एक्चुअली कठिन है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि उसको कहा जाए कि ये मार्केटिंग हेड थे और ये लेखक हैं। ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। मुझे लगता है जब आप किसी आदमी से मिलते हैं, और जो सवाल आपने पहले पूछा था कि क्या आप किसी दोस्त के गुणों को आत्मसात करते हैं,
0: जी,
1: मुझे लगता है कि मुझसे जो भी मिले या आप किसी को भी कहें कि आप नवीन से मिलिए, तो आप उसको ये कहें कि यार आप उनसे मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी होगी और आप पॉजिटिव वाइब्स लेके जाएंगे। तो वो खुश मिजाज होना, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना, मैं चाहता हूं मुझसे जो भी मिले वो मिलने के बाद वो खुश होकर जाए, वो मुस्कुराता हुआ जब मेरे घर से निकले तो वो मुस्कुराता हुआ निकले और कुछ पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके जाए। तो मैं एक मुस्कुराता हुआ आदमी, खुश मिजाज और सकारात्मक आदमी, बस इसकी चाहूंगा। उसके अलावा सब सेकेंडरी है कि इन्होंने क्या नौकरी की, किस कंपनी में थे, किताब लिखी है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सब सेकेंडरी बातें हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, आपने तो दिल छू लिया साहब। आज आपसे मुलाकात कराकर जिंदगी ने हम पर एक और एहसान कर दिया। वाह, मजा आ गया साहब आपकी बात सुनकर। जिस तरीके से आपने इस बात को बहुत ही आराम से, बहुत ही साधारण और सीधे सीधे शब्दों में कहा कि डिजिग्नेशंस या आप क्या काम करते हैं वो सेकेंडरी है, आपसे मिलने के बाद कोई व्यक्ति महसूस कैसा करता है वो जरूरी है। बहुत खूब, तो एक प्यारा सा गीत सुनवाइए हमारे दोस्तों को।
1: गाना पूरी तरह से सिचुएशन पे फिट नहीं होता है, लेकिन कई बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं, दोबारा मिले ना मिले, तो मुझे लगता है कि बड़ी खुशी से मिलो। तो एक गीत था, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूब। साधना और मनोज कुमार के ऊपर फिल्माया गया ये गीत जो लता मंगेशकर ने गाया। फिल्म का नाम था वो कौन थी। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत नवीन जी के हुक्म पर।

0: नवीन जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लोगों के व्यवहार में कभी कुछ ऐसा होता है? हमारे चारों तरफ लोग बाग चलते रहते हैं, कभी आप ड्राइव कर रहे हैं आपके ऑफिस में, आपके किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, कहीं बाजार में, लोगों का कुछ व्यवहार ऐसा होता ही है जो आपको बहुत गुस्सा दिला देता हो, ऐसा कुछ व्यवहार आप बताना चाहेंगे?
1: अधिकतर चीजों को मैंने गुस्से को कम करना सीखा है, तो गुस्सा तो बहुत चीजों पे आता था, लेकिन अधिकतर चीजों को मैं इस तरीके से देखता हूं कि ये शायद कोई किसी कारण से करता हूं, पर गुस्सा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता। मुझे सड़क पे एक सिचुएशन में हमेशा गुस्सा आया है, और मुझे लगता है कि मैं चाहे ऑक्सफोर्ड का वो 2 फीट गैप का ना रखूं, बंपर टू बंपर ही चलाऊं, लेकिन अगर आपको दाएं मुड़ना है तो प्लीज गाड़ी को एकदम बाईं साइड में मत रखिए यार। आप पत्ती पे जो है गाड़ी को बाएं से घुमाते हैं और आप पूरे ट्रैफिक को रोक के परेशान सबको करते हैं। तो अगर आपको मुड़ना है तो आप पहले ही धीरे धीरे अपनी गाड़ी को दाईं तरफ कर दीजिए, अगर बाएं मुड़ना है बाएं कर दीजिए, और इंडिकेटर, आपने इतने पैसे खर्च किए गाड़ी पे, इंडिकेटर आपको मिला है उसी पैसे के अंदर मिला है, उसमें बिजली का बिल भी नहीं आता। अगर आप इंडिकेटर जलाएंगे तो बिजली का बिल नहीं आएगा सर, प्लीज यार इंडिकेटर जला लिया करो अगर मुड़ना है तो। मुझे ये 2-3 चीजें ही हैं वो लोगों को, एक बार मैंने एक बदमाशी की थी एक आदमी के साथ और बहुत नाराज गुस्सा हो गए थे, ये रॉन्ग साइड से आ रहे थे
0: जी,
1: और इसलिए आ रहे थे रॉन्ग साइड से क्योंकि आगे अगर उनको सही साइड में जाना है तो 100 मीटर आगे जाके मुड़ना पड़ता था। रोज का किस्सा था, सिर्फ 100 मीटर के लिए। तो मैंने उनकी गाड़ी रोक ली, बोले क्या हुआ? मैंने उनको 10 रुपए दिए, बोले क्या है? मैंने कहा इससे ज्यादा पेट्रोल आपका खर्च नहीं होगा। और बहुत भड़क गए कि तुम क्या समझते हो। मैंने कहा यार मैं निकलता हूँ यहाँ से, लड़ना नहीं। तो मुझे ज्यादातर गुस्सा सड़क पे इन 2-3 सिचुएशन को लेके ही आता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने फरमाया इस बात को। मेरा भी उद्देश्य यही था कि लोगों के दिलों में हम झांकें, और दिलों में झांकने के साथ साथ ही लोग खुद भी महसूस करना शुरू करें कि कहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो उनको जब रियलाइज होगा कि मे बी हम इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं ये सोच करके बिजली खर्च हो जाएगी, और हॉर्न नहीं दे रहे हैं ये सोच करके, साहब हॉर्न तो हमने खरीदा है, गाड़ी फ्री मिली है और हॉर्न को बजाएंगे तो पेट्रोल ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ये चीजें जाहिर सी बात है नागरिक शास्त्र में आती हैं, एक सिविलियन कल्चर होना चाहिए टू रेस्पेक्ट ईच अदर, जिसकी वजह से हम सुरक्षित रहने की तो बात ही नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ एक दूसरे की नजर में इज्जतदार बने रहें, एक दूसरे को घूरते हुए आपस में एनिमोसिटी और दुश्मनी के भाव ना रखें। तो आइए दोस्तों, नवीन जी से गुजारिश करते हैं कि कोई प्यारा सा गीत हमें बताएं।
1: मुझे जब गुस्सा आता है तो ऐसे समय में कुछ गाना सुनना निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा वो होता है, स्ट्रेस बस्टर होता है। और एक एक्टर है जिनको मैं, गाना कोई भी गाए पर उन एक्टर के ऊपर अगर फिल्माया गया है तो मजा आ जाता है, और वो एक्टर है शमी कपूर।
0: वाओ,
1: उनका जो मस्त मौला व्यवहार होता है, और उसमें एक गाना उनका मुझे बड़ा पसंद है, शायद कश्मीर की कड़ी फिल्म का था, उसमें दीवाना हुआ बादल
0: जी,
1: तो जिस मस्त मौला अंदाज में वो करते हैं, मुस्कुराते हैं, जब भी मुझे बहुत गुस्सा आता है मैं वो गाना यूट्यूब पे, चाहे अगर है पेन ड्राइव में तो उसको चला के, और उसके बाद मैं उसी में मस्त हो जाता हूँ कि हाँ ये बढ़िया गाना है, इसको चला लिया जाए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। आइए दोस्तों सुनते हैं यही प्यारा सा गीत।

0: नवीन जी, अब हम अपने प्रोग्राम के उस मुकाम पर आ गए हैं, उस पादान पर आ गए हैं, जहां पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश दीजिए।
1: दो ही बातें हैं। एक, इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। जब भी ऐसे संकट में फंसे, और ये मुझे लगता है कि हम सब ने महसूस किया होगा, सिर्फ कभी कभी कोई कहता है तो याद दिलाते हैं, तो आपको ये बात पता है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। जब इस संकट में फंसे तो क्विक रिएक्शन ना देखे, एक गहरी सांस लें, थोड़ा स्टेप बैक करें, सोचें, और आपको समाधान जरूर मिलेगा। तो खुश रहेंगे, खुश रहते हुए समस्या का समाधान करेंगे तो जरूर होगा। और दूसरा, मैं चाहूंगा कि किताबें पढ़ें और बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि हमारी जो दुनिया है, हम लोग अपने जिंदगी में 5 से 10 हजार लोगों से मिलते हैं पूरी जिंदगी में, और उसमें भी 100-200 का दायरा होता है जो कि हमारी पूरी जिंदगी में ज्यादा नजदीक होता है, हम पे असर डालता है। तो हमारा एक्सपोजर जो है वो उतना ही रह जाता है, हमारी सोच जो है हमारे आसपास के लोगों जैसी ही हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच बड़ी हो, आप ज्यादा चीजों को समझें, तो ये जो किताबें हैं, ये किताबें आपको दुनिया का बहुत अलग वर्णन करती हैं, तरह तरह के लोगों से आपको मिलवाती हैं जिनसे शायद आप जिंदगी में न मिलें, या मिलें तो उनके विचारों को न समझ पाए, और ये किताबें आपको उस दुनिया को समझने में मदद करती है। तो किताबें जरूर पढ़ें। तो मैं शॉर्ट में कहूं, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और किताबें पढ़िए।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। दोस्तों, आपने सुना नवीन जी का संदेश हमारे लिए क्या है। आपका बहुत बहुत आभार नवीन जी, जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपसे बातचीत बहुत इंटेलिजेंट लेवल पर हुई, बड़ी मजेदार थी, फनी थी और समझने वाली थी। ऐसा भी नहीं था कि उसमें कहीं जरा सा भी एक एलिमेंट रहा हो हल्केपन का। अगर समझे तो बहुत गहरी बातें। दोस्तों, गौर करिएगा, नवीन चौधरी साहब की बातों को कभी दिमाग में घुमाइएगा तो पता चलेगा कि हमें अपने कॉलर में झांकते रहना चाहिए। क्या बात है नवीन जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: धन्यवाद समीर जी, और आपके सभी लिसनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त।
2: स्वर्ग से धरती खिल रही जैसे मेरा मन भी तो।
0: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

नकारात्मकता। दोस्तों याद रखें कि जिंदगी हमेशा उस तरह नहीं चलती जिस तरह से हम चाहते हैं। ऐसे में चीजों को लेकर शिकायत करने के बजाय हमेशा चीजों के प्रति पॉजिटिव रवैया ही रखें। सफल लोगों को जब भी कभी जिंदगी में नेगेटिविटी घेरती है तब वो उससे अपनी पॉजिटिव सोच के जरिए बाहर निकल आते हैं। आपको भी चाहिए कि जिंदगी में हमेशा शिकायत करने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढें, उनसे निपटें और बस आगे बढ़ें। निगेटिविटी से लड़कर ही आप सफल हो सकते हैं। बने रहिए आरजे समीर के साथ। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगें, तो दोस्तों समझ लेना जीना आ गया है।

0: सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है।
1: मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे?

में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं।

0: झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
1: है समय प्रतिकूल माना, पर समय अनुकूल भी है।

शाख पर एक फूल भी है। घन तिमिर में एक दिए की टिमटिमाहट भी बहुत है। एक सूने द्वार पर बेजान आहट भी बहुत है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आज समीर के पास।
1: सोनू ने पूछा, किस बात से परेशान हो? मोनू ने कहा, यार घर वालों से बहुत परेशान हूँ। सोनू ने कहा, अब घर वालों ने क्या कर दिया? मोनू ने कहा, जिस दिन सोचता हूँ कि कुछ नया करूंगा, उसी दिन गेहूं पिसवाने भेज देते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

दुख लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, जो पहले पानी की भाषा में आदमी की आंखों से आता है और फिर हाथों की धरोहर बन जाता है।

जो कुछ पुराना है मोहक तो लगता है, टूटने का दर्द मगर सहना ही पड़ता है। बहुत कुछ टूटता है तब नया बनता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, नहीं, नई ड्रेस पहनकर तुम्हारी बारात में जा रहा हूँ।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

बस यही दो मसले जिंदगी भर न हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ऑपरेशन के बाद मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या अब मैं बिल्कुल रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, अरे बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थी तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थी। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानों जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आ

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना। लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकारा हैं हेलन। जी हाँ, हेलन जो बहुत प्रसिद्ध डांसर रही, एक्ट्रेस रही हमारी हिंदी फिल्मों की। हेलन का असली नाम है हेलन एन रिचर्डसन खान। जी हाँ, हेलन दरअसल एक क्रिश्चियन हैं। आइए उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हो गई, तभी उनकी फैमिली भारत में शिफ्ट हो गई। यहीं पर हेलन का करियर बॉलीवुड फिल्मों में शुरू हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

बड़ी ही मजेदार बात है कि एज एक्ट्रेस हेलन और उनके लिए गाना गाने वाली हमारी प्रसिद्ध गीत गायिका आशा भोसले जी की बेहद गहरी दोस्ती थी। आशा भोसले जी ने हेलन के करीब करीब सारे गाने गाए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन ने सलीम खान जी से शादी की, जिसकी वजह से वो सलमान खान जी की फैमिली से जुड़ी। यूं देखा जाए तो सलमान खान उनके सौतेले बेटे हैं, बट दोनों के बीच बेहद प्यार है। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन को सबसे पहला बढ़िया ब्रेक हावड़ा ब्रिज नाम की मूवी में मिला, जिनका बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मेरा नाम चिंग चिंग चू। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: मैंने जब दरवाजा खोला ना भैया, तो उसकी आंखों में आंसू थे, सांसों में तेजी थी, दिल में बेबसी थी। परली ने पहले बताया ही नहीं कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ जो शायर हैं वो हैं वहीद हैरान। बाकी की बातचीत हम वहीद साहब से ही करेंगे। वहीद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: धन्यवाद सर, शुक्रिया बहुत बहुत।
0: हैरान साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना परिचय दें हमारे सुनने वालों को।
1: सर, मैं कव्वाली सिंगर भी हूँ और शायरी भी करता हूँ, मतलब सिंगिंग और सिंगर और पोएट दोनों मालिक ने मुझे ये उससे नवाजा है, खूबियां दी है।
0: बहुत बढ़िया। तो हैरा साहब, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल हमें सुनाएं।
1: ठीक है सर, मैं गजल का एक मतला और दो तीन शेर सुनाता हूँ आपको।
0: इरशाद।

0: क्या पता खून का रिश्ता देखूं, फर्ज देखूं, या बता खून का रिश्ता देखूं। और आखिरी शेर देखे हैं आपके,
1: जी

0: हैरा साहब, आपका जन्म स्थान क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं आप?
1: सर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अमरावती जिला में अचलपुर एक छोटा सा शहर है सर, और मेरा मेरा जन्म वही हुआ है 30 जनवरी 1973 को सर,
0: जी
1: अचलपुर से हूँ। मेरा जो जन्म स्थान है अचलपुर है।
0: जी बहुत खूब। और अभी आप कहाँ रहते हैं साहब?
1: अभी सर मैं तकरीबन 25 सालों से नागपुर ही में हूँ।
0: जी
1: मेरे बच्चों का एजुकेशन वगैरह सब यही हुआ, सब उनकी तालीम यही हुई है नागपुर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हैरा साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
1: जी सर, मैं गजल के और एक मतलब को शेर आप करके
0: इरशाद।
1: भूल हूँ खुद को संग कर लूं क्या। या संग जो है सर, संग से मुराद पत्थर होता है
0: जी
1: जी। भूल हूँ खुद

0: से जंग कर लूं क्या। और ये भी
1: बाप
0: शेर बड़ा खूबसूरत शेर है सर के, हर नजर से तुम्हें बचाने को, हर नजर से तुम्हें

0: சுரங்கு ஆகிரி ஷேர் தேக்கே சார்
1: இர்ஷாத்.
0: ஆஜ உன்கோ பஹுத்

0: बहुत सुंदर, बेहद खूबसूरत गजल, बेहद खूबसूरत।
1: बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हारा साहब आपकी इस खूबसूरत गजल के लिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंदीदा गायक या गायिका की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
1: हाँ सर, एक अपने सलमा आगा हमारे निका फिल्म से उन्होंने अपना हिंदुस्तान आई, उन्होंने अपना काम शुरू किया, वो मेरी पसंदीदा फनकारा वो भी है सर।
0: जी जी
1: उनका एक वो नगमा है कि सांस भी लू तो मेरे लबों पर नाम तेरा ही आता है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आइए दोस्तों, हैरा साहब के हुक्म पर सलमा आगा जी की गाई हुई ये प्यारी सी गजल सुनते हैं।

0: भाई बहुत सुंदर है ना साहब। है ना साहब, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आपसे अगली गजल की गुजारिश करूं।
1: जी सर जी,
0: कि गजल गायकों में सबसे पसंदीदा गजल गायक कौन है आपके?
1: सर मैंने पहले सर जगजीत सिंह का नाम लिया, लेकिन और बैरूनी ममालिक जैसे कि पाकिस्तान से गुलाम अली साहब हैं,
0: जी जी
1: वो उनकी गजलें मुझे अच्छी लगती हैं, वो भी अच्छे सिंगर है, तो मैं उनको भी पसंद करता हूँ उनकी गायकी।
0: बेहतरीन बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट गजल सिंगर गुलाम अली साहब, बहुत बढ़िया। तो है ना साहब, आपसे गुजारिश है कि अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
1: जी सर, एक गजल का मतलब देखें आप।
0: इरशाद।

کافی ہے عمر بھر رلانے کو. قسمت میں جو لکھا تھا وہی ہو کے رہ گیا,

वो जानकर भी आज मुझे जानते नहीं, अपनी निगाह में मुझे गर्दानते नहीं। पैवंद जब से लग गए मेरे लिबास में एहसान मंद।

0: हैना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बहुत ही प्यारी नज्मों का, बहुत ही प्यारी गजलों के लिए जो आप हमें सुना रहे हैं। सुन के बहुत मजा आ रहा है। आपसे गुजारिश करूंगा कि अगली गजल हमें सुनाएं।
1: जी जी, मेरी बहुत मशहूर गजल है और बहुत लोगों ने पसंद भी किया इसको। मैं वो आपको उसके दो तीन सुनिएगा
0: जी। इरशाद।

से जिन के वास्ते ये दुश्मनी

0: में है जिसकी लगी हुई। और ये गजल का आखिरी शेर भी देखे सर, बहुत खूबसूरत शेर है।
1: इरशाद इरशाद।
0: मैं भी हूँ बेकरार उधर।

0: कहीं मस्जिद जली हुई, मंदिर गिरा हुआ कहीं, मस्जिद जली हुई।
1: बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन गजल। बहुत बहुत शुक्रिया आरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो इतनी खूबसूरत गजल आपने हमें सुनाई, बहुत बहुत
0: बहुत
1: शुक्रिया।
0: धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर।
1: तो अब अपनी पसंद की किसी गजल गायक या गजल गायिका की कोई गजल बताएं जो हम सुनवा सकें।
0: सर मेरे पसंद के एक और फनकार हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, मोहतरम पंकज उदास साहब। उनकी एक नज्म है जो फिल्मी नज्म है, चिट्ठी आई है,
1: वाह,
0: मुझे बहुत पसंद है।
1: बहुत ही प्यारी नज्म है साहब। कोई वक्त था जब इस नज्म ने हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त धूम मचाई थी।
0: पूरी दुनिया में सर, जहां जहां हिंदू जानने वाले, उनमें धूम मचाई थी इस
1: जी
0: नज्म
1: जी जी जी जी आइए दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारी सी नज्म को। सभी की पसंद

0: तो हैरा साहब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
1: सर मेरा एक बहुत ही अच्छा और राष्ट्रीय गीत है जो किताब में भी छप चुका है
0: जी।
1: अगर आप अनुमति दें, आप इजाजत दें तो मैं वो गीत सुना दूं आपको।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल इरशाद, बेहतरीन, बहुत अच्छा रहेगा।
1: बहुत शुक्रिया।

0: ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कुर्बान जानो तन।
1: बेहतरीन।
0: ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कुर्बान जानो तन। पहला बंद देखे।
1: जी
0: जब तेरी सरहद पे डाले गा कोई दुश्मन नजर,

0: वतन
1: क्या बात है,
0: वतन मेरे वतन तुझ पे कुर्बान जानो तन।

0: वतन मेरे वतन, तुझ पे कुर्बान जानो तन,
1: बहुत
0: मुल्क
1: खूबसूरत।
0: की खात। बहुत शुक्रिया सर। मुल्क की खातिर जिए और मुल्क

वतन मेरे वतन, तुझ पे कुर्बान जानो तन। है वतन मेरे वतन, तुझ पे कुर्बान जानो तन। और ये आखिरी शेर

0: देखिए सर,
1: इरशाद सर, इरशाद।
0: मुश्किलों से हमको आजादी की ये नेमत मिली,

0: नूतन।
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गीत साहब, मजा आ गया।
0: शुक्रिया सर, बहुत इनायत, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: हैरा साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि अपने पसंद के गजल गायक या गायिका की कोई बेहतरीन सी गजल सुनवाइए।
0: सर, देश के जितने भी सिंगर हैं मैं सबका एहतराम करता हूँ, मोहम्मद रफी साहब, श्री मुकेश दा, किशोर दा और जितने भी फनलता भाई और आशा भोसले जी, ये सब अच्छे सिंगर हैं, नायाब हीरे हैं हमारे मुल्क के। लेकिन मुझे एक गाना सर महेंद्र कपूर साहब का बड़ा पसंद है, वो आपको सुना दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
1: जी,
0: तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा ना करे।
1: बेहतरीन, बहुत ही प्यारा गीत। आइए दोस्तों सुनते हैं महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: हैरा साहब, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही चुनी हुई पसंद आपने हमें बताई। मैं गुजारिश करूंगा कि एक गजल और सुना दे, बस मन नहीं भर रहा, एक गजल और सुना दीजिए।
1: अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये मैं एक गजल है मेरी, जो लोगों ने काफी पसंद किया है इसको, मेरी रिकॉर्ड भी गजल है ये सर
0: जी।
1: समाज फरमाइएगा
0: इरशाद
1: जी।

0: आपका ये खत मिला परदेश में।
1: हैरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी गजलें हमने सुनी, आपके तरन्नुम को हमने सुना, आपके म्यूजिक कॉम्पोजिशन को हमने सुना। मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि श्रोताओं को, ऑडियंस को आपके कलाम सुनकर और आपके तरन्नुम सुन के बहुत बहुत लुत्फाया होगा। बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर बैठे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कब बारिश हो, और बारिश होने के बाद वो किसान साथी हमारे अगली फसल की तैयारी करेंगे। लेकिन साथियों, हमारे किसान साथियों को बता देना चाहते हैं, इससे पहले कुछ हमें अपनी जानकारी जुटाना चाहिए कि हमें कौन बीज अगली फसल में हमें बोना है। साथ साथ में हमें मेड़बंदान पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है। ऐसे में समतलीकरण अपनी जमीन को कर लेना चाहिए, अपनी खेती को कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक पानी उस खेत में नहीं रुकेगा तब तक नमी नहीं बनेगी और साथ साथ में पैदावार भी आपकी कम होगी। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जिस पथरीला ये चूंकि इलाका है, यहाँ पर पानी कितने सारे देते हैं तब पानी रुकता ही नहीं उसमें, तो कैसे अपने जो ढलान वाले खेत हैं, उबड़ खाबड़ वाले खेत हैं, उसको किस तरीके से उपजाऊ हम बना सकते हैं, समतलीकरण कर सकते हैं, चारों ओर मेड़बंदान कर सकते हैं, ये अभी खाली समय में हमारे किसान साथी काम कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो विशेष तौर पर उनको ध्यान देने वाली हैं। और यदि आपको लगता है कि हमें अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी जो झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं या फिर KBK बना हुआ है, वहां पर जाकर वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि हम कौन से बीज की तैयारी अभी इसे कर लें, उपचार के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम खेती को एक आधुनिक पद्धति से अपनी खेती को करना चाहिए, कैसे वैज्ञानिक ढंग से हमें खेती करना चाहिए जिससे हमारी लागत कम लगे और उत्पादन हमारा अच्छा हो। तो हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों बताते रहते हैं और हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे फसल जो रहती है उस पर जो हम जो उत्पादन करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के जो फसल हम उत्पादन करके हम जो बेचते हैं, उसमें किस तरीके से GI टैग लगाया जाता है, इस पर विस्तार से आज जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। कौन सा कानून है, कैसे लगता है और इससे हमारे किसान साथियों को किस तरीके से लाभ हो सकता है, सारी जानकारी इस चर्चा में हम आप सुनेंगे। तो देर नहीं करते हैं, आपको सीधा इस चर्चा में ले चलते हैं और उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से GI टैगिंग हमारे भारत में की जाती है, कौन कौन से फसलों पर GI टैगिंग की जाती है और कैसे इसके GI टैगिंग का हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं। तो आइए इस चर्चा को सुनते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपनो रेडियो आपनी बातें।
2: GI टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक में वहाँ की स्थानीय खूबियाँ मौजूद होती हैं। दरअसल GI टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं। भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। GI टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्था ना करे। देश में इसके लिए बाकायदा कानून है। ये कानून आश्वासन धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं। और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशेषता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। GI टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ GI टैग का सफर करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं जिन्हें GI टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहा चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जरदालू, मगही पान और शाही लीची को GI टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को GI टैग मिला हुआ है। GI टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।
3: तो अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी GI टैगिंग यानी कि भौगोलिक पहचान के बारे में थोड़ा बहुत तो जान लिया। तो फिर आइए इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर बजाज से यहाँ पर। GI टैगिंग की जब हम बात करते हैं, भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, तो ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में आप सबसे पहले जानकारी दें।
4: बहुत अच्छा सवाल पूछा आदिति आपने कि सबसे पहले GI यानी भौगोलिक पहचान की बात करते हैं। और शुरू में आपने कहा ही था कि असम की चाय और बनारस की साड़ियां, ये सब चीजें इतनी मशहूर होती हैं, जब भी कोई जाता है तो वो सोचता है कि इसको मैं जरूर खरीदूंगा, या अगर खाने पीने की चीज है तो इसका जरूर खाकर या उसका टेस्ट करके पता करूंगा कि ऐसा खास क्या है उसमें, और वाकई खास होता है। तो GI एक प्रोडक्ट, ये जो एक टैगिंग है, ये उरुग्वे राउंड के बाद जब ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था तब आर्टिकल 22 और 24 के तहत तब ये कहा गया कि भाई हर भौगोलिक क्षेत्र की एक विशेष पहचान है, उस उत्पाद से जुड़ी हुई उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसकी खास विशेषता जुड़ी हुई है, तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी हमें उस पहचान को जो है वो बनाए रखना है कि हाँ ये जो उत्पाद है ये इस क्षेत्र का है और विशेष है, इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो ये एक WTO के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हुआ। अब उदाहरण जैसे आपने दिए, हमारे यहाँ अभी 415 के करीब GI टैग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारा मलियाबादी आम है, केसर आम है, बैंगन पल्ली आम है, अल्फेंसो आम है, चाय है, और इस तरह आशाही लीची है बिहार की, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 415 के लगभग आज की डेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 140 जो है वो कृषि उत्पाद है।
3: जी, तो 140 कृषि उत्पाद हम कह सकते हैं कि इनकी GI टैगिंग हो चुकी है। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, ये GI टैगिंग करता कौन है, इसके बारे में भी तो हमारे किसानों को पता होना चाहिए।
5: ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री
3: जी,
5: ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की ब्रांच है
3: जी,
5: और वहां पर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अंडर द एक्ट, अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स या बॉडी जो रिकग्नाइज्ड बाय लॉ है वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि हम एप्लीकेशन लेके चले गए और रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर कर देगा, उसके लिए अंडर द एक्ट काफी रिगरस रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी बॉडी GI रजिस्ट्री के सामने जाएगी वो एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, वो नॉन ट्रेडिंग न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए, यानी कि एसोसिएशन है जिसके कुछ मेंबर्स रिकग्नाइज करते हैं उसको और कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। इंस्पेक्शन मैकेनिज्म सर्टिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया, एट्रीब्यूटेबल टू दैट रीजन है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो लुक अलाइक होते हैं लेकिन वो उस रीजन से आते नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन बॉडी जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जरूरी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अब जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो हम पब्लिक राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे हम कोई ट्रेडमार्क या प्राइवेट राइट्स की बात करते हैं, वो प्राइवेट ट्रेडर्स की होती हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो कम्युनिटी को दिए जाते हैं
6: जी।
5: और ये जो बॉडीज होती हैं ये कस्टोडियंस होती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है और अंडर द एक्ट एक टेक्निकल कमिटी है, उसका प्रोविजन है, जो उसको एनालाइज करती है, जो उसको देखती है कि ये जो जीआई प्रोडक्ट है वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है या नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर एप्लीकेशन एडवर्टाइज होती है, 4 महीने का टाइम दिया जाता है।

0: कोई भी एग्रीड पर्सन वहां पर अपोज कर सकता है और उसके बाद फिर अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होती है तो वो रजिस्टर हो जाता है, वो जीआई रजिस्टर हो जाता है। अगर नहीं होगा तो ऑपोजिशन जो है वो चलती है। तो इस तरह से ये जीआई प्रोसेस कंप्लीट होता है
1: जी। तो पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है, इन बातों को जरूर ध्यान में यहाँ पर रखने की जरूरत हो जाती है। तो अब मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, धान हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की बहुत प्रमुख फसल है और उसकी बासमती की हम बात करें तो पहचान है, हमारे देश से बहुत ही अच्छे स्तर पर निर्यात भी होता है। तो ऐसे में बासमती के लिहाज से जीआई टैगिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अगर हमारे किसान और इसकी ओर बढ़ना चाहे तो?
2: देखिए अदिति, धान जैसा आपने भी कहा और पूरे विश्व में ये जानकारी है कि धान भारत के लिए विशेष तौर पर बासमती धान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके लिए हमारे किसान जो हैं वो विशेष तौर पर इसके इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन चूंकि धान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो उसकी उपज से लेकर और उसके निर्यात तक उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होते हैं। अब धान के लिए भारत सरकार ने विशेष प्रयास किए, अपीडा को इसका अधिकार दिया कि वो बासमती को जीआई टैगिंग करे और इसी परिणाम स्वरूप 2016 में हमें बासमती धान, बासमती चावल का जीआई टैग, जो जैसा अभी राजेंद्र जी ने बताया, चेन्नई जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका अधिकार अपीडा को मिला
1: जी।
2: उसके बाद से अब तक पूरे जोर शोर से अपीडा इस प्रयास में कार्यरत है, इस प्रयासरत है कि हम कैसे ये जीआई टैगिंग को हम भारत से निकलकर बाहर, जहां जहां हमारा, हम करीब करीब 170 देशों में बासमती एक्सपोर्ट करते हैं,
1: बिल्कुल,
2: और उन सभी देशों में जाएं और अपने इस जीआई टैग को वहां भी रजिस्टर करें
1: जी,
2: जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा उस बात का फायदा मिले, उसका लाभ मिले, क्योंकि जितना हम निर्यात करेंगे उतना ही हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल। तो जीआई टैगिंग के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का बदलाव आपने एक्सपोर्ट में देखा है, निर्यात में किस तरह का बदलाव आया है जब से जीआई टैगिंग हुई है?
2: देखिए, जीआई टैगिंग से एक बहुत बड़ा लाभ जो उस उत्पादक, उत्पाद का जो मालिक है उसको मिलता है जीआई टैग का। जैसे कि अभी बजाज साहब ने भी बताया, जीआई टैग अपने आप में एक विशेष उत्पाद है, तभी उसको जीआई टैग मिलेगा। और जब उत्पाद विशेष है तो स्वाभाविक है उसका मूल्य भी विशेष मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कारण है कि बासमती के उत्पाद से हम बहुत लाभ, पूरा देश और हमारे देश के पूरे किसान इस बात का लाभ उठाते हैं और पूरे संसार में हम लोगों को बासमती खिलाते हैं। इसके लिए श्रेय हमारे किसानों को जाता है।
1: बिल्कुल, इसका पूरा श्रेय जो है हमारे किसानों को जाता है और हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भी रहा है और हमारे किसानों का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सहयोग है। बढ़ना चाहेंगे आगे डॉक्टर बजाज, आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे। आपने बताया कि 140 के करीब कृषि उत्पाद है जिनको जीआई टैगिंग मिल चुकी है, लेकिन अगर हमारे किसान या फिर कहें कि और संगठन वगैरह अलग अलग उपज की जीआई टैगिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कहां आवेदन करना होगा, क्या प्रक्रिया रहती है उसकी?
3: बहुत से ऐसे उत्पाद हैं, जैसे अभी कहा कि केवल 140 ऐसे उत्पाद हैं जो कि अभी जीआई रजिस्टर हुए हैं और हमारे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जो उत्पाद हैं जो कि विशेषता रखते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं भारत की अतुल्य, भारत की अमूल्य निधि ये कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र विशेष की प्रतिष्ठा लिए हुए हैं, तो उनको रजिस्टर कराने के लिए जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे बासमती चावल है वो हर उस किसान का हकदार है जो बासमती उगाता है, तो इसीलिए जो उत्पाद है उसको एक कोई एजेंसी जो है, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या गैर सरकारी संस्था हो, जो कि सच में हकदार है उसका कस्टोडियन बनने की, उसको लेकर वो रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। और उसका फिर पूरा प्रोसेस है रजिस्टर कराने के लिए, जैसा भी राजेंद्र जी ने बताया था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। और उसके बाद कस्टोडियन बनना भी आसान नहीं है। मैं अगर एक उसका जीआई का कस्टोडियन बन गया तो उसकी पहरेदारी भी करनी है मेरे को, जैसे हम बासमती की पहरेदारी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं दुनिया में कोई जो है वो बासमती ना कहलाए, हम कहते हैं जैसे ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन होता है ना कि मेरे ट्रेडमार्क को कोई दूसरा ना इस्तेमाल कर ले, इसी तरह जब एक जीआई रजिस्टर हो जाता है तो उसका एक पहरेदारी भी करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, भाई दूसरे को तुम नाजायज हम उसका बगैर हमारी मर्जी के हम उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि ये एक विशेष अधिकार है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जिसका वो उत्पाद है उसको हम प्रीमियम मिलता है, दूसरे उत्पाद में उसको पता होता है कि ये जो भी खरीद रहा है उसको मालूम है कि ये एक विशेष चीज है जो मैं खरीद रहा हूं, और इससे मुझे जो है एक अच्छा जो है वो और कहीं नहीं मिलता दुनिया के कोने में, एक यहीं पर ये चीज मिलती है और उसका एक प्रीमियम भी उनको दिया जाता है। तो इसीलिए इसका जो है वो रजिस्टर एक संस्था कर सकती है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी हो, और फिर उसका कस्टोडियन भी बनना पड़ता है।
1: बिल्कुल, तो आपने कहा कि एक संस्था यहां पर जीआई टैगिंग के लिए आवेदन आगे बढ़ा सकती है, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या फायदा लाता है ये जीआई टैगिंग, किस तरह से फायदेमंद साबित होता है? राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, हमारे किसानों के लिए जीआई टैगिंग कितना फायदेमंद है?
0: मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी का प्रोटेक्शन 1986 से फॉर्मल ढंग से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट है ये 2003 में आया, 15 सितंबर 2003 में। उससे पहले भी इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन रही, और दार्जिलिंग टी जो है एक सर्टिफिकेशन मार्क है। तो 2018 में वर्ल्ड बैंक और एफएओ ने एक स्टडी स्पॉन्सर की थी, जिसमें 6 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वर्ल्ड वाइड से सिलेक्ट किए गए थे, उसमें दार्जिलिंग टी भी थी। और उस स्टडी का फोकस था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन से क्या फायदा होता है। तो उसमें दार्जिलिंग टी के बारे में ये बताया गया कि जब से दार्जिलिंग टी की प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई है तो उसका बेनिफिट जो वहां पे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि दार्जिलिंग टी सिर्फ 87 टी गार्डन्स में ही प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि सारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करता है, सिर्फ 87 लीव किया है। तो इसलिए जब कभी भी मार्केट में कश्मीर
2: निकले हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ बासमती, वो सारे के सारे मानक उसमें पूरे हों। यदि वो मानक पूरे नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए कल को हमने कोई बासमती के नाम पर हमने चावल भेज दिया यूके में, और वहां लोगों ने देखा, या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बड़े समझदार हैं, कंज्यूमर को अगर कल को पता लगेगा नहीं ये तो बासमती जैसा नहीं है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब वो कोई भी उत्पाद, वो बासमती हो या कोई अन्य जीआई टैग उत्पाद हो, जब वो उसका उत्पादन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करें
1: जी।
2: और यदि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, उसके एक्सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं आती है। और किसानों के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है, माला माल है।
1: बिल्कुल, तो मानक के अनुरूप यहाँ पर उत्पादन करना बहुत जरूरी है, ऐसे में ही उपभोक्ता जो है ज्यादा से ज्यादा उस हम कह सकते हैं उत्पाद का खरीदेंगे या फिर सेवन भी करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे, जीआई टैगिंग हो गई है लेकिन उन मानकों के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इस अवस्था में क्या होगा?
3: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा दी थी, क्योंकि जीआई टैग लेना ही खाली काफी नहीं है। अब उसके बाद जैसे बासमती, तो चलो उदाहरण हम बार बार दे रहे हैं, दार्जिलिंग चाय का भी उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत वॉल्यूम में उसकी उपलब्धता है
1: जी।
3: ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी हमारे पास है तो सही, जीआई टैग भी ले लिया हमने, लेकिन उतना जो है उसकी वॉल्यूम में उपलब्धता नहीं है, और उपलब्धता अब उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक, जो भी उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अब एकजुट हों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इसका जो है एक भौगोलिक पहचान हो गई है उत्पाद की, तो उसके साथ जुड़े, किसान या किसान जो उनके साथ हैं, जो प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, क्योंकि खाली फसलों का ही या उन्हीं का ही जीआई टैग नहीं होता, जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनका भी जीआई टैग होता है, तो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक क्लस्टर अप्रोच में चलें, जिससे कि वो मिलकर एक वॉल्यूम दे सके, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा थोड़े थोड़ी चीज से उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई ऐसे उत्पाद हैं जो महीने में साल में एक महीना होते हैं और उसको बेच दिया और 12 महीने उसको खत्म हो गया, उसको कोई लाभ नहीं है। तो सबको मिलकर क्लस्टर अप्रोच लेके चलना है और एक FPO बनाकर, FPCs बनाकर उसको कोशिश करनी है कि हम लोग वॉल्यूम दें, जिससे कि वॉल्यूम होने से क्या फायदा होगा, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, दूसरा हम वॉल्यूम होने से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए, उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपने घरेलू बाजार में भी हम बेच पाएंगे। उससे जब कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा हमारा बिक्री होगी, तो उसका लाभ जो है वो नीचे तक जाएगा। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं, कॉस्टिंग को ध्यान रखें और अपनी जो एक विशेष पहचान है उसको बनाए रखें। उसके अलावा जो हमारी जो जीआई टैग को अगर इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है उसको भी बचाने की पूरी कोशिश करें। ये एक तरह का ट्रेडमार्क है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज है जिसको मैं या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
1: बिल्कुल, तो इस बात का भी जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बताया कि ऑथेंटिसिटी यहाँ पर हो जाती है जब हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उपभोक्ताओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये सच में कश्मीर का शॉल है, क्या ये सच में लखनऊ का आम है। ऐसे में क्या कह सकते हैं आप हमारे उपभोक्ताओं को कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी यहाँ पर प्रूव हो?
0: जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कश्मीरी कारपेट्स में QR कोडिंग एक वन ऑफ दी मींस चूज किया गया है, जिससे कंज्यूमर अपने आप ही ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं।
1: जी,
0: ये प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे दार्जिलिंग टी है या बासमती राइस है या अल्फोंसो मैंगोज है, उसमें ऑथेंटिसिटी का प्रूफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे एरोमेटिक राइसेस हैं, एरोमेटिक राइसेस एक जैसे ही लगते हैं, और ये समस्या जो है हमारे सामने आई थी 1998 में। एक US की कंपनी राइस टेक, उसने पेटेंट लिया और उस पेटेंट में ये कहा गया कि बासमती राइस जो है कोई नेचर का गिफ्ट नहीं है, इसको कहीं भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक राइस अपने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसे बासमती राइस की होती है, एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन, और उन्होंने कहा कि ये राइस जो है हम US में ही ग्रो करेंगे। तो उस पेटेंट से हिंदुस्तान काफी रैटल्ड हो गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें APIDA और CSIR का बहुत रोल था, उन्होंने वो एप्लीकेशन फाइल की, रेवोकेशन की USPTO के सामने। और ये प्रूव किया कि ये जो प्रोडक्ट है बासमती राइस, ये यहीं प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो नेचर ने दी है और उसको जो है कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इस एफर्ट की वजह से वो पेटेंट जो है रिवोक हो गया, वहां की अथॉरिटी ने, वहां के कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोटेक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन करें कि हम एनफोर्स भी कर सकें। टर्मरिक पाउडर का एग्जांपल आता है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, US कंपनी ने उसको पेटेंट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है रिवोक किया। तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ी हमें, ये प्रूव करना पड़ा कि जो टर्मरिक पाउडर है हमारा, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, और उसको कोई भी जो है उस पर पेटेंट नहीं ले सकता।
1: बिल्कुल, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी प्रूफ यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर जीआई टैगिंग जो करवाते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि मानकों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। अब हम निर्यात की यहाँ पर फिर से एक बार बात कर रहे थे, डॉक्टर बजाज आपके पास आना चाहेंगे। हम APIDA की बात करते हैं, तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष संस्थान माना जाता है। जीआई टैगिंग होने के बाद निर्यात में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे हमारे किसान, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ओर बढ़ सके, इसके लिए हम जानना चाहेंगे।
3: अब अपेडा पूरा निरंतर प्रयासरत है कि जो भी जो जीआई टैग है, जो भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, उनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके और निर्यात बढ़ भी रहा है। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, हम लगभग 3,00,000 करोड़ से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रहा है और लगभग हर साल ये निर्यात जो है वृद्धि की ओर ही जा रहा है। पिछले साल तो हमने करीब 29% की वृद्धि दी इसमें।
1: बिल्कुल, बहुत ही बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं, सकारात्मक बदलाव यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, बताएं क्या कह रहे थे आप।
3: तो भौगोलिक पहचान के जो उत्पाद हैं उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो भौगोलिक पहचान के हमारे उत्पाद हैं, जैसा मैंने कहा अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है ये हमारी, तो इसका लाभ जो है वो जो उसके हकदार हैं उन तक मिलना चाहिए और जो उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि वो भी इसका उपयोग कर सकें। तो एक विशेष अभियान चलाया हम लोगों ने। हम बायर सेलर मीट कर रहे हैं, क्रेता विक्रेता सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहाँ से जो है उत्पादों को ले जाकर उनका विशेष जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, जिससे कि लोगों को बताएं कि ये जो विशेष जो उत्पाद है ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक विशेष क्षेत्र का ही उत्पाद है, हर जगह से नहीं मिल सकता है। तो एक अच्छी एक जो है वो खरीदार को भी अच्छा लगता है उसको खरीदने में और उसका लाभ भी उसको मिलता है। विशेष अभियान चल रहा है, बहुत प्रमोशन हो रहा है और बैकवर्ड लिंकेज जैसे मैंने कहा उस तरफ हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका वॉल्यूम मिले, उत्पादन हो, और बहुत जरूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो बनी रहे, इस तरफ भी ध्यान रखते हैं। और बहुत जरूरी है कि अगर जीआई ले लिया तो उसका प्रोटेक्शन भी रखना है, ये ना हो कि मैं तो जीआई लेके बैठ गया और दूसरा कोई उसी उत्पाद को जो है उसी नाम से बेच रहा है, ये भी नहीं होने देना, इसको भी हम लोग प्रयास रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, बिल्कुल इस ओर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि डॉक्टर बजाज ने बताया है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है हमारे देश को, हमारे देश की एक अलग पहचान बन रही है विश्व स्तर पर। तो ऐसे में हम सभी को इस ओर भी खास ध्यान रखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। हम भी फिलहाल बढ़ते हैं आगे और यहां पर मैं डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो जीआई टैगिंग बहुत सारे उत्पादों की हुई है, लेकिन खास तौर पर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ज्यादा ऐसे उत्पाद देखने को मिलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
2: देखिए, ये निश्चित रूप से आदित्य आपकी बात सही है और हमारे उत्तर भारत के जो किसान हैं उनको भी ये जरूरत है कि वो भी जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, वहाँ छोटे छोटे कई ऐसी उत्पाद हैं जिनको आगे लाके उनको जीआई टैगिंग करा के उनके उत्पादन को

0: महत्व देते हैं और उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचने का एक प्रयास है, तो ये किसान समूह एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकते हैं, जो हमारे किसानों को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर लाके, और जो हमारी इस तरह की जो छोटी छोटी प्रोडक्ट है उनको, जैसे कि बजाज साहब ने कहा कि इसमें जल्दी से अपना ये प्रयास करें किसान लोग, अगर कोई उत्पाद उनके आसपास के एरिया में, उनके जिले में, उनके तहसील में, या कोई जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ 10-12 गांव ही हो जहां पे वो विशेष रूप से वो कोई उत्पाद होता है, वो उत्पाद फल का हो सकता है, वो उत्पाद किसी सब्जी का हो सकता है, वो उत्पाद किसी अन्न का हो सकता है। जैसे अगर आप आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं, एक भालिया गेहूं है, अब वो भावनगर जिले के थोड़े से कुछ एरिया में भालिया गेहूं के नाम से उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा, हाँ बाद में अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है, उसका निर्यात करना है, तो वाकई में हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता को ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन GI करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आसपास हमारे किसान भाई खास तौर पर और जो हमारे किसान समूह है वो ये सुनिश्चित करें अपने आसपास के एरिया में यदि कोई विशेष उत्पाद है तो उसको GI के लिए आगे लेकर आए, ताकि कालांतर में आने वाले समय में वो उसका पूरा लाभ उठा सके।
1: बिल्कुल, तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि भावनगर का एक भालिया गेहूं है, अगर हमारे किसान उस छोटे से क्षेत्र में ही, उस दायरे में ही ना रहकर विश्व स्तर पर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो GI टैगिंग की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, इससे ना केवल आपके क्षेत्र को एक पहचान मिलेगी, पूरे विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी, और साथ ही साथ फायदा पूरे देश को होगा, आपको भी होगा। तो GI टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब हमारे किसानों को ये समझने की जरूरत है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: GI टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपके क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलवा सकती है। इसके लिए अब हम सभी को आगे बढ़ना होगा। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं, आइए उनसे और जान लेते हैं। ऐसे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर बजाज से। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि GI टैगिंग जो है प्रसंस्कृत उत्पादों की भी की जा सकती है। अभी तक किसान अलग अलग उपज की यहाँ पर GI टैगिंग कर रहे थे, लेकिन अगर प्रसंस्कृत उपज यहाँ पर लेकर आते हैं, उत्पाद लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया कोई अलग है या फिर वही प्रक्रिया रहेगी?
3: वही प्रक्रिया
1: जी,
3: जैसे मिठाइयां हैं, कई हमारी विशेष मिठाइयां हैं, उनका GI टैग है। बहुत सी ऐसी मिठाइयां जिनका तो GI टैग हुआ ही नहीं है, और बहुत सी जरूरत है, क्योंकि ऐसी विशेष जगह चीजें हैं जिनका हम लोग अब जानते हैं, हम रोजमर्रा में बात करते हैं कि उस जगह की ये चीज बड़ी मशहूर है, वहां जाके हम लोग जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सी मिठाइयां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, अलग से प्रतिष्ठा है, उनको जो है वो GI टैग की आवश्यकता है। और जब GI टैग हो जाता है तो सबसे पहली तो एक मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि अब ये उत्पाद मेरे ही क्षेत्र का, हमारे ही क्षेत्र का है, और उसको जो है जो भी आएगा हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्पाद है, इसी क्षेत्र विशेष से मिलता है। तो जो भी उपभोक्ता आ रहा है वो उस चीज को खरीदने में उसे भी सेटिस्फेक्शन होगी और हमें बेचने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है वो हम लोग उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं कि ये उत्पाद इस जगह का है, विशेष GI उत्पाद है।
1: जब एक अलग पहचान मिल जाएगी तो उसके दाम भी काफी अच्छे मिलेंगे, तो इससे फायदा ही फायदा हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, उपभोक्ताओं के साथ अगर किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान भी है?
4: बिल्कुल, हमारी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों हैं
1: जी।
4: उसमें जो GI ओनर होता है, जो कस्टोडियन होता है, उसको राइट दिया गया है कि वो कोर्ट में जाके एक इंफ्रिंजमेंट एक्शन फाइल करे और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री

0: एक्शन बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, और इन्फ्रिंजमेंट के भी काफी फॉर्म्स होती हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि जीआई प्रोडक्ट नहीं है वो मार्केट में पास ऑफ कर रहा है एज ए जीआई प्रोडक्ट. तो वो जैसे बनारसी साड़ी का एग्जांपल है
1: जी.
0: बनारसी साड़ी जैसे मेड इन चाइना हिंदुस्तान में बिक रही है, लेकिन बनारसी वो जो है बनारसी साड़ी के जीआई का इन्फ्रिंजमेंट होगा, और उसमें जो है सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और क्रिमिनल रेमेडी भी जो है अंडर द एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है. इसको कॉग्निजिबल ऑफेंस मानी गई है, उसमें जो है पुलिस जो है विदाउट एनी एनेबलिंग पावर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट भी कर सकती है, इसमें ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है. तो हमारा जीआई एक्ट काफी स्ट्रांग है और काफी मॉडर्न है, और उसमें जो प्रोविजंस हैं अगर जीआई ओनर उनको एनफोर्स करे तो हमारे कोर्ट्स जो हैं काफी फोर्थराइट है. इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगा, स्कॉच विस्की एसोसिएशन हिंदुस्तान में 1980 से इंफ्रिंजमेंट एक्शंस फाइल कर रही है, और उन्होंने जो है एक तरह से बॉडी ऑफ केस लॉ बनाई है. अगर हम जीआई लॉ के बारे में हिंदुस्तान में देखते हैं तो SWA स्कॉच विस्की एसोसिएशन ने जो कंट्रीब्यूट किया है केस लॉ वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आज तक बहुत यूजफुल रहा है.
1: जी बिल्कुल. तो काफी यहाँ पर देखिए कानूनी प्रावधान भी हैं, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा धोखाधड़ी भी हो रही है तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सहयोग के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं. बिल्कुल जीआई टैगिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है हमारे संगठनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, एक क्षेत्र की एक नई पहचान बनाने के लिए. तो अंतिम सवाल मैं तीनों से ही एक बार लेना चाहूंगी, उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी. डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, किसानों की आय को दोगुना करने में ये जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगी?
2: देखिए अदिति, ये

0: उत्पाद का जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके मन में उनके दिमाग में उस जीआई उत्पाद के बारे में सही बात बैठना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: और इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा जो ट्रेसिबिलिटी सिस्टम है
1: जी।
0: वो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। किसी भी उत्पाद का अगर हम हमारे कंज्यूमर तक
1: जी।
0: उसको ट्रेसिबिलिटी से बता पाए कि देखिए ये उत्पाद है, ये यहाँ से चला, यहाँ पैदा हुआ और उसके बाद यहाँ गया और उसका यहाँ प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पैकिंग हुई और यहाँ जाके वो कंज्यूमर के तक पहुंचा, अगर हम ये निश्चिंतता अगर हम अपने कंज्यूमर को दे पाए तो निश्चित रूप से
1: वो खरीदेगा ही और लाभ हमारे
0: और
1: लाभ सीधा हमारे किसानों को मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे भी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, किसानों की आय को दोगुना करने में जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगा।
2: मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन है अगर हम इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे
1: जी,
2: उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना की जाए
1: जी,
2: क्योंकि जीआई प्रोडक्ट्स जो हैं हिंदुस्तान की इमेज है वर्ल्ड में। अगर हम क्वांटिटी के पीछे भागेंगे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बदनाम हमारे देश का ही होता है। इसलिए दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है और इसीलिए जो है जीआई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई नहीं होती क्योंकि उनका रीजन लिमिटेड होता है,
1: पर क्वालिटी यहाँ पर बहुत क्वालिटी मायने रखती है।
2: गुणवत्ता
1: अगर अच्छी है आपके उत्पाद की तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अच्छा दाम मिलेगा ही मिलेगा, और जीआई टैगिंग हो गई है तो ये सोने पे सुहागा साबित हो जाता है। डॉक्टर बजाज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका।
3: सबसे पहले आपको उदाहरण दे दें, जैसे एक बलिया गेहूं की बात की गई जो घरेलू बाजार में बिकता है, प्रीमियम पे बिकता है, हमने एक्सपोर्ट किया और वो भी प्रीमियम पे किया, क्यों? क्योंकि वो जीआई टैग था और जब प्रीमियम में बिका तो उसका लाभ जो है नीचे तक भी गया, सबको मिला, जो उसके उत्पादन कर रहे थे उनको भी उसका लाभ मिला। तो एक इसी तरह उदाहरण है, जीआई टैग होने पर उसका बेचना आसान है, हमें प्रीमियम मिलता है और एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं जो एक चीज उगा रहा हूँ ये विशेष है, ये दुनिया के और किसी कोने में ऐसी चीज उगती नहीं है या बनती नहीं है, ये हम ही हैं इसके निर्माता या इसको उगाते हैं, तो एक संतुष्टि भी मिलती है। आने वाली जनरेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारी जनरेशन ने हमें दी है और हम आगे आपको जनरेशन को देने जा रहे हैं। प्रीमियम मिलता है, आय में वृद्धि तो अवश्य होती है, इसीलिए इसका बड़ा प्रमोशन करने की बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो जीआई टैगिंग देखिए कुल मिलाकर काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, आय में वृद्धि, एक विशेष पहचान, और अगर हम क्वालिटी पर ध्यान देते हैं तो और भी ज्यादा हमारे लिए सोने पे सुहागा साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए जीआई टैगिंग की ओर आप अपने कदम जरूर बढ़ा सकते हैं, हमारी सरकार की ओर से भी यहां पर आपको पूर्ण सहयोग देने के लिए सभी तैयार बैठे हैं।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
5: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
6: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूरी परिचर्चा, कितनी बड़ी परिचर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से, खेतीबाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से हमने सुनी है और जाने हैं कि किस तरीके से जीआई टैगिंग की जाती है और किस तरीके फसलों में जीआई टैगिंग की जाती है, कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें जीआई टैगिंग और किस तरीके से कानून क्या कहता है, सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रस्तुत की है। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और इसका लाभ जरूर लेंगे क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से हम जीआई टैगिंग से लाभ ले सकते हैं, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ये सारी बातें हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं वो छोटी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुँचे जो उनके लिए बेहद ज़रूरी है। तो यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी साथ साथ में KBK में जाकर वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का, आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
5: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
5: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
7: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8।

0: 98.1 FM आपलो रेडियो आपली बाते। खेती बाड़ी कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। और श्रोता साथियों, हमारे किसान साथी बहुत अच्छी तरीके से होंगे और हम आशा करते हैं ऐसी धूप में हमारे किसान साथी खास तौर पर इस गर्मी का मजा ले रहे होंगे। लेकिन किसान साथियों, कुछ बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अपना अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा और साथ साथ में कुछ बातें हैं गर्मियों के मौसम में किस तरीके से हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, हम समय समय पर इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में बातचीत करते चले आ रहे हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं किस तरह से प्राकृतिक खेती करके हमारे किसान साथी अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, साथ में लागत को कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और खास तौर पर सरकारें भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं। और हमारे किसान साथी, यदि आपको ज्यादा लगता है कि हमें अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो केबीके झाबुआ में खुला हुआ है, वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में कृषि विज्ञान केंद्र भी खुला हुआ है और कृषि विभाग भी वहां पर उपस्थित है, आत्मा भी वहां पर है। तो सभी विभागों में जाकर संपर्क करना होगा और साथ में हमें जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हम तो बताते ही हैं कि हमारे किसान साथियों की आय को हम किस तरीके से दुगनी कर सके। सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है, और वहां पे अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो रहती हैं उसका भी हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं। लेकिन किसान साथी, सबसे पहले हमारे किसानों से कहना है कि इस मौसम में, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में किसान भाई पहले अपने खेत की गहरी जुताई अवश्य कर लें, क्योंकि गहरी जुताई हमारे किसान साथी कर लेंगे तो हमारे किसान साथी जैसे ही पानी गिरेगा तो अपनी जो जायज की फसल है उसको बोकर अपनी दूसरी फसल भी हमारे किसान साथी ले सकते हैं। और साथ साथ में अपने किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि मिट्टी परीक्षण के साथ साथ हमारे किसान साथी बागवानी भी इस मौसम में कर सकते हैं, और साथ साथ में अपने पेड़ पौधे भी हमारे किसान साथी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं गर्मी के मौसम में। हमारे किसान साथी अपने छोटे छोटे बागवानी लगाकर, किचन गार्डन लगाकर अपने पर्यावरण को भी वो बचा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती करके अपनी आय को बढ़ोतरी कर सकते हैं। और जो प्राकृतिक खेती की अगर साथियों बात करें तो प्राकृतिक खेती से क्या होता है कि लागत कम लगती है इसमें और उत्पादन तो आपको पता ही है कि अच्छा खासा रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत उत्पादन हमारे पिछली फसल से कम हुआ है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारें इसके लिए अधिक प्रयास कर रही है, केवी के इसमें प्रयास कर रही है। उन्नतशील जो बीज रहते हैं उनका भी चयन आपको करना चाहिए, साथ साथ में कम पानी वाली फसलें, क्योंकि झाबुआ की अगर बात करें तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो हमारे किसान साथी किस तरीके से, पथरीला इलाका है, किसान साथी किस तरीके से उस जमीन में कौन सी प्रजाति के अपने बीज लगा सकते हैं, बो सकते हैं, और जिसमें पानी भी कम लगे और लागत भी कम लगे और उत्पादन अच्छा खासा हो। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे किसान साथियों को बेहद जरूरी है। साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम में तीन सिगमेंटों पर हम बात करने जा रहे हैं। पहला होगा कि आपको पता है कि प्राकृतिक खेती क्या है, इसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी भी कुछ बताएंगे। साथ साथ में प्राकृतिक खेती के साथ साथ में पशुधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से देखरेख इस वर्षा वो क्या नाम गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। साथ में एक सफल किसान की कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं, बाहर के स्टेट का सफल किसान हो लेकिन उनकी कहानी को सुनकर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, और उस बदलाव से चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि आय किस तरीके से दुगनी हो रही किसान साथियों की, तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो रहते हैं, जैसे कि हम इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि हमारे जो किसान एक उन्नतशील किसान है जिन्होंने चावल की अच्छी प्रजाति का उत्पादन करके पैकिंग कर उसको बाजार में बेचा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे हमारे किसान साथी कर सकते हैं, क्यों लाभदायक है प्राकृतिक खेती। इससे पहले हम लेते हैं एक छोटे से विराम को, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों बहनों, जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। बता दें, इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि। जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी। तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
2: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो। ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं। कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है। लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है। एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना। इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में मिट्टी के सूख कर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है। एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है। भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है।
3: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है। मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की। राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरी हार्दिक शुभकामना। देश के एक बड़ा भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है। फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, इट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो जाए हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 मिलियन तक बढ़ चुकी होगी, भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगन प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर गोमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है बल्कि भूमि के जैविक संरचनाओं को बचाई जा सकते हैं।
2: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
3: हमारा संस्कृति हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंगधर की लिखी उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृत कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करे और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करे। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
2: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
4: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष अंक का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेष अंक में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो, जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफी मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, इसके लिए ये भूमि ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफी प्रभावशाली रहेगा।
5: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी पूज्य स्वामी काड़ सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मिति हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है। इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र, ऐसे समग्र लोगों, समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेषांक की निर्मिति की गई है।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और आप सुन रहे हैं रेडियो टांडा भील, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: और साथियों, अभी आपने प्राकृतिक खेती के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुना, और इस जानकारी सिर्फ रेडियो टांडा भील 90.8 FM के माध्यम से आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और इसका सहयोग विशेष तौर पर KBK झाबुआ द्वारा किया जा रहा है, साथ साथ में कृषि विभाग द्वारा इसका सहयोग इसमें किया जा रहा है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है पशुधन, और इसमें आज हम जानेंगे कि किस तरीके से पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और खासतौर पर गर्मियों में किस तरीके से देखरेख करना चाहिए, पशुपालन को लेकर क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में आइए सुनते हैं इस प्यारे से रिपोर्ट को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
0: और आपके आरजे वर्षा के साथ में, सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: पशुपालन शुरू से ही किसानों की समृद्धि का प्रतीक रहा है। पहले के समय में जिसके पास जितने ज्यादा पशु वो उतना बड़ा किसान या पशुपालक माना जाता था। हालांकि आज तस्वीर कुछ अलग है। आज समृद्धि का आकलन पशु की नस्ल से होता है। समय के साथ पशुपालन के तौर तरीके बदल रहे हैं। किसान कम पशुधन में भी बेहतर मुनाफा कमाने के तरीके आजमा रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशु के आहार आवास से लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
3: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं, और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजनाएं के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है। तो उसमें ये दिया जाता है कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, SHG से हो या ग्रुप 8 के कंपनीज हो, तो ये सारे चीजें हैं अगर इन कैटेगरीज में होते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे वो खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं या उसके साथ दही या और डेयरी प्रोसेसिंग आइसक्रीम बना सकते हैं।
2: साथ ही इनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं गोबर का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजें बनाने में कर रही हैं, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है।
3: मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गए, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
2: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
0: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
2: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

Yeah.

रेडियो टांटे अभी 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में पशु धन पर चर्चा को सुना और साथ साथ में जाना किस तरीके से इस गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपने पशुपालन का ध्यान कर सकते हैं, यानी पशुओं का ध्यान कर सकते हैं और कितनी महत्वपूर्ण है। खासतौर पर पशु से जो हमें दूध मिलता है, छाछ मिलता है, मट्ठा हम खाते हैं, साथ साथ में जो गोबर से हम लोग खाद बनाते हैं वो हमारे खेती के लिए अमृत होता है। क्योंकि अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो पशु धन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा योगदान पशु धन का रहता है। खासतौर पर देखा जाता है जब हम गर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाते हैं तो उसमें गोबर की खाद का बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो गोबर के खाद से हम अपने खेती में फिर से अब बदलाव कर सकते हैं और फिर से जो हम रासायनिक खेती करते चले आ रहे थे अब उसको बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट जिसमें सफल किसान की कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सुनते हैं।

जी हाँ, इससे पहले हम सुन लेते हैं एक गीत को, क्योंकि देखिए बातचीत हमारी और आपकी यूं ही चलती रहेगी, ये सिलसिला कार्यक्रम का यूं ही चलता रहेगा आपके साथ में, लेकिन कुछ मनोरंजन के साथ में। तो आइए यहाँ पर सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत।

अपना हक नहीं लड़ाई से, अपना हक नहीं लड़ाई लड़वा मैं तो गमे गम थी। मारा भाई मारी दोनों, मारा काका मारी काकियों।

0: एम तरफ मारे थोड़ा
1: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है। हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
2: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग

0: तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना, काजू, मसाले, दालें, सत्तू। भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है, और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है। किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी। अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं, जो खास पहचान बन चुके हैं। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं।
1: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और कहने का मतलब है कि अब हम जाने वाले हैं इस कार्यक्रम से, लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें हैं जो मनीष जी आपके साथ साझा करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने तीन सेगमेंट में कार्यक्रम को सुना है। यानी कि पहले हमने जाना कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए कितनी लाभदायक है और क्यों हमें ये करनी चाहिए, इससे हमारे प्रकृति पर कितना असर पड़ सकता है, ये भी हमने जाना है। दूसरा हमारा सेगमेंट था पशुपालन, क्योंकि हमारे किसानों की रीढ़ की हड्डी पशु होते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस गर्मी के मौसम में हमें अपने पशुओं का ध्यान किस तरीके से हम रख सकते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। अगला यानी कि तीसरा और आखिरी हमारा सेगमेंट था सफल कहानी। श्रोताओं, सफल कहानी कहीं की भी हो, किसी भी जगह की हो, बस जरूरत है उस कहानी को सुनने के बाद कुछ चीजें सीखने की, कि जिस तरह से वो किसान सफल हुआ है, उस तरह से आप अपने क्षेत्र में भी काम करके, मेहनत करके, लगन से खेतीबाड़ी करके एक सफल किसान बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मनीष जी हमारे साथ क्या साझा करने वाले हैं।
2: हम अपने किसान साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत बताने वाले हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी अपने पशुओं का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, और हमारे किसान साथी अभी जो खाली खेत पड़े हुए हैं उसमें ग्रीष्मकालीन जो मूंग रहती है उसका भी हमारे किसान साथी बोनी कर सकते हैं, अच्छा समय है। साथ साथ में अगर बागवानी की बात करें तो विशेष तौर पर सरकारें इसके लिए प्रयास कर रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले की बात की जाए तो झाबुआ जिले में उबड़ खाबड़ जमीन है, साथ साथ में पथरीला इलाका है, पानी रुकता नहीं है, तो ऐसे में क्या करें किसान, क्योंकि किसानों को जागरूक होने की अब आवश्यकता है। कृषि विभाग की ओर से जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन की स्कीम्स हो या पाइप वाली स्कीम्स हो या फिर टपक पद्धति वाली स्कीम्स हो, यानी उनको किस तरीके से एक पौधे में किस तरीके से पानी लगाया जाता है, वो सारी जानकारी या स्कीम्स गवर्नमेंट की जो चलाई जाती है, तो उसके लिए आपको झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जाकर हमारे किसान साथी KVK है, यानी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग भी है, साथ साथ में आत्मा का भी ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर जाकर संपर्क करना चाहिए, और साथ साथ में हमारे किसान भाइयों को अभी से बीजों का चयन करना चाहिए कि कौन सी प्रजाति का बीज हमें अपने खेतों में लगाना है, कैसे लगाना है, कैसी पद्धति होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर तो वहाँ पर चलता नहीं है, तो ऐसे में किसान साथी जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पर ट्रैक्टर चलाया जाता है, और जहाँ पर पथरीला इलाका है वहाँ पर हल से हमारे किसान साथी खेती करते हैं, तो विशेष तौर पर हमारे किसान साथियों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ऐसे में हमारे किसान साथी तालाब का बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन चल रहा है, जगह जगह तालाब गहरीकरण हो रहा है, जहाँ पर तालाब संरक्षण की अगर बात करें, तालाबों को बचाने की अगर बात करें, तो वहाँ पर सरकार प्रयास कर रही है, तालाब गहरीकरण करवाया जा रहा है, खुदवाए जा रहे हैं नए तालाब, चेक डैम बनाए जा रहे हैं पानी को रोकने के लिए, तो ऐसे में किसान साथी जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है वहां पर समतलीकरण करा लें, और साथ साथ में तालाब भी अगर जहां अगर आपके संरक्षित नहीं है वहां पर तालाब की अच्छी व्यवस्था कर लें, जिससे बरसात का जो पानी रहता है वो रुक सके और आपकी जो फसलों में नमी बनी रहती है उस वजह से आपको नमी बनी रहेगी और आपकी उत्पादन हमारे किसान साथियों की अधिक होगी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दी है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथी इस जानकारी का सही इस्तेमाल भी करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हैं लेकिन आपके पास और कमी है जानकारी की, तो आप हमारे रेडियो से संपर्क कर सकते हैं, यानी रेडियो टांडिया भील से आप संपर्क कर सकते हैं।

0: जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर होगा
1: 9425416603। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
0: तो साथियों, अब हमारा यानी के इस कार्यक्रम का समय होता है जाने का, क्योंकि अगले कार्यक्रम में यानी के फिर से हम आपसे मिलेंगे एक नई और जानकारी के साथ। तो ऐसे ही सुनते रहे रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: अपना रेडियो अपनी बात है। तो आपके आरजे मनीष
0: और आपके आरजे वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। दोस्तों, आज के कलाकार का मंच है नए टैलेंट्स के लिए, नए गायकों के लिए, नई गायिकाओं के लिए जो अपनी प्रतिभा का बहुत बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। और आज हमें मौका मिल रहा है उनके गीत सुनने का, उनके संगीत को हमें भी मजे से इंजॉय कर पाए, ये हमें आज मौका मिल रहा है। और आज हमारे साथ जो गायिका है वो है रुबीना दास जी। बाकी रुबीना जी अपने बारे में खुद हमें बताएंगी, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके गीत भी सुनेंगे। रुबीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी धन्यवाद। नमस्कार समीर जी, और आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रुबीना, बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन अभी मैं बैंगलोर में अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती हूँ। और मैं अपने बारे में ये बता सकती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ या होममेकर हूँ, उसके साथ साथ मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ।

0: मैं खुद भी योगा करती हूँ और दूसरों को भी योगा करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ।
1: बहुत
0: ये
1: खूब,
0: मेरी छोटी सी इंस्ट्रक्शन छोटी सी इंट्रोडक्शन है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब रुबीना जी। हम सभी जानते हैं दोस्तों, योगा हमारे देश से ही पैदा हुआ और कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना ज्यादा प्रभावशाली है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है हमारे दोस्तों में से ज्यादातर लोग योगा को प्रैक्टिस करते होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू करना चाहिए, और अब चाहें तो रुबीना जी से संपर्क कर सकते हैं। रुबीना जी हमारे बीच में एक बहुत अच्छे टीचर, एक बहुत अच्छे फ्रेंड और अब हमारी फैमिली मेंबर भी हो गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम को रुबीना जी की ही आवाज में गाए हुए इस बहुत खूबसूरत गीत से।

0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया रूबीनाथ जी, बहुत बढ़िया स्टार्ट। तो आगे बढ़ते हुए आपसे एक इंपॉर्टेंट, एक मजेदार और बहुत सिग्निफिकेंट सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप मुझे अपने जीवन के कुछ 3 महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बता सकती हैं जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो? 3 लोग।
1: 3 लोग
0: जी।
1: ओके, एक सबसे पहले तो मेरे पिताजी हैं, जिनसे बहुत पॉजिटिविटी मुझे आई है, मैं उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। अभी तो वो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। और दूसरे हैं मेरे माताजी, उनको भी मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ।
0: जी।
1: वो भी नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर है। और तीसरे हैं बहुत, जिनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस अभी अभी हुई हूँ, अभी मतलब कुछ दिनों से, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी।
0: क्या बात है,
1: उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ।
0: तो ऐसी क्या बात है प्रधानमंत्री मोदी साहब में जिससे आपको लगा कि ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं?
1: उन पॉजिटिविटी आती है, वो हमारे देश को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत पीछे थे हम। वो पॉजिटिविटी आती है उनको देखने से, उनकी सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये ऐसे लीडर ऐसे ही होने चाहिए।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया बात कही साहब आपने जी।
1: एज अ पर्सन मैं उनको बहुत मान देती हूँ।
0: जी, मैं भी वही कह रहा हूँ मैम कि एज अ पर्सनैलिटी, ऐसे एक व्यक्तित्व, जितना पावरफुल इंसान वो दिखाई देता है, बस उसको देख के मजा आ जाता है। इतनी बड़ी उम्र में भी कितनी पावर उनमें रहती है, कितना काम वो करते हैं,
1: बहुत ऊर्जा
0: रहती है उनके पास। वो तमाम जगहों पर जाकर वो काम करते हैं जो इतनी उम्र पर पहुंचकर, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर आदमी नहीं करना चाहता या नहीं झुकना
1: नहीं
0: चाहता, लेकिन वो बहुत प्यारे ढंग से हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। ये एक बहुत बढ़िया बात है, बहुत खूब कहा आपने।
1: जी। उनसे मुझे योगा के लिए भी इंस्पिरेशन उनसे भी ज्यादा मिली है।
0: क्या बात,
1: इसीलिए मैं ज्यादा उनको पसंद करती हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात कही आपने। तो हमारे देश की पुरानी संस्कृति को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं रूबीना जी की ही आवाज में।

0: बहुत सुंदर। रुबीना जी, आपके जीवन के कुछ सबसे सुखद, बहुत ही प्लेजेंट कुछ पल रहे होंगे, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सुखद पल, जब मेरा पहला बच्चा हुआ था
0: जी,
1: मेरा बेटा जब आया था मेरी गोद में, वो तो सबसे अच्छा सुखद पल होता ही है माँ के लिए।
0: जी जी जी।
1: और जबकि मैं एक बेटी चाहती थी, पहला बच्चा
0: ओके
1: लेकिन भगवान ने ये मुराद भी मेरी पूरी कर दी। तो मेरी सेकेंड चाइल्ड, जब भी मेरी बेटी हुई है, उस टाइम भी मुझे बहुत ही खुशी मिली।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: और दोनों बच्चे मेरे काफी बड़े हो गए हैं, दो में एक माँ के लिए वो बच्चे ही रहेंगे, लेकिन हाँ वो आज बहुत अच्छा ऑनेस्ट हैं अपने जिंदगी में और बहुत आगे भी आ चुके हैं। दोनों ही जॉब करते हैं, बैंगलोर में ही रहते हैं, मेरे पास ही रहते हैं।
0: वेरी नाइस।
1: और एंड दे आर वेरी नाइस एंड बहुत मान रखते हैं पेरेंट्स का, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है।
0: बहुत खूब,
1: दोनों को पाके मैं बहुत खुश हूँ।
0: अमेजिंग, बहुत खूब रुबीना जी। दोस्तों, आपने सुना, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, कहीं पढ़ी थी मैंने, फिर उसको लेकिन मैंने अपनाने की कोशिश की। देखिए, हम लोग सब एक दूसरे से सीख के ही सीखते हैं, कोई ऊपर से ज्ञान हमारे पास नहीं आ जाता। तो हुआ यूं कि एक मित्र ने मेरे से पूछा कि आपकी माँ कहाँ रहती हैं, तो मैंने उनको बताया वहां रहती हैं, जहां भी रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो माँ मतलब आपके पास रहती हैं। मैंने कहा जी नहीं, माँ मेरे पास नहीं रहती हैं, मैं माँ के पास रहता हूं।
1: पास रहता हूँ
0: मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं माँ से दूर जा सकूं या माँ को रख सकूं, मेरी माँ मुझे अभी भी रखती है।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात कहा आपने। और ये बात मेरे दोनों बच्चे भी यही बोलते हैं, हम अपने माँ बाप के पास रहते हैं।
0: क्या बात है, सो क्यूट, सो क्यूट, दैट इज सो ब्यूटिफुल। दोस्तों सुनिए, कितनी प्यारी बात है ये। चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं रवीना जी की आवाज में, जो मैं उनके दोनों बच्चों को डेडिकेट करना चाहूंगा। चलिए सुनते हैं।

0: रुबीना जी, आपके जीवन में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सबक आपने सीखा और आप हमें बताना चाहेंगी कि वो सबक सब लोग सीखें, ऐसा कौन सा सबक होगा?
1: सबक तो जिंदगी तो बहुत सारा सबक हम लोगों को सिखाती है
0: जी।
1: हाँ, जब भी मैं छोटी थी तो मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहती थी। हमेशा मेरे मन में था कि मैं कुछ करूं, लेकिन शादी थोड़ी जल्दी हो गई तो उसके बाद मैं हाउसवाइफ बन के रह गई। फिर बच्चों को बड़ा किया तो, लेकिन मन में था कि मैं कुछ करूं, मेरे अंदर वो वुमेन एम्पावरमेंट का भाव था, लेकिन नहीं कर पाई। जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए, मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं अपने लिए कुछ करना चाहती थी। और योगा, उस टाइम मैं थोड़े लेटर एज में योगा में योगा को सीखी। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखी और मैं उसी में आगे बढ़ती गई। योगा का ट्रेनिंग लिया, इंस्ट्रक्टर बनी और अभी मैं वही चाहती हूँ। सारे लेडीज को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने पैरों के ऊपर खड़े होना सीख लीजिए। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि एक वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। हम कितना भी, हम घर भी संभाल सकते हैं और बाहर भी संभाल सकते हैं। तो ये सबक मैं अपनी जिंदगी से सीखी कि हाँ, हम लेटर एज में भी हम चाहे तो कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, बिल्कुल ठीक कहा रुबीना मैम आपने, ये बहुत बहुत जरूरी बात है। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी किताब अभी पीछे कुछ दिनों काफी पॉपुलर हुई थी जिसका नाम है इकीगाई, जैपनीज कॉन्सेप्ट के ऊपर ये है। उसमें बात यह है कि अगर हमारी जिंदगी का कोई पर्पस होता है, कोई उद्देश्य होता है और उसकी तरफ हम चलते रहते हैं, कुछ स्किल डेवलप करते हैं, कोई चीज सीखते हैं, जैसे रुबीना जी ने योगा सीखा, उसी तरीके से अगर हम कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो गाना गाना ही क्यों ना हो, हमारी जिंदगी को एक उद्देश्य मिल जाता है और जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। और जाहिर सी बात है,
1: खूबसूरत हो जाती है। सही में ये आपने सही बोला, वो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है।
0: और जाहिर
1: ये लाइन मुझे बहुत पसंद है।
0: जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है मैम, आपने एम्पावरमेंट की बात की। जाहिर सी बात है, अगर हम ऐसा कुछ कर लेते हैं तो हम अपने अंदर से एम्पावर्ड होते हैं, अपने अंदर से इतने ताकतवर बन जाते हैं कि दूसरे लोग फिर हमारी तरफ सहायता के लिए, हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए देखते हैं। और बस यही तो उद्देश्य है एक मानव जीवन का। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने मैम। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक बहुत ही प्यारा सा गीत रुबीना जी की इस प्रतिभा की तरफ।

0: बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही सुंदर। चलिए मैम, कुछ पुरानी यादों में चलते हैं। आपकी कोई पुरानी सी याद है जो आपको बड़ी खूबसूरत लगती हो, आपको अक्सर याद आ जाती हो, क्या वो हमें आप बताना चाहेंगे?
1: पुरानी सी यादें, पुरानी यादें तो किसको पसंद नहीं है, है तो बहुत सारी, खजाने ही हैं।
0: जी
1: हाँ, लेकिन कॉलेज के टाइम के जो दोस्तों के साथ जो हम लोग जो टाइम बिताते हैं वो बहुत ही ज्यादा यादगार बनी रहती है। और ये भी मैं बोल सकती हूँ, एक बहुत अच्छी बात है, जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी मुझे गाना सिखाने के लिए लेके जाती थी और मैं थोड़ा पीछे भागती थी मुझे, और मम्मी को मुझे पता था, वो चाहती थी कि मैं गाना सीखूं, जबकि मैं थोड़ा पीछे भागती थी और मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी गाना सीखने के लिए। जब मैं छुपती थी तो मम्मी क्या करती थी, मेरे टीचर को घर पे बुला लेती थी। तो और क्योंकि मेरी आवाज अच्छी थी तो सारे टीचर्स भी मुझे बहुत पसंद करते थे, वो खुशी खुशी आ भी जाते थे और मैं छुप नहीं पाती थी।
0: वाओ,
1: इस तरह से मम्मी ने मुझे थोड़ा, ये बचपन का कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो अभी मुझे याद आती हैं, तब भी मैं मम्मी को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि तभी मुझे गाना थोड़ा बहुत जो सिखाई थी, और मैं छुप छुप के ना सीखने की कोशिश करते हुए भी कुछ सीख ली थी, आज इस मुकाम पर हूँ कि थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ।
0: क्या बात है।
1: और ये मेरी हॉबी की तरह भी है, मैं गाना सुनती भी हूँ, थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। दोस्तों आपने सुना, तो अगला गीत मैं रूबीना जी की माता जी को डेडिकेट करना चाहूंगा, जिन्होंने रूबीना जी को गाने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको गाना सिखाया, उनके लिए हमेशा मोटिवेशनल बनी रही। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अच्छा रुबीना मैम, ये बताइए आपके सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: मेरे सबसे पसंदीदा गायक तो किशोर कुमार जी हैं।
0: ओके।
1: मैं उनके गाने को बहुत एंजॉय करती हूँ, वो जो दिल से गाते हैं। वैसे तो मुझे मुकेश जी, मोहम्मद रफी जी और सारे सिंगर्स पसंद है, लेकिन किशोर कुमार जी का जो अल्हड़पन है गाने में वो मुझे ज्यादा पसंद है। और मैं तो हमेशा लता दी को दिल से बहुत बहुत ज्यादा चाहती हूँ, और लेकिन मैं आशा जी के ज्यादा फैन हूँ।
0: क्या बात है, बहुत खूब। आशा जी की क्यों फैन है आप?
1: आशा जी की भी वही अल्हड़पन।
0: बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने,
1: मुझ में भी वही अल्हड़पन है इसीलिए।
0: बहुत खूब।
1: वैसे तो मैं सबको पसंद करती हूँ, गाना तो सबका गाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ उनकी जो जॉयफुलनेस है गाने के लिए, जो जिस जॉयफुलनेस से वो लोग गाते हैं वो मुझे ज्यादा पसंद है।
0: बहुत खूब कहा मैम आपने, बहुत ही प्यारा टर्म यूज किया, जॉयफुलनेस। आशा जी के गानों में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनकी आवाज की लरज में जो जॉयफुलनेस सुनाई देती है वो बहुत अमेजिंग है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक प्यारा प्यारा सा गीत।

0: तो रुबीना जी चलिए एक काम करते हैं, आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मैं सच बताऊं, मैं बचपन में जब छोटी थी तो आसमान में उड़ना चाहती थी। तो पंछी बनकर तो नहीं, हाँ उस टाइम मुझे एयर होस्टेस बनने का बहुत मन था।
0: क्या बात है।
1: और मुझे लगता था वो लोग बहुत सुंदर होते हैं और उड़ते भी हैं और डिफरेंट जगह भी जाते हैं।
0: ओके।
1: मुझे डिफरेंट प्लेसेस घूमने का भी बहुत शौक था, तो मुझे लगता था कि अगर मैं एयर होस्टेस बन जाऊं तो एक तो आसमान पे उड़ भी सकती हूँ और दूसरी जगह देख भी सकती हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात। तो दोस्तों आपने सुना कि रुबीना जी बचपन में एयर होस्टेस बनना चाहती थी। तो अगला गीत रुबीना जी की उसी चाहत के नाम, जब वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: बहुत बढ़िया। रुबीना जी, बचपन की बात हो रही है, बहुत सारे टीचर्स आपके रहे होंगे, आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: हाँ, वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट टीचर्स थे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे मैथ्स टीचर मेरे बहुत फेवरेट थे, और उनके वजह से मेरा मैथ्स बहुत सुधर गया था और मैं बहुत अच्छा मार्क्स लेके आती थी, और मेरे मैथ्स टीचर भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। फिर जब भी मैं कॉलेज में गई तो मेरे इकोनॉमिक्स प्रोफेसर मुझे बहुत पसंद थे, तो उन्होंने भी मुझे बहुत पसंद किया क्योंकि मेरा अच्छा होता था इकोनॉमिक्स में। और फिर मैं ये भी जानती हूँ और ये भी मेरा जीवन का फंडा है कि हम बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, सबसे बहुत कुछ सीखते हैं, सभी टीचर हैं एक दूसरे के। तो मैं अपने बच्चों को भी अपना टीचर मानती हूँ, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ।
0: बहुत ही खूबसूरत बात तो, कही आपने।
1: हाँ, लेकिन हाँ, ये दो टीचर, स्कूल के एक मेरे मैथ्स टीचर और कॉलेज के जो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे, ये मेरे अभी भी मुझे बहुत पसंद है। दोनों ही नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं बहुत याद करती हूँ दोनों को, और उनके वजह से आज मैं जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो उनको मैं सोचती हूँ उनके वजह से ही हुआ है।
0: बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात है। दोस्तों, चलिए अगला गीत रुबीना जी के ही इन दो टीचर्स को डेडिकेट करते हुए सुनते हैं।

0: बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारी गायकी। तो रुबीना जी मुझे बताए ना कि कौन से ऐसे तीन शब्द हैं, कौन से ऐसे तीन वर्ड्स हैं जो आपको सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं।
1: जी जी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ।
0: ऑलराइट,
1: मैं लाइफ के हर डिसीजन को बहुत कॉन्फिडेंटली फेस करती हूँ। दूसरी चीज है, मैं बहुत आई एम ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो मैं ऑनेस्टी में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ।
0: ओके,
1: और तीसरी है, मैं बहुत डिटर्मिंड हूँ। जो चीज मैं सोचती हूँ उसको मैं करके ही रहती हूँ। अगर नहीं कर पाऊंगी तो पहले से बता देती हूँ,
0: क्या बात,
1: लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि वो करके ही रहूं।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात कही है, मुझे आपकी ये क्वालिटी बहुत पसंद आई मैम, जो आप डिटर्मिनेशन की कह रहे हैं। डिटर्मिनेशन वैसे भी किसी भी इंसान की जिंदगी में बहुत ही पावरफुल स्किल होता है, हम इसे डेवलप भी कर सकते हैं और ये हमारे अंदर से इनबिल्ट भी होता है। बहुत खूब
1: जी, थैंक यू।
0: तो चलिए दोस्तों सुनते हैं रुबीना जी के डिटर्मिनेशन के ऊपर एक प्यारा सा गीत।

0: और रुबीना जी, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए और नए जो गायक आ रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश दीजिए।
1: जी जी, जरूर देना चाहूंगी। और प्रोग्राम सुनने वालों को तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आपने मेरा गाना सुना और सराहा, इसके लिए भी दिल से बहुत शुक्रिया है। और जैसे मैं बोली, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा मोटो है हेल्थ इज वेल्थ। तो आप अपने शरीर को, शरीर के प्रति सजग रहिए एंड आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा अगर आप योगा, प्राणायाम या कोई किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करते रहें। वो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए बहुत अच्छा है। शरीर और मन को बैलेंस करता है योगा। तो मैं तो हमेशा बोलूंगी योगा, क्योंकि मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ तो योगा के लिए ही बोलूंगी। लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य के ऊपर जरूर ध्यान दें। गाना गाते रहे जो मन के लिए बहुत ही अच्छा है, और गाते रहे जो आपको शांति भी देती है, मन को शांति भी।

0: देती है, लेकिन उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रही है।
1: बड़ी ही प्यारी बात रुबीना जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, हेल्थ जो होती है वो पहली वेल्थ होती है। अगर हमने उसे संभाला तो बाकी की सारी वेल्थ फिर अपने आप पीछे आ ही जाती हैं।
0: आगे
1: बड़ी
0: जाएगी
1: खूबसूरत
0: जरूर।
1: बात कही रवीना जी आपने। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच।
0: नमस्ते, थैंक यू।
1: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।

हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे भी मत गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना ऊंचा भी मत उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन न पाऊं।

0: इंग्लैंड का पादरी जोसेफ करुणा के आध्यात्मिक शक्ति में अटूट विश्वास रखता था। दीनहीन और बेसहारा लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। एक बार की बात है, एक दिन एक बहुत ही कुख्यात अपराधी पुलिस की निगाहों से बचता हुआ पादरी के घर पहुंच गया। पादरी ने उसे शरण दी, भोजन कराया और रात को आराम करने की भी स्वीकृति दी। अपराधी ने देखा कि पादरी की मेज पर चांदी के दो दीपदान रखे हुए हैं। पादरी सो गया तो उसने दीपदान उठाकर जेब में रखे और वहां से भाग निकला। वो कुछ ही दूर जा पाया था कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने पुलिस को बता दिया कि वो दीपदान उसने पादरी के घर से चुराए हैं। पुलिस उसे पादरी के पास लेकर आई। पादरी को दीपदानों की चोरी का पता लग गया था। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, इसे छोड़ दीजिए, ये दीपदान तो मैंने अपनी इच्छा से इसको दिए थे। पादरी के शब्द सुनकर चोर पानी पानी हो गया। उसने उसी समय प्रभु में अपना दिल लगाने का निश्चय किया और भविष्य में अपराध न करने का संकल्प लिया। अब वो पादरी जोसेफ के शिष्य के रूप में दीनहीनों की सेवा का कार्य करने लगा।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जिंदगी जीने के तीन नियम। जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि हम दुनिया भर की उम्मीदों के हिसाब से जीते रहते हैं। कई बार हमारे कंधों पर इन उम्मीदों का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। हम ताउम्र सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग नाराज ही छूट जाते हैं। अब बताइए, क्या जरूरत है सबको खुश करने की? जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो सफलता मिलने पर हम स्वयं ही हमारे लिए ही तालियां बजाने लग जाते हैं, बताइए। नियम नंबर दो, सफलता कोई जादुई चाबी नहीं है भैया, जो हमारे सामने किसी चांदी की थाल पर रखकर परोस करके दे दी जाएगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, उसमें समय लगेगा और पसीना बहाना पड़ेगा। हमारी हर तरह की कोशिशों का जोड़ ही हमारी सफलता है। हर दिन को कोशिशों के साथ ही हम खुद को बदलते हुए देख सकते हैं। समझदार व्यक्ति कहते हैं, सफलता उन छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ है जो हम रोज करते ही रहते हैं। नियम नंबर तीन, हार का डर हमें जीवन में कुछ बड़ा करने से रोकता रहता है। गौर कीजिए, इसी डर के कारण हम चुनौतियों से भागते हैं, बहाने ढूंढते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें मजबूत तो होना पड़ेगा। जब हम पूरी तरह से अपना दिल और दिमाग किसी काम के पीछे लगा दें, तब हमें कोई रोक नहीं सकता। सोचिए ना। फिर मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन दोस्तों हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है, हमें बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर उसको देखने की जरूरत है। आइए मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे ही हंसना सिखाने वाले भाई से जो मोटिवेशन के जिंदा मिसाल हैं। इसराइल पर हमास के हमले और तेल अबीब की जवाबी कार्रवाइयों ने अहमद की योजनाओं को भी खाक कर दिया। 5 दिन वो और उनके साथी एक शिविर में खुद को जिंदा रखने के लिए कैद रहे, मगर अहमद ऐसी स्थितियों में पहले भी गुजर चुके थे। सो पहुंच गए नजदीकी स्कूल में। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। शायद निदा फाजली से गाजा के अहमद अलग रजी की शायद ही कभी मुलाकात हुई होगी, लेकिन लगता है उन्होंने इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लिया है। बम के धमाकों से दहलती हुई गाजा पट्टी में वो बच्चों में खुशी बांट रहे हैं, उन्हें जीने के गुर सिखा रहे हैं, डर से पार पाने की ताकत दे रहे हैं और दिमागी तौर पर उन्हें मजबूत बना रहे हैं। और ये सब वो कर रहे हैं नृत्य के अपने हुनर और नर्सिंग की तालीम की मदद से। जी हां, वो एक शानदार डांसर हैं। संभवतः इसी कारण द गार्जियन उनमें द इंस्पायरिंग पीपल बनने की संभावनाएं देख रहा है। अहमद के लिए वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। गाजा के ही कई शिविरों में उनका बचपन बीता था। अपने भाई से उन्होंने ब्रेक डांस सीखा जब वो सिर्फ 15 साल के थे। उनके भाई सऊदी अरब में इस डांस से दिल लगा बैठे थे और वापस लौटने पर उन्होंने अहमद को भी ब्रेक डांस सिखाया। अहमद ने भी खुशी खुशी इसे सर माथे लिया। कमरे में, गलियों में, जहां कहीं भी उन्हें जगह मिलती वो नाचने लगते। इस जुनून ने उनके कई नए दोस्त बना दिए जो पराधीन गाजा में आजादी महसूस करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। फिर क्या था, 2004 में कैंप्स ब्रेकेज की नींव रख दी गई। इसमें करीब 10 डांसर्स थे। इस ग्रुप का मकसद साफ था, खुद को अभिव्यक्त करना, सांस्कृतिक रूढ़िवादिता का विरोध करने और उन तमाम बंधनों को तोड़ने के लिए नाचना जिनसे वे खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे। अहमद को ब्रेक डांस से इतना प्यार हो गया कि नर्सिंग से स्नातक करने के बाद उन्होंने आगे पढ़ने की नहीं सोची, हालांकि यही पढ़ाई बाद में उनकी हमराह बनेगी, ऐसा भी उन्होंने कहां सोचा होगा। कोई भी संकीर्ण समाज ऐसे किसी शुरुआत को आसानी से स्वीकार नहीं करता। अहमद ने तो खूब ताने सुने, पर वो जानते थे कि डांस से भी मंजिल पाई जा सकती है। वो गुर्बत में जी रहे लोगों का गम बांटना चाहते थे, खुली जेल बन चुके गाजा को जीने का सलीका सिखाना चाहते थे। इसमें साल 2009 उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उनकी टीम को सेव द चिल्ड्रन के साथ एक प्रोजेक्ट करने का मौका मिला जो ऑपरेशन कास्ट लीड के पीड़ित बच्चों को मनोवैज्ञानिक मदद पहुंचाने के लिए शुरू किया जाना था। संयुक्त राष्ट्र का मानना था कि साल 2008-2009 में इसराइल द्वारा गाजा में किए गए इस सैन्य ऑपरेशन में 333 बच्चों सहित 1383 फिलिस्तीनी मारे गए थे। अहमद समझ गए कि धमाकों से दहले बचपन को संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। उनका समूह नृत्य के माध्यम से फिलिस्तीनी समाज में मौजूद भेदभाव को मिटाने, उनमें एकता बढ़ाने, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए जागरूकता फैलाने में जुट गया। गाजा पट्टी पर आयद इजरायली बंदिशों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाने लगा। कहा जाता है कि इन्हीं सबसे चिढ़कर उनके डांस सेंटर को भी बम से उड़ा दिया गया। पर तब तक अहमद इतने प्रशंसक कमा चुके थे कि उनकी एक आवाज पर $10,000 की रकम जुटा ली गई और साल 2012 में एक नया डांस सेंटर बनकर खड़ा हो गया। गाजा में मुश्किलें बढ़ने के बाद अहमद 2015 में जर्मनी चले गए, पर उनका दिल मातृभूमि में ही अटका रहा। इसी कारण कई बार वो वापस लौट आते और नई प्रतिभाओं को नृत्य सिखाते। अक्टूबर 2023 में भी इसी मकसद से वो गाजा आए थे। वहां युवा नर्तकों का एक शो था, मगर इसराइल पर हमास के हमले और तेल अबीब की जवाबी कार्रवाई ने उनकी योजनाओं को खाक कर दिया। फर्ज कीजिए आप कहीं जाते हैं और आपको पता चलता है कि अनिश्चितकालीन जंग में घिर जाने के कारण अब वहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। ध्वंस भी इस कदर कि कौन सी मिसाइल कहां धमाका कर जाए कोई नहीं जानता, तब आप क्या करेंगे। अहमद के सामने भी यही सवाल था।
पांच दिन वो और उनके साथी एक शिविर में खुद को जिंदा रखने के लिए कैद रहे, मगर ज्यादा दिनों तक बैठे रहना भी अहमद को मंजूर नहीं था। वो इस तरह के हालात से पहले भी गुजर चुके थे, तो वो पहुंच गए संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे एक नजदीकी स्कूल में। वहां बच्चों के लिए कार्यशालाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी मिल गई। शुरुआत में बच्चे झिझके जरूर, लेकिन जल्द ही अहमद और उनके साथियों के फ्लिप और ट्विस्ट पर भी वो नाचने लगे। अब तो अहमद इन बच्चों के भाई हैं, हालांकि उन्हें अपने शुरुआती नाम शार्क यानी कि उस्ताद ही पसंद है। आज अहमद हर जगह जाते हैं जहां गाजा नागरिक शरण लिए हुए हैं और बच्चों के लिए डांस करते हैं। वो और उनके दोस्त पूरी कोशिश करते हैं कि यहां के मासूमों में मासूमियत बची रहे। यहां तक कि नजदीक गिरे मिसाइल से अपने एक छात्र की मौत के बाद भी अहमद के कदम रुके नहीं हैं। आखिर उन्हें डर क्यों नहीं लगता? एक साक्षात्कार में अहमद ने बताया कि मैंने भी बचपन में ये सब देखा है। बम धमाके से कोई बच्चा कितना भयभीत हो जाता है, ये मैं जानता हूं। मैं नहीं चाहता कि हमारी नई पीढ़ी ये सब झेले। अब तो हर धमाके के बाद मैं खुद को कहीं अधिक मजबूत महसूस करता हूं। तो देखा दोस्तों आपने, गाजा जैसी मुसीबत में भरी हुई जगह में भी अहमद जैसा इंसान सिर्फ डांस करके पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और प्रेरणा का संदेश फैला रहा है। क्या दोस्तों हम भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं? दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें। दोस्तों ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।

0: डर विश्वास के विपरीत है। जब हम डरते हैं तो हम भगवान को ये संदेश देते हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, डरने की आवश्यकता नहीं।
1: कन्नौज राज की एक विधवा ब्राह्मणी बहुत ही गरीबी के बावजूद अपने 5 पुत्रों को गुरुकुल में अच्छी शिक्षा दिला रही थी। वो रोज चरखे पर सूत कातकर अपना और पुत्रों का जीवन यापन करती थी। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया उसने। कन्नौज के एक धार्मिक सेठ ने ब्राह्मणी के गरीबी में दिन गुजारने की बात सुनी तो वो उसके पास गए। बड़ी ही विनम्रता से उन्होंने कहा, क्या मैं आपकी कुछ आर्थिक मदद करके अपने को धन्य कर सकता हूं? ब्राह्मणी ने कहा, सेठ जी, मैं गरीब बिल्कुल नहीं हूं। मेरे पास तो 5 अमूल्य रत्न है। आपकी सहानुभूति के प्रति मैं कृतज्ञ हूं। सेठ जी ने कहा, मुझे अपने अमूल्य रत्न तो दिखाइए। कुछ ही देर बाद उसके 5 बेटे गुरुजी के आश्रम से वापस लौटे। आते ही उन्होंने मां के चरणों को स्पर्श किया। उसके बाद सामने बैठे हुए सेठ जी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ब्राह्मणी ने संस्कृत में कहा, पश्यमय पंच रत्नानी, और सेठ उन 5 रत्नों को देखकर कह उठे, वास्तव में माताजी, आपके इन अनूठे मात्र भक्त संस्कारी 5 रत्नों के होते हुए आपको दरिद्र समझना मेरी भारी भूल थी। जिसकी संतान आज्ञाकारी, संस्कारी और योग्य हो, उससे बड़ा धनवान कौन होगा?
0: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।